सुप्रभात। FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टन एज केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 की भाद्रपद मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 सितंबर सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 और 17 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग ने पार्टी के दोनों प्रतिद्वंदी

0: दलियों गुटों को उपचुनाव में इनका इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। आयोग ने ममता बनर्जी और अरूप राय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने अपने समूह के लिए 3 नाम और 3 मुक्त चुनाव चिन्ह प्राथमिकता के क्रम में देने को कहा है। आयोग इनमें से 1 नाम और 1 चुनाव चिन्ह को मंजूरी देगा। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्सट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उपस्थित होंगे। इन विमानों को शामिल करना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता का विकास को और बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका सहित कई देशों से ऊर्जा खरीदता है। एशियाई खेल 2026 में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से पराजित किया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हमारे दिल्ली केंद्र से भी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। समाचारों के बाद स्वागत है आपका। पेश है कार्यक्रम खेती की बातें। जलवायु अनुकूल खेती, इस विषय पर जानकारी दे रही हैं सुनीता अग्रवाल।
2: खेती की बातें में श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे जलवायु परिवर्तन और कृषि विकास। श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन के कारण वार्षिक कृषि कमाई में 15-18% तक की कमी और गैर सिंचित क्षेत्रों में 20-25% तक की कमी आ सकती है। देश की आबादी के 58% हिस्से की कमाई का प्राथमिक स्रोत खेती है। कृषि और प्राकृतिक स्रोतों पर आधारित उद्यान न केवल भारत बल्कि ज़्यादातर विकासशील देशों की आर्थिक उन्नति का आधार है। कृषि क्षेत्र और इसमें शामिल खेत, फसल, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, पॉल्ट्री संयुक्त राष्ट्र के दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों, खास करके शून्य भूखमरी, पोषण और जलवायु कार्रवाई तथा अन्य से जुड़े हुए हैं। देश की खाद्य सुरक्षा के लिए एक अहम चुनौती जलवायु परिवर्तन है और इसे लगातार सूखा, चक्रवात, बाढ़, लू, शीतलहर और समुद्र के खारे पानी का तटीय इलाकों में प्रवेश जैसे प्रभाव देखे जा रहे हैं। साल 2030 तक तापमान में

0: एक से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है, जो पैदावार पर गंभीर प्रभाव डालने की आशंका है। उच्च तापमान फसल की अवधि को छोटा, प्रकाश संश्लेषण में बदलाव, फसल श्वसन दर में इजाफा और कीटाणुओं की आबादी को भी प्रभावित करेगा। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन पोषक तत्वों को जैविक से गैर जैविक में बदलता है, उर्वरक इस्तेमाल की क्षमता को भी प्रभावित करता है, साथ ही मिट्टी से वाष्पन उत्सर्जन को भी बढ़ाता है, जिससे आखिरकार प्राकृतिक संसाधनों का क्षय होता है। जलवायु परिवर्तन का असर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फसल, पानी और मिट्टी पर पड़ता है, क्योंकि ये पानी की उपलब्धता, सुखाड़ की तीव्रता और सूक्ष्म जीव की आबादी, मिट्टी में मौजूद जैविक तत्वों में कमी, कम पैदावार, मृदा अपरदन के चलते मिट्टी की उर्वरा शक्ति में गिरावट आदि को प्रभावित करता है। कृषि पद्धतियां पूरी तरह मौसम की स्थितियों पर आधारित है। उच्च तापमान के कारण पौधे में पानी की कमी होता है। सरकार, कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कई सक्रिय नीतियां व कार्यक्रम शुरू किए हैं और जिन्हें ग्रामीण स्तर पर लागू भी किया जा रहा है, जिनमें जलवायु लचीला कृषि मुख्य है। जलवायु लचीली कृषि एक दृष्टिकोण है जिसमें जलवायु परिवर्तन में भी फसल और पशुधन उत्पादन के जरिए दीर्घकालीन उच्च उत्पादकता और कृषि आय प्राप्त करने के लिए मौजूदा प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं। ये पद्धति आने वाली पीढ़ी के लिए जलवायु परिवर्तन को देखते हुए गरीबी और भूखमरी को कम करेगी। CRA पद्धति मौजूदा स्थिति में तब्दीली कर दीर्घकालीन तरीके से स्थानीय से वैश्विक स्तर पर खाद्य उत्पादन को बरकरार रख सकती है। तकनीकी तक सुविधाजनक पहुंच और इस्तेमाल, पारदर्शी व्यापार, संसाधन संरक्षण तकनीकों का अधिकाधिक इस्तेमाल व फसलों व पालतू मवेशियों द्वारा जलवायु दबाव को आसानी से अपना लेना जलवायु लचीली पद्धति का परिणाम है। बहुत सारे देश टकराव व आपदाओं का संकट झेलते हैं, लेकिन अपर्याप्त खाद्य भंडार, आधारभूत खाद्य पदार्थ तो के दाम में उतार चढ़ाव, कृषि ईंधन की भारी मांग और मौसम में आकस्मिक बदलाव के चलते खाद्य सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये जलवायु परिवर्तन से ही जुड़ा हुआ है। सभी कृषि और गैर कृषि स्रोतों से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को प्राथमिकता देनी होगी। नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल इस दिशा का एक नीतिगत हस्तक्षेप होगा, जिसकी सराहना दुनिया भर में की गई है। साझेदारों में भरोसा मजबूत करने के लिए ट्रेडिंग जरूरी है और जलवायु परिवर्तन व स्थानीय स्तर पर इससे पड़ने वाले प्रभावों को समझने के लिए उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। देश भर में जलवायु लचीली खेती करना इस समय की जरूरत है और इसके लिए उचित नीति दिशा निर्देशों का स्थानीय स्तर पर, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए स्थानीय कृषि अभ्यासों का विश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की जानकारी यहीं तक।
1: खेती की बातें कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे सुनीता अग्रवाल को, जलवायु अनुकूल खेती विषय पर जानकारी दे रही थी। और अब समय हो चुका है तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस कांड का।

पवन पुत्र हनुमान सुग्रीव के गुप्तचर के रूप में श्रीराम लक्ष्मण के पास गए थे, किंतु उन्हें अपने इष्ट देव को पहचानने में तनिक भी देर नहीं लगी। सीता हरण की घटना सुनकर वे तुरंत श्रीराम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले। जगत जननी सीता को ढूंढ लेना असंभव नहीं। सुग्रीव ने विलाप करती परवश सीता

को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हा राम हा राम कहकर रोती बिलखती सीता का एक वस्त्र वहां गिरा था। श्रीराम को धीरज बंधाते हुए सुग्रीव ने वह वस्त्र खंड उन्हें सौंप दिया। इस प्रकार उन्हें श्रीराम के विश्वास और मैत्री का गौरव प्राप्त हुआ। जब श्रीराम ने सुग्रीव से उनके वन में निवास करने का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी व्यथा कथा सुनाई। अत्यंत स्नेही भाई बाली उनका शत्रु बन बैठा। उसने न केवल उनका राज्य बल्कि पत्नी तक छीन ली। यह सब उस मायावी राक्षस के कारण हुआ जिसका पीछा करते बाली ने यह कहकर गुफा में प्रवेश किया कि यदि वह राक्षस का वध करके 15 दिनों में लौट कर ना आवे तो उन्हें मृत मार लिया जाए। सुग्रीव ने पूरे 1 माह तक भाई की प्रतीक्षा की और गुफा से बाहर आती लहू की धार देखकर यह मान लिया कि बाली की हत्या हो गई।

मनुष्य में यदि मानवता नहीं है तो वह मानव नहीं है। मनीषियों ने मनुष्य को मनुर्भाव मनुष्य बनने की बात कही है। एक सज्जन व्यक्ति वही है जो दूसरों का सम्मान करे, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे, छल कपट द्वेष से परे परहित पर काम करे। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, उसे सोचने समझने के लिए ईश्वर ने बुद्धि दी है। मानवीय गुण ही उसे अन्य प्राणियों से अलग करते हैं। वह अच्छा बुरा सब समझ सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करता है वह न तो सफलता को प्राप्त करता है, न ही शांति, न ही मोक्ष। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो क्षमाशील शांत चित्त मृदु व्यवहार मधुर वाणी वाला होता है वह सत्पुरुष कहलाता है। सज्जनता से भरा इंसान हर परिस्थिति में संयमित होता है। वह अपने आचरण से लोगों का प्रिय बन जाता है। मनुष्यता की पहली शर्त सज्जनता सहृदयता मानी जाती है। सहृदय व्यक्ति परोपकारी दयालु विश्वासी होता है। वह किसी को धोखा नहीं देता है, हमेशा दूसरों का भला ही सोचता है। किसी के बुराई का उत्तर भी वह अच्छाई से ही देता है। निस्वार्थ भाव से औरों के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति ही सज्जन है। सज्जनता कोई दिखावे की वस्तु नहीं है, वह स्वतः ही दिख जाती है। किसी व्यक्ति का आचरण आचार व्यवहार उसकी सज्जनता को दर्शाते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा है, क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती हैं। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से समाप्त होता है और यही शाश्वत सत्य है। शांतिप्रिय लोग आनंदमय जीवन जीते हैं, उन पर हार जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार झरना बहुत शोर मचाता है और सागर गहरा और शांत रहता है, उसी तरह सज्जन व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत चित्त बना रहता है। क्रोध के विषय में बुद्ध कहते हैं, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रखने के समान है। इसमें व्यक्ति स्वयं जलता है। कोई भी बहुत बोलने से कुछ नहीं सीख पाता है। समझदार वही है जो धैर्य वाला क्रोध न करने वाला निडर होता है। इसलिए धैर्यवान सहृदय दयालु परोपकारी बने और यही सज्जनता के गुण हैं। सज्जनता को दर्शाने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप अपना अच्छा आचरण करते रहिए, आपकी सज्जनता स्वतः प्रकट हो जाएगी। यही संदेश महात्मा गौतम बुद्ध ने दिया।

चिंतन कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे निर्मला तिवारी को। और अब समय हो चुका है वंदना कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मौसमी को।

0: अभी आप सुन रहे थे वंदना कार्यक्रम, और अब समय हो चुका है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। आइए इस कार्यक्रम में सुनते हैं डॉक्टर टी प्योर से ली गई भेंट वार्ता, विषय है दवाओं का दुष्प्रभाव।
1: सभी श्रोताओं को संजय मिश्रा का नमस्कार। श्रोताओं, आज आपको हम विस्तृत जानकारी दिलवाएंगे इस विषय पे कि दवा का प्रभाव और दुष्प्रभाव क्या होता है, और इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं गढ़वा जिला अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सक डॉक्टर टी पीयूष। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार।
2: नमस्कार आपको और सभी श्रोतागण को भी।
1: डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को बताएं, दवा का प्रभाव की जब हम बात करते हैं तो दवा का प्रभाव किसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि दवा खाने के बाद उसका प्रभाव किस तरह का, कितने देर में कितना प्रभाव, इस पर जानकारी दें।
2: देखिए, दवा का प्रभाव से मतलब ये है कि पेशेंट, जब कोई भी रोगी जब आता है तो वो कुछ समस्या लेकर आता है, और उस समस्या पर को देखते हुए डॉक्टर अपने अनुभव से उनके लिए जो सबसे अच्छी दवा हो सकती है वो लिखते हैं। और यह दवा अगर जिस हिसाब से डॉक्टर समझ रहे हैं उस हिसाब से काम करती है पेशेंट पर, तो यही प्रभाव है, है ना। अब प्रभाव के साथ साथ जब आप ये दवा का विज्ञान पढ़ेंगे, इसका शास्त्र जो फार्माकोलॉजी होती है, औषधि विज्ञान पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि एक दवा के कई सारे प्रभाव हो सकते हैं। यानी सिंपल सामान्य बातों में, अगर आपके जानी हुई एक दवा है जिसको आप मेट्रोन कहते हैं या फ्लाजिल कहते हैं, जो आपको पता है कि वो पैखाने की दवा है, पैखाना ज़्यादा होने पर आप खाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि किन्हीं को जनन मार्ग का संक्रमण हुआ है तो उसमें भी हमने उसको दिया, ठीक है ना। किसी को मुंह के अंदर की दिक्कत हुई तो उसमें भी हमने दिया, है ना। किसी को अमीबा से रिलेटेड डिसेंट्री हो गया तो उसमें भी हमने दिया। तो ये सब चीज़ें हैं, एक दवा के कई प्रभाव होते हैं।

0: होते हैं, है ना। और प्रभाव के साथ साथ कुछ कुप्रभाव भी होते हैं, दुष्प्रभाव भी होते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, जो प्रभाव की जो हम बात कर रहे हैं, तो लोग जब बीमार जब हॉस्पिटल में आता है आपके पास, तो अलग अलग परेशानी लेके आता है, निश्चित बात है। दवा खाने के बाद लोगों का ये मानना है, लोग ये समझते हैं कि दवा खाते ही हमारी बीमारी छू मंतर हो जाएगी जादू की तरह। डॉक्टर साहब, किसी दवा का असर कितने देर में शुरू हो सकता है, कितनी देर में शुरू होना चाहिए, अगर हम एलोपैथ की बात करें, आपके पैथी की बात करें तो?
0: देखिए, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जो है, जिसको एलोपैथ पहले कहते थे, तो इसमें दवा के सभी सब कुछ लिखा हुआ है। ये दवा आप खाएंगे, इतने देर में पेट में जाकर इतने देर में वहाँ से अवशोषित होगा और इतने देर में प्रभाव करना शुरू होगा। जितने भी मुँह से हम लोग दवा खाते हैं, वो कम से कम उसको 10-15 मिनट से लेकर घंटा, दो घंटा, है ना, 6 घंटा, कभी कभी कई दिन भी लग सकते हैं। और दवा का प्रभाव दवा को रोकने से तुरंत समाप्त भी नहीं हो जाता। अब एक दवा की बात करें हम, जैसे एस्पिरिन की, एस्पिरिन का प्रभाव जो कम डोज में लेते हैं तो उसका है कि खून का थक्का नहीं बनने देता, प्लेटलेट्स एक चीज़ होते हैं, उनको आपस में चिपकने नहीं देता। अब यह प्रभाव जो शुरू होगा, अगर आपने एस्पिरिन रोक दिया तो रोकने के 7 दिन बाद तक इसका प्रभाव रह जाता है, और शुरू होने को भी लेकर वैसे ही है। अब कोई मान लिए इंसुलिन लिया, इंसुलिन हो सकता है अलग अलग एक में दो इंसुलिन मिले हो सकते हैं। इंसुलिन के कई प्रकार हैं, कुछ शॉर्ट एक्टिंग है जो रैपिड ऑनसेट है, मतलब कम देर तक काम करेंगे लेकिन जल्दी काम करना शुरू करेंगे, कुछ है देर तक काम करेंगे लेकिन देर से वो काम करना शुरू होंगे। तो अलग अलग दवाइयाँ अलग अलग समय तक काम करती हैं और अलग अलग समय पर इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन यानी काम करने की शुरुआत भी अलग अलग समय से होती है, है ना
1: जी। लोग कभी कभी अपने अलग अलग परेशानी के लिए किसी को डॉक्टर या आप उनको टैबलेट भी देते हैं, कैप्सूल भी देते हैं, इंजेक्शन भी देते हैं, और लिक्विड फॉर्म में जो उनको दवा देते हैं, तो अलग अलग तरह की दवाएं हैं, तो इन सब दवाओं का असर का समय क्या एक जैसा होता है?
0: नहीं, एक जैसा नहीं होता है। अब जहाँ तक दवा जो बनती है वो अलग अलग तरह की बनती है, कुछ ये निर्भर करता है कि जिस अणु को, जिस रसायन को आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसकी घुलनशीलता कैसी है, वह उसकी स्टेबिलिटी, मतलब वो अब कितने दिन देर तक कैसे वो रह सकता है, ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसी हिसाब से हम लोग कभी उसके टैबलेट बनाते हैं, कभी कभी कैप्सूल बनाते हैं। जो कैप्सूल बनाते हैं वो उसके ऊपर एक कवरिंग रहती है, और अधिकतर उसके कवरिंग का जो कुछ गैस्ट्रिक कोटेड कवरिंग्स जो रहते हैं उनका ये रहता है, गैस्ट्रिक कोटेड, एंट्री कोटेड जो रहते हैं उसका रहता है कि वहाँ अम्ल पेट में, आप जानते हैं अम्ल होता है, एसिड होता है, एसिड चीज़ों को गलाना शुरू करता है। अगर हमको पेट में नहीं उसको गलवाना है, उसका अवशोषण अगर हमको छोटी आंत में करवाना है, तो उस तरह की कवरिंग करके उस तरह का हम लोग प्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया। उसी प्रकार सिरप जो है सो कुछ तो बच्चों को चूंकि ये टैबलेट के तीता जो टेस्ट है वो पसंद नहीं आता है, तो कभी कभी टैबलेट के ऊपर एक शुगर की कोटिंग कर देते हैं, कभी कभी उसको किसी चीज़ में घोल कर हम लोग देते हैं, सस्पेंशन बनाते हैं, सिरप बनाते हैं और इंजेक्शन बनाते हैं। अच्छा, इंजेक्शन इधर जितनी भी बातें हमने की, टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, है ना, ये सब चीज़ें, पाउडर और इधर से इंजेक्शन, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर ये आ जाता है कि ये जितनी बाकी चीज़ें हैं वो मुंह से जा रही हैं, आपके आहार नाल से होते हुए अमाशय में जा रही हैं, उसके बाद आपके आंत से होते हुए फिर बाहर की तरफ जो भी, तो इनके अवशोषण में समय लगता है। और जितना आपने जिस मात्रा में इसको दिया है उस मात्रा में पूरा अवशोषित हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई टैबलेट 150 मिलीग्राम की है तो शरीर में अवशोषित होते होते वो 50 मिलीग्राम की रह जाती है। जैसे एक बात करें, एसी लॉग बहुत फेमस है इधर, उसमें रेनिटिडिन पाई जाती, तो अब ये जो रेनिटिडिन है वो जब मुंह से खाते हैं तो एसी लॉग 150 खाते हैं या रेंटेक 150 खाते हैं, रेनिटिडिन का 150 मिलीग्राम की दवा लेते हैं, लेकिन जब उनका इंजेक्शन देते हैं तो हम

0: 50 मिलीग्राम की दवा का इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन जो है वो सीधे, देखिए फाइनली जो भी दवा आपकी है उसको आपके ब्लड में पहुंचना पड़ेगा, आपके खून में पहुंचना पड़ेगा, खून के प्रवाह में पहुंचना पड़ेगा, और खून के प्रवाह से वो हृदय में पहुंचेगा, और हृदय से फिर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है ना। उसमें से कुछ मस्तिष्क तक भी जाएंगे, कुछ को मस्तिष्क तक जाने से रोक लिया जाएगा, तो अलग अलग जगहों पर जाएगा। तो पहला है कि खून में पहुंचाएं। तो जो आप मुंह से भी खाते हैं वो अवशोषित होकर पहले आंत से, फिर लीवर में जाकर, फिर फाइनली वो खून में ही छोड़ा जाता है, और जो आप इंजेक्शन लेते हैं वो सीधे खून में चला जाता है। तो इंजेक्शन की जहां तक सवाल है, वो इंजेक्शन वो भी डिपेंड करता है कि किस स्थान पर और कैसे दिया गया। वो जो है इंजेक्शन आपके टैबलेट और कैप्सूल से हमेशा नहीं लेकिन अधिकतर समय जल्दी काम करता है। लेकिन अब इंजेक्शन में भी कई तरह के इंजेक्शन होते हैं। चमड़े के नीचे देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं, है ना। पेट में, पेट का आप इंसुलिन देखते हैं, पेट के अंदर देते हैं हम लोग, है ना। कुछ नसों में दे देते हैं, कुछ मांस में दे देते हैं। इसमें भी जानना है कि जो हम सबक्यूटेनियस,
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के तहत दवाओं के दुष्प्रभाव पर डॉक्टर टी पीयूष से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता थे संजय कुमार मिश्रा। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। आइए समाचारों के लिए हम जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
2: आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी उक्तवान् यत् भारतम् आपूर्तिश्रृङ्खलानां शस्त्रीकरणस्य मध्ये विश्वसनीयस्य अर्धचालकविनिर्माणस्य वैश्विककेन्द्ररूपेण प्रतिष्ठापितमस्ति। असौ उक्तवान् यत् विश्वं नूतनानां विश्वसनीयविनिर्माणकेन्द्राणाम् अन्वेषणं करोति तथा भारतम् एतस्याः आवश्यकतायाः पूर्तये निरन्तरं सज्जीकरोति। सः प्रतिपादितवान् यत् महत्वपूर्णेषु उद्योगेषु भारतस्य प्रगतिः वैश्विकाः आपूर्तिश्रृङ्खलाः सुदृढीकरिष्यति तथा विश्वे परिवर्तमानानाम् आपूर्तिश्रृङ्खलासम्बद्धानाम् आह्वानानां मध्ये नूतनावसराणां सृजनं करिष्यति। प्रधानमन्त्री ह्यः नवदिल्ल्यां यशो भूमौ सेमिकॉन इण्डिया इत्येतस्य पञ्चमसंस्करणस्य उद्घाटनं कुर्वन् एतत् उक्तवान्।
1: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है, और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एस्पिरेंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
0: ततः परं कार्यक्रमस्य अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् सेमिकॉन 2.0 इति

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग ने पार्टी के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को उपचुनाव में इनका इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। आयोग ने ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने अपने समूह के लिए 3 नाम और 3 मुक्त चुनाव चिन्ह प्राथमिकता के क्रम में देने को कहा है। आयोग इनमें से 1 नाम और 1 चुनाव चिन्ह को मंजूरी देगा। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ

0: अब गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने 38 गेंदों में शानदार 108 रन और संजू सैमसन ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। एशियाई खेल 2026 में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान से आज सुबह 10:30 से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। Prime Minister Narendra Modi has positioned India as a globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet this need. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating the 5th edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi yesterday.
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
1: The Election Commission of India has asked the two rival factions of the All India Trinamool Congress not to use the party name and flowers and grass symbol during the ensuing assembly by-elections in West Bengal. In its interim order, the commission has asked them to submit the names of their groups by which they may be recognized by commission by 11 a.m. today. The commission gave its interim order after hearing the leaders of the two factions of the party led by Mamata Banerjee and Arup Roy. The National Testing Agency has released the final answer keys for the UGC NET June 2026 examination conducted in three subjects, English, Commerce and Sociology. The examination was held on the 9th and 10th of this month at 454 centres across 272 cities in the country. External Affairs Ministry has notified the Passport Amendment Rules 2026, amending the Passport Rules 1980. The amendment provides that an ordinary passport with 36 pages issued to a child under 15 years of age will be valid for 5 years or until they turn 18 years of age, whichever is earlier. In a remarkable twist in regional fisheries trade, hilsa, once imported into India from Bangladesh, is now being exported from India to Bangladesh. Central Inland Fisheries Research Institute, CFRI, has confirmed that nearly 500 tons of Indian hilsa have moved across the border in the past 2 months, with traders anticipating another 150 to 200 tons soon. Hindustan Aeronautics Limited will hand over light combat aircraft Tejas Final Operation Clearance twin-seater trainers and HTT-40 basic trainer aircrafts to the Indian Air Force in Bengaluru today. It will also hand over Dhruv Next Generation helicopters to Pawan Hans Limited, a public sector undertaking. Jammu and Kashmir government has accorded administrative approval for the development of a state-of-the-art tribal tourism village at Behri Kasab in Mendhar area of Poonch district. The project aims to showcase the rich tribal culture and heritage of the region while strengthening local infrastructure and creating new economic opportunities for the local youth. The tribal tourism village is envisaged as a dedicated destination that will highlight the distinctive cultural traditions and way of life of the tribal communities while providing an added attraction for visitors to Poonch. India said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security. The External Affairs Ministry said the country remains firmly committed to ensuring energy security for its 140 crore people and will continue to do so through diversified sourcing and on the basis of evolving market dynamics. In men's cricket, India crushed Afghanistan by 127 runs in the third T20I to complete a 3-0 series sweep in New Delhi last night. Put into bat, India posted 221 runs for the loss of 7 wickets in the stipulated 20 overs. In reply, Afghanistan were bowled out for 94 in 14.1 overs. Earlier, Afghanistan won the toss and opted to bowl. And that is the end of this news bulletin.
3: समाचारों के बाद स्वागत है आपका। पेश है कार्यक्रम विवरण।

अब से बस कुछ ही पलों के बाद 7:15 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश। कलाकार होंगे झरगा भगत और इनके साथी। स्वर सरिता कार्यक्रम का समय है 7:45। आज के कलाकार हैं हरिहरन। सुबह के 8 दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आप सुनेंगे। 8:30 हम आपको रांची केंद्र लिए चलेंगे, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। फिल्म गीतों की महफिल सजेगी। 8:45 पर कार्यक्रम होगा गीत गुंजन। सुबह के 9 जोहार पलामू कार्यक्रम हम लेकर आएंगे। सुबह के 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 10 दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी में समाचार, 10:05 पर हिंदी समाचार और 10:10 पर विविध भारती के कार्यक्रम। दिन के 1 हिंदी समाचारों के लिए हम जोड़ेंगे दिल्ली केंद्र से और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। 1:10 पर रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 1:20 पर विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे। दिन के 2 पुनः दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी में समाचार, 2:15 पर हिंदी में समाचार रिले होंगे और 2:30 पुनः मुंबई केंद्र से हम जुड़ेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों के लिए। 2:55 पर पुनः रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 3 मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रमों के तहत सखी सहेली। शाम 4 रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे और 4:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे।

शाम 5:30 पर हमारे स्टूडियो से पुनः आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। 5:35 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन। चर्चा होगी विलंब से विवाह जिम्मेवार कौन और घरेलू कामकाज एवं नौकरी की दोहरी जिम्मेदारी कैसे बैठाएं सामंजस्य। और अन्नपूर्णा कुमारी की वार्ता इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्मार्टफोन का बढ़ता प्रचलन एवं पारिवारिक दूरियां। शाम 6:00 रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 6:02 पर आप सुनेंगे खेती बाड़ी कार्यक्रम। 6:30 पर ग्रामीण सभा कार्यक्रम होगा। शाम 7:00 रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 7:10 पर जिले में आजकल 7:15 पर फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा एक रंग। 7:45 पर रोजगार से जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा की जाएंगी कार्यक्रम होगा उड़ान। रात्रि 8:00 फिल्म गीत का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। रात्रि 8:30 पर महफिल कव्वाली कार्यक्रम आप सुनेंगे। नुसरत फतेह अली खान आज के कलाकार हैं। रात्रि 8:45 पर हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:00 अंग्रेजी में समाचार और 9:15 पर उर्दू में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। रात्रि 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। रात्रि 10:00 स्पेशल प्रोग्राम आप सुनेंगे कर्टन रेजर। रात्रि 10:30 फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। रात्रि 11:00 दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 11:10 पर अंग्रेजी में समाचार और 11:10 पर होगी हमारी सभा की समाप्ति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, और अब समय हो चुका है लोकगीतों के कार्यक्रम पलाश का। आज आइए सुनवाते हैं आपको नागपुरी लोकगीत झिरगा भगत और उनके साथियों।

इस लोकगीत के साथ ही आज का पलाश कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। समय हो चुका है सुगम संगीत के कार्यक्रम स्वर सरिता का। इस कार्यक्रम में ये सुनते हैं हरिहरन को।

अभी आप सुन रहे थे इस वर्षता कार्यक्रम के तहत हरिहरन को। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। समाचारों के लिए आइए हम दिल्ली केंद्र से जुड़ते हैं, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज 8:30 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। आइए अभी हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं।

0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को अगले 5 साल के लिए पुनः कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। टाटा ट्रस्ट ने इसे अवैध बताया। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
1: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल 2 प्रतिद्वंदी गुट हैं और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन

0: अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। लोकसभा से तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले, जबकि राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
1: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: सम्मेलन में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में देश के विकास से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इनमें अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्तीय व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
3: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान कल से शुरू हुआ। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर और आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इसी कड़ी में प्रस्तुत है नक्सलवाद के अंत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट।
5: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सलवाद के अंत के बाद अब बंदूक की गोलियों की जगह एक बार फिर स्कूल की घंटियां सुनाई देने लगी हैं। बस्तर अंचल में सुरक्षा कैंपों को बदलकर शहीद वीर गुंडा धुर सेवा डेरा के नाम से आधुनिक जन सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन बदलते बस्तर की तस्वीर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां कभी टेरर था वहां अब टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
6: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। यानी जहां कभी टेरर था वहां टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
5: सरकार की ठोस इच्छा शक्ति का ही परिणाम रहा है कि बस्तर में हजारों की संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों को अब कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर जिले के ऐसे ही एक आत्मसमर्पित माओवादी लखमू पोयाम ने बताया कि नक्सली संगठन में काम करते हुए उन्हें हमेशा जान का डर बना रहता था, लेकिन अब वे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं।
7: अभी तो यहाँ सरेंडर करने के बाद हम लोग यहाँ रहते हैं, अभी अच्छा लग रहा है। उधर रहते समय तो कभी मर जाना है, गोली लगेगा बोल के उधर डर था। अभी यहाँ आराम से खाना है, पीना है, सोना है, काम करना है, सब लोगों के साथ मिलना है, ऐसे अच्छा लग रहा है यहाँ।
5: लखमू पोयाम जैसे सैकड़ों आत्मसमर्पित माओवादियों की यह कहानी बताती है कि बस्तर में नक्सलवाद के अंत के बाद अब विकास का सूर्योदय हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
1: भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को 5 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया है। टाटा सन्स के बोर्ड ने कल 4-1 के बहुमत से उनके कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट ने इस मतदान को अवैध बताया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले 2 दिन के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम, माहे, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार।
8: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत दी है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने शानदार 108 और संजू सैमसंग ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उधर जापान में एशिया खेलों में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले के मेंढर इलाके के बेहरी कासब में आधुनिक जनजातीय पर्यटन गांव विकसित करने को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
9: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
10: धन्यवाद जागृति। सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन की खबर आज प्रकाशित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने लिखा है प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया का भारत पर बढ़ रहा भरोसा, वैश्विक बाजार में पहुंच रही देश की सेमीकंडक्टर चिप, जनसत्ता के शब्द हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को भरोसेमंद चिप विनिर्माण का केंद्र बना रही है। पंजाब केसरी लिखता है, भारतीय चिप की दुनिया भर में सप्लाई शुरू, दूसरे चरण में लक्ष्य $30.5 मिलियन। अमरीकी संसद में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शत प्रतिशत शुल्क लगाने वाले विधेयक के पारित होने की खबर को अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ट्रंप को मिला 100% टैरिफ वाला हथियार। अमर उजाला लिखता है, टैरिफ पर अमरीका की दो टूक, भारत अपने हित खुद तय करेगा। हिंदुस्तान ने 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नए नियम की खबर दी है। पत्र लिखता है, पंजीकरण के नियमों को सख्त बनाने वाला कानून 1 अक्टूबर से देशभर में लागू होगा। पंजीकरण में 2 वर्ष से अधिक की देरी होने पर पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, पढ़ाई के बाद नौकरी में काम आएगी अपार आईडी, डिग्री देख सकेंगे नियुक्ता, मंत्रालय ने निजता नीति बदली। पंजाब केसरी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के परीक्षा कार्यक्रमों के जारी होने पर लिखा है, जेईई मेन यूजीसी नेट परीक्षा की डेट शीट जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है, सीसीटीवी की निगरानी में बिके दवा, सरकार लाई प्रस्ताव, फुटकर दुकानों में ही सीसीटीवी अनिवार्य होगा, थोक दवा दुकानों को बाहर रखा गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस, इलेक्शन कमीशन फ्रीजेस तृणमूल कांग्रेस नेम एंड सिंबल, आस्क्स राइवल फैक्शंस टू पिक न्यू वंस फॉर वेस्ट बंगाल बाय पोल्स। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल to hold its first meeting in New Delhi today. NTA releases final answer keys of UGC NET June 2026 exam for English, Commerce and Sociology. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Kerala and Rajasthan today. And in men's cricket, India crush Afghanistan by 127 runs in third T20 international to win the series 3-0. The Election Commission of India has barred both factions of the Trinamool Congress from using the party's name and election symbol in the upcoming assembly by-polls in Nandigram and Rajinagar in West Bengal. Here's a report from our correspondent.
3: In an interim order issued yesterday, the commission said neither the Mamata Banerjee-led group nor the Arup-Roy-led group can use the name All India Trinamool Congress or the party's reserved twin flower symbol. Both groups will have to contest the by-polls under the different names and with election symbols allotted by the commission. This arrangement will continue until the dispute is finally settled. The commission said documents and claims submitted by both sides show that there are currently two rival groups within the Trinamool Congress with both claiming to be the real party. As the dispute cannot be settled before the upcoming by-polls, the commission has taken the temporary step to decide who can use the party's name and symbol for now. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: The first meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 will be held in New Delhi today. The committee will receive a briefing from representatives of the Ministry of Home Affairs on the provisions of the bill. More from our correspondent.
4: Both houses of the parliament on 12th August gave their note to referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill seeks to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010 with the objective of making the use of foreign contributions more transparent and accountable. The committee comprises 21 members from the Lok Sabha, nominated by the Speaker, and 10

0: 127 runs in the third T20I to complete a 3-0 series sweep in New Delhi last night. Put into bat, India posted 221 runs for the loss of 7 wickets in the stipulated 20 overs. In reply, Afghanistan were bowled out for 94 in 14.1 overs. Earlier, Afghanistan won the toss and opted to bowl. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
1: Thank you, Pramod. Mostly all newspapers have headlined the unprecedented revolt at Tata Sons. The Indian Express headlines, battle rages, Tata Sons board clears 5 more years for Chandra Noel objects. While the Tribune headlines, no Tata to Chandra as board clears 5-year extension, Noel calls it invalid. The Asian Age headlines, Tata Sons okays fresh 5-year term for Chandrasekharan. Ready, reliable, Modi pitches India for global chip making. Headlines, the Indian Express, while the Tribune says Modi pitches India as semicon powerhouse. The Times of India headlines, US clears bill to slap levies on countries buying Russian fuel, even as the Hindu headlines, Russian sanctions bill, India faces tariff threat. And finally, a story in the Tribune says that buying prescription medicines from a medical store could soon be recorded on CCTV, with the footage to be kept for at least 3 months. And with that, it's back to you, Pramod.
0: Thank you, Dina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Election Commission freezes Trinamool Congress's name and symbol, asks rival factions to pick new ones for West Bengal by polls. Joint Parliamentary Committee on Foreign Contribution Regulation Amendment Bill to hold its first meeting in New Delhi today. NTA releases final answer keys of UGC NET June 2026 exam for English, Commerce and Sociology. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Kerala and Rajasthan today. And in men's cricket, India crush Afghanistan by 127 runs in third T20 international to win the series 3-0. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं
3: मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
4: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
3: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: देखिए सरपंच साहिबा, हमारा मकान का नया नक्शा ऐसा बनेगा कि पूरा गांव में नहीं होगा।
6: नक्शा तो ठीक है, पर इसमें शौचालय कहाँ है?
5: अरे उसकी क्या जरूरत, हम तो हमेशा खेत खलियान में जाते हैं।
6: क्या कहा? खुले में मल से खतरनाक कीटाणु फैलते हैं, फिर हमारे हाथ के माध्यम से खाने में आ जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। हमेशा साफ और पक्के शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। शौच के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
8: हरे रंथु बेटा, अपनी गाड़ी हमेशा तैयार रखना, अब तुम्हारी भाभी के बच्चा होने का समय निकट आ गया है, इस बार उसे स्वास्थ्य केंद्र ही ले जाऊंगी।
9: घर में प्रसव होने से कई परेशानियां हो सकती हैं।
8: उचित देखरेख और स्वास्थ्य के लिए महिला का प्रसव
9: स्वास्थ्य केंद्र में ही कराएं।
8: गर्भ के दौरान बराबर जांच कराते रहें।
9: हमेशा सही और ANM से संपर्क में रहें।
8: सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर सरकार BPL परिवार को
9: माँ बच्चे के उचित पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहन राशि भी देती है।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा का सेवा संकल्प अभियान शुरू। रांची समेत राज्य के कई जिलों में रक्तदान शिविर आयोजित। कार्यकर्ताओं ने जलाया आशीर्वाद का दिया। झारखंड उच्च न्यायालय में आज जेएसएससी सीजीएल समेत अन्य नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ दायर मामलों पर होगी अहम सुनवाई। टाटा नगर में वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो को रेलवे बोर्ड की मंजूरी। 300

0: 88 लाख रुपए होंगे खर्च। रांची सहित राज्य के सभी जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 21 सितंबर तक मॉनसून रहेगा सक्रिय। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 3-0 से जीत ली। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने कहा कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इस चरण में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हो गया है। अभियान के पहले दिन सेवा दिवस के तहत रांची समेत राज्य के कई जिलों में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस दौरान भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आशीर्वाद का दिया जलाया गया।
2: आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने दिए जलाए हैं। मोदी जी ने देश के लिए जो मार्गदर्शन किया है लोगों का, उसके लिए पूरा देश अपनी कृतज्ञता के साथ उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई दे रहे हैं। जो रांची के इस फ्लाईओवर में जो उनके ही द्वारा अनमोल उपहार रांची की जनता को दिया गया है, हम सब लोग प्रार्थना करते हैं मोदी जी को ऐसे ही चिरायु दीर्घायु बनाए रखे, ऐसे स्वस्थ तन के साथ वो हमारा नेतृत्व करे।
0: NTPC नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान शुरू हुआ। अभियान की शुरुआत सेवा भवन में स्वच्छता शपथ ग्रहण समारोह के साथ हुई, जिसमें कर्मचारियों और संबंधित कर्मियों ने भाग लिया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान में स्वच्छता और जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। इधर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की सुविधा और परिसर की स्वच्छता के लिए यात्री सेवा अभियान और स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किए गए। झारखंड उच्च न्यायालय में आज JSSC CGL समेत अन्य नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ दायर मामलों पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में अदालत ने नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर लगी अंतरिम रोक बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को 48 घंटे में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। आज की सुनवाई में सरकार की ओर से दाखिल जवाब और CID जाँच रिपोर्ट पर अदालत में सुनवाई होने की संभावना है। टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो के निर्माण को लेकर रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 383.78 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डिपो बनने से वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि इससे रेल आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पाकुड़ जिले में लंबे समय से लंबित बाईपास सड़क निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने बताया कि रैयतों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बाईपास के निर्माण से जिले में यातायात की समस्या से काफी हद तक निजात मिलने की उम्मीद है।
3: कुछ राशि के अभाव में और भू अर्जन की प्रक्रिया कुछ लंबित होने के कारण एक साल से उसमें काम थोड़ा डिले हो गया।

0: गया था, आधी रोड बन गई है, बाकी आधा काम जो बचा हुआ था तो अभी हम लोगों ने उसको रिव्यू करके की प्रक्रिया को पुनः हम लोगों ने शुरू कराया है और अभी बिल्कुल हम लोग शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि दिसंबर तक रोड बन जाएगी।
1: सरायकेला खरसावां के खरसावां थाना क्षेत्र में बड़ा बाबू चौक के पास गोली चलाने के एक मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, एक गोली, दो मोबाइल फोन और दो बाइक बरामद की गई है। खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र के सौदे राय सोमटोला गांव में आज वज्रपात की चपेट में आने से 38 वर्षीय धुना बंडिंग की मौत हो गई। जिले के मारंगहादा के बुरुहातु गांव में भी वज्रपात से 13 मवेशियों की भी मौत हो गई। इधर दुमका जिले के तालझारी थाना क्षेत्र के नरगंजों के समीप देवघर बासुकीनाथ मुख्य मार्ग पर ऑटो और पिकअप वाहन की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो सवार 3 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। और अब मौसम का हाल। आज रांची समेत सभी 24 जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक की संभावना है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में मेघगर्जन और वज्रपात को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्य में 21 सितंबर तक मॉनसूनी गतिविधियां सक्रिय रहने की संभावना है। राजधानी रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले मैच को लेकर झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से तैयारियां पूरी जोरों पर हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने बताया कि मैच के आयोजन और दर्शकों की सुविधा को लेकर प्रशासन के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है।
2: हर इंटरनेशनल मैच के पहले जो तैयारी होती है उसकी तैयारियां ऑलरेडी हो रही है। जो मेंटेनेंस का काम है वो चल रहा है, टिकटिंग की जो व्यवस्था होती है, एजेंसी का चयन होता है, जिस तरीके से फूड के स्टॉल्स होते हैं, तो ये सारी बातें वहां पे हो रही है। और पब्लिक की सुरक्षा को लेके हम सारे लोग हमेशा गंभीर रहते हैं। प्लानिंग हो रही है कि जो भी लोग वहां आए उनको कोई असुविधा नहीं हो।
1: पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल रात खेले गए तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 221 रन बनाए, जबकि जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 14 ओवर और 1 गेंद में 94 रन पर सिमट गई। और अब प्रमुख अखबारों की वेबसाइट की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों के वेबसाइट ने भाजपा के सेवा संकल्प अभियान की खबर को सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर की सुर्खी है, सहायक आचार्य परीक्षा का संशोधित रिजल्ट रद्द, 4 सप्ताह में नया रिजल्ट जारी करने का आदेश। दैनिक भास्कर लिखता है, एक कॉल पर 4 घंटे में मिलेगा रक्त, राज्य सरकार ने किया MOU। दैनिक जागरण ने लिखा है, 31 साल पहले थी 100 रुपए की रिश्वत, झारखंड में 75 साल की उम्र में पूर्व रेलकर्मी को जेल। वहीं हिंदुस्तान की सुर्खी है, 60 साल पुरानी बस्ती पर चला बुलडोजर, पथराव करने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा का सेवा संकल्प अभियान शुरू, रांची समेत राज्य के कई जिलों में रक्तदान शिविर आयोजित, कार्यकर्ताओं ने जलाया आशीर्वाद का दिया। झारखंड उच्च न्यायालय में आज JSSC CGL समेत अन्य नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ दायर मामलों पर होगी अहम सुनवाई। टाटा नगर में वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो को रेलवे बोर्ड की मंजूरी, 383.78 करोड़ रुपए होंगे खर्च। रांची सहित राज्य के सभी जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 21 सितंबर तक मॉनसून रहेगा सक्रिय। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 3-0 से जीत ली। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: बहन, मेरी बिटिया की आंखों की रोशनी छोटी सी उम्र में ही कमजोर हो गई है, रात में उसे ठीक से दिखाई ही नहीं देता।
4: कहीं तुम्हारी बेटी में विटामिन ए की कमी तो नहीं हो गई है?
3: विटामिन ए वो क्या होता है बहन?
4: विटामिन ए शरीर के विकास और खासकर आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी होता है। तुम्हारी बिटिया की आयु क्या है?
3: 4 वर्ष।
4: अपनी बिटिया को विटामिन ए की खुराक पिलाओ, ये 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 6 माह के अंतर पर दी जानी चाहिए।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: तुम्हारी माता जी का स्वास्थ्य अब कैसा है?
7: क्या बताऊं भाई, कल माता जी के स्वास्थ्य की जांच के लिए उन्हें गांव के सरकारी अस्पताल में ले गया था, पर वहां तो डॉक्टरों ने उनकी ठीक से जांच ही नहीं की। अब आम आदमी कहां फरियाद करे?
6: अरे डायल करो 104 नंबर।
7: वो क्या है भाई?
6: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन, जहां सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों से संबंधित शिकायत जैसे अस्पताल में डॉक्टर का न होना, दवाई का न होना या अन्य कोई गड़बड़ी की जानकारी दर्ज कराई जा सकती है।
8: 104 की सेवाएं 24 घंटे

बहन कमला मोहराना एक स्वयं सहायता समूह चलाती है। इस समूह की महिलाएं दूध की थैली और दूसरी प्लास्टिक पैकिंग से टोकरी और मोबाइल स्टैंड जैसी कई चीजें बनाती है। ये इनके लिए स्वच्छता के साथ ही आमदनी का भी एक अच्छा जरिया बन रहा है। हम अगर ठान ले तो स्वच्छ भारत में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। कम से कम प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के बैग का संकल्प तो हम सबको ही लेना चाहिए। आप देखेंगे आपका ये संकल्प आपको कितना संतोष देगा और दूसरे लोगों को जरूर प्रेरित करेगा।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी रांची, मीडियम वेव 546.45 मीटर और यानी 549 किलोहर्ट्ज़, सता एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज के प्रसारण में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त मीता।

नमस्कार श्रोताओं, अभिनय की संवेदनशील आवाज की हम आज बात करेंगे। भारतीय सिनेमा के उस सशक्त अभिनेत्री की बात जिन्होंने अपने अभिनय से सिर्फ पर्दे पर किरदारों को जीवंत नहीं किया बल्कि समाज और स्त्री जीवन से जुड़े अनेक संवेदनशील सवालों को भी अपने फिल्मों के माध्यम से आवाज दी। नाम है शबाना आजमी। 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में जन्मी शबाना, इनका संबंध एक प्रतिष्ठित साहित्यिक और सांस्कृतिक परिवार से रहा। इनके पिता कैफी आजमी देश के प्रसिद्ध शायर थे और माँ शौकत कैफी रंगमंच की जानी मानी कलाकार थीं। ऐसे माहौल में पली बढ़ी शबाना के जीवन में साहित्य, रंगमंच और कला का प्रभाव स्वाभाविक रूप से आया। शबाना आजमी ने पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से अभिनय का प्रशिक्षण लिया। साल 1974 में फिल्म अंकुर से उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। इस फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा गया और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। उन पर केंद्रित कार्यक्रम का यह पहला गीत आइए आपको सुनवाते हैं।

प्रगाढ़ प्रेम की अनोखी वानगी आपने सुनी इस गीत में। और हम बात करें शबाना आजमी की, तो उन्होंने व्यावसायिक फिल्मों के साथ साथ समानांतर सिनेमा में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। अर्थ, मंडी, पार, मासूम, फायर और गॉड मदर जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाए। उनकी अभिनय की खासियत रही किरदार को सिर्फ निभाना नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं और मनःस्थिति को गहराई से महसूस करके पर्दे पर उतारना। शबाना आजमी को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मानों में से एक 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन शबाना आजमी की पहचान सिर्फ एक अभिनेत्री के रूप में नहीं है, वे सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए जानी जाती हैं। महिलाओं के अधिकार, बच्चों से जुड़े विषय और सामाजिक समानता जैसे मुद्दों पर उनकी सार्वजनिक भूमिका चर्चा में होती है। कार्यक्रम का बेहद खूबसूरत गीत है अगला गीत, आइए हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म है थोड़ी सी बेवफाई।

रंगमंच से भी शबाना आजमी का जुड़ाव रहा। फिल्मों के साथ थिएटर में भी उनका काम यह बताता है कि अभिनय उनके लिए केवल लोकप्रियता का माध्यम नहीं बल्कि अभिव्यक्ति और संवेदना का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। शबाना आजमी का जीवन हमें यह संदेश देता है कि एक कलाकार अपने समय और समाज से संवाद करते हुए कला को और अधिक अर्थपूर्ण बना सकता है। उन्होंने अपने लंबे करियर में अनेक यादगार किरदार निभाए और भारतीय सिनेमा में अभिनय की एक ऐसी शैली स्थापित की जिसमें सादगी के साथ गहराई दिखाई देती है। आज हम उन्हें उनके जन्म दिवस पर ढेर सारी बधाइयां देते हैं और उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं।

पलामू कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारा नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम की शुरुआत आज के सुविचार से, सपने बड़े देखें और उसे साकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। जी हाँ, अगर आपके सपने बड़े होंगे तभी आप कोई बड़ा काम कर सकेंगे और अपने सपनों को साकार करने के लिए आप अपनी पूरी ताकत को अगर लगा देते हैं तो सफलता निश्चय ही आपके कदम चूमती है। बात करें मौसम की, तो अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं गरज के साथ थोड़ी बहुत बारिश भी हो सकती है। कल यानी कि 19 सितंबर को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। सुबह बेहद ही सुहावनी है, न गर्मी का एहसास न ठंड का कोई प्रकोप। बहुत अच्छा लग रहा है मौसम और इस मौसम का आप आनंद उठाएं, लेकिन मच्छरों से अपना बचाव करते रहें। अगर इस मौसम में मच्छर आपको काटते हैं तो मलेरिया होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। पूरी बाजू के कपड़े पहने और शाम को खिड़की दरवाजे बंद रखें। अगर खिड़कियां खुली हुई हैं तो उनमें जाली लगी होनी चाहिए और रात को मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें। और अगर ऐसा आप करते हैं तो आप इस मौसम का आनंद उठा पाएंगे।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए कुछ खबरों पर डालते हैं निगाह। ब्रिक्स की सफलता भारत की कूटनीतिक सफलता, कहना है यशवंत सिन्हा का। पुतिन, शी समेत सभी राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी, संयुक्त घोषणा पत्र और द्विपक्षीय वार्ताओं को बताया भारत की बड़ी उपलब्धि। नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के समापन के बाद पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने इसे भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया है। उन्होंने सम्मेलन की सफलता को तीन प्रमुख बिंदुओं में समझाते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिस्क्यान की मौजूदगी के साथ संयुक्त घोषणा पत्र और द्विपक्षीय बैठकों को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सिन्हा ने एक बातचीत में कहा कि सम्मेलन की पहली सफलता यह रही कि जिन राष्ट्राध्यक्षों को भारत ने आमंत्रित किया था वे सभी सम्मेलन में पहुंचे। उन्होंने विशेष रूप से पुतिन और शी जिनपिंग की मौजूदगी को अहम बताया। उनके मुताबिक सम्मेलन के बाद संयुक्त घोषणा पत्र जारी होना दूसरी बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले विदेश मंत्रियों की बैठक में संयुक्त घोषणा पत्र जारी नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार अधिकारियों के प्रयासों से इस पर सहमति बनी। यशवंत सिन्हा ने सम्मेलन की तीसरी उपलब्धि के तौर पर विभिन्न देशों के नेताओं के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ताओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत ने सम्मेलन के दौरान सभी महत्वपूर्ण नेताओं के साथ बैठकें की, जिससे कूटनीतिक स्तर पर संवाद को आगे बढ़ाने का अवसर मिला है। जितनी भाषाएं सीख सकें सीखें, लेकिन अपनी भाषा न छोड़ें। हिंदी दिवस पर अमित शाह ने जेन जे से की अपील। हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने युवाओं से अधिक भाषाएं सीखने के साथ अपनी मातृभाषा से जुड़े रहने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत की भाषाई विविधता उसकी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। हर भाषा अपने साथ इतिहास, लोक परंपराएं और दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया लेकर चलती है, और यही विविधता देश में विविधता में एकता की भावना को मजबूत करती है। अमित शाह ने युवाओं से कहा कि वे दुनिया की जितनी भाषाएं सीख सकते हैं सीखें, लेकिन अपनी भाषा को न छोड़ें। उन्होंने माता पिता से भी बच्चों के साथ उनकी मातृभाषा में बात करने की अपील की है। शाह ने कहा कि अपनी भाषा बोलने में हीन भावना महसूस करना गलत है। भाषा व्यक्ति को उसकी माँ, मिट्टी, इतिहास और संस्कृति से जोड़ती है। उन्होंने कहा कि हिंदी संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के तौर पर देश के अलग अलग समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। हालांकि हिंदी का विकास तभी सार्थक है जब वह दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ आगे बढ़े। हिंदी किसी अन्य भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकात्मा की महत्वपूर्ण कड़ी है।

आरएस मोर कॉलेज में धनबाद हॉस्पिटलिटी सेंटर का हुआ भव्य उद्घाटन। युवाओं को मिलेगा 45 दिनों का निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य रंजन ने आरएस मोर कॉलेज गोविंदपुर परिसर में धनबाद हॉस्पिटलिटी सेंटर का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। यह केंद्र जिला प्रशासन धनबाद एवं HDFC बैंक बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा संचालित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं को उद्योग की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना है। केंद्र में मल्टी फंक्शनल ऑफिस एसोसिएट्स तथा फूड एंड बेवरेज जैसे रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। 45 दिनों का एक गहन आवासीय गैर आवासीय प्रशिक्षण पूरा करने वाले सभी सफल विद्यार्थियों को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का मान्यता प्राप्त प्रमाण दिया जाएगा। साथ ही कोर्स पूरा होने के तुरंत बाद विद्यार्थियों को 100% रिप्लेसमेंट सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह हॉस्पिटलिटी सेंटर जिले के युवाओं को तकनीकी और व्यावहारिक रूप से दक्ष बनाकर उनके लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा। तो इन खबरों के बाद आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

और अब आपके लिए हम लेकर आए हैं आज के इतिहास की जानकारी। तो आइए पलटते हैं इतिहास के पन्ने। 1615 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर से मिलने सूरत पहुंचे थे। आज की तारीख को 1810 में चिली ने स्पेन से खुद को स्वतंत्र घोषित किया था। तारीख थी 18 सितंबर 1810। 1812 में रूस की राजधानी मॉस्को में लगी भीषण आग से शहर का बड़ा हिस्सा तबाह हुआ था। आज की तारीख को 1947 में अमेरिका में वायु सेना की एक अलग शाखा के रूप में स्थापना हुई थी। 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना के स्थानीय मुख्यालय पर बड़ा हमला जिसमें देश के 19 जवान शहीद हुए थे। सन 1900 में शिव सागर राम गुलाम मॉरिशस के प्रथम प्रधानमंत्री और गवर्नर जनरल का जन्म हुआ था 18 सितंबर को। 1906 में काका हाथरसी जो कि प्रसिद्ध भारतीय हास्य कवि थे इनका जन्म हुआ था 18 सितंबर को। 1931 में श्रीकांत वर्मा प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार और राजनीतिज्ञ इनका भी जन्म हुआ था। और साथ ही 1950 में भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री शबाना आजमी का जन्म आज ही की तारीख को हुआ था। तो इतिहास से जुड़ी कई रोचक बातें हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए। और भी कई बातें हम आपसे करेंगे लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: और हम आपके सेहत का रखते हैं ख्याल, ताकि आप हमारे साथ बने रहें और हमारी दोस्ती यूं ही हमेशा बनी रहे। तो आज सेहत की बातों के तहत बात करते हैं टाइम पास की। जी हाँ, टाइम पास, इसे हम टाइम पास कहते हैं। जब हम होते हैं ट्रेन की लंबी यात्रा पर या पिक्चर हॉल में, तो अपने टाइम पास के लिए हम क्या लेते हैं दोस्तों? जी हाँ, आपने ठीक समझा, मूंगफली, जिसे कहते हैं बादाम भी और चिनिया बादाम भी। तो बात करते हैं मूंगफली की, आपके सेहत के लिए इसका सेवन कितना फायदेमंद होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मूंगफली खाने के काफ़ी फायदे हैं दिल की सेहत के लिए। मूंगफली में मौजूद मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट दिल को स्वस्थ रखते हैं और ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। जी हाँ, आपके वजन का भी नियंत्रण करते हैं। इसमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं, जिससे कि बार बार भूख नहीं लगती। ब्लड शुगर आज घर घर की बीमारी बन चुकी है, इसका भी कंट्रोल होता है मूंगफली के जरिए। मूंगफली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए रक्त शर्करा को नियंत्रित रखने में मददगार है। हड्डियों की मजबूती के लिए भी यह बेहद ज़रूरी है। इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। साथ ही अगर आप अपने सौंदर्य के प्रति सचेत हैं और आपको लगता है कि आपका सुंदर दिखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, तो आप यह नोट कर लें कि मूंगफली के सेवन से त्वचा की चमक भी बढ़ती है। विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को स्वच्छ और चमकदार बनाए रखते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने सौंदर्य के लिए मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दिन में कितनी मूंगफली खानी चाहिए, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए और इसका सही समय, यानी मूंगफली खाने का सही समय क्या होता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ की अति जो है वह नुकसानदायक होती है, इसलिए आप थोड़ी मात्रा में ही मूंगफली खाएं। इससे आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा, प्रोटीन और आवश्यक पोषक तत्व मिलेंगे, जो कि कई बीमारियों से आपका बचाव करेंगे। और रोज़ाना अगर आप मूंगफली खाते हैं तो ज़्यादा मूंगफली नहीं खाएं, शरीर का वजन बढ़ भी सकता है। हाई कैलोरी होती है, 100 ग्राम मूंगफली में लगभग 560 कैलोरी होती है। ज़्यादा खाने से शरीर में कैलोरी जरूरत से ज़्यादा हो जाएगी। हेल्दी फैट्स की बात करें तो मूंगफली में वसा यानी फैट अधिक होती है, जो यदि ठीक से बर्न न हो तो वजन को बढ़ाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फैट्स या कैलोरी जनित खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कैलोरी बर्न भी होनी चाहिए। आप कुछ शारीरिक मेहनत करें या टहलें या कुछ व्यायाम करें, तभी आपकी कैलोरी बर्न होगी, नहीं तो आप मोटापा का शिकार हो जाएंगे। इसकी मात्रा का नियंत्रण में होना भी बेहद ज़रूरी है। लोग अक्सर स्वाद में एक मुट्ठी की जगह बहुत सारी मूंगफली खा लेते हैं, जो कि फ़ायदा की जगह आपको नुकसान देता है। सीमित मात्रा में यानी एक छोटी मुट्ठी या लगभग 25-30 ग्राम मूंगफली खाने पर मूंगफली से आपको यह तेज़ी से चीज़ें बढ़ती हुई अनुभव होंगी, जैसे कि ऊर्जा। यह प्राकृतिक एनर्जी बूस्टर है, जो कमजोरी और थकान को दूर करती है। आपकी मांसपेशियों में आपको ताकत महसूस होगा। इसमें उच्च प्रोटीन से स्टेमिना बढ़ता है और गुड कोलेस्ट्रॉल भी इसमें पाया जाता है। यह शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL के स्तर को सुधारने में मदद करती है। तो सीमित मात्रा में मूंगफली का प्रयोग करें और सेहतमंद रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के जोहार पलामू कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, जोहार।
1: जोहार पलामू।

अभी आप सुन रहे थे जोहार पलामू कार्यक्रम, प्रस्तुति स्वर शर्मिला वर्मा का और प्रस्तुति एवं संयोजन प्रशांत गौरव की थी। और अब समय हो चुका है प्रायोजित कार्यक्रम का, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। तो करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत विचार से, जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी ने। लिखते हैं, ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक सच्चा व्यवहार और प्रेम ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। आप सबका आभार संदेश भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। गांव डांगरी जिला जैसलमेर से बाबूराम जयपाल। ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी, सादर नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व जो गीत कार्यक्रमों में जवानों उठो, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के जीवन पर प्रकाश डाला, वो बेहद सराहनीय और प्रशंसनीय लगा। सबसे बढ़िया मुझे देशभक्ति गीत लगे। आप सबके उम्दा संदेशों के लिए एक बार फिर से मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है, इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया भर की उन मजेदार लेकिन साथ ही साथ गंभीर परंपराओं के बारे में रोचक जानकारियाँ। तो श्रोता मित्रों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अजब गजब परंपराओं की। अब तक हमने बात की उन जंगलों की, जहाँ लोगों को संदेश दिया जाता है कि जंगल मत काटो। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे जंगल की जिसे काटना तो दूर कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं।

0: पिछले दो दिनों में हमने जापान और रूस का भ्रमण किया। आइए अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में। वहाँ की खासी जनजाति एक अद्भुत पर्यावरण से जुड़ी परंपरा का पालन करती है। वहाँ के कुछ विशेष जंगलों को लाव क्यंटांग कहते हैं। खासी भाषा में लाव यानी वन और किंगटांग यानी पवित्र होता है, यानी पवित्र वन या जंगल। इसे लेकर एक सुंदर लोक कथा है जो अलग अलग प्रकार से सुनाई जाती है। बहुत पहले की बात है, एक गाँव के किनारे घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, जंगली फूल, पक्षियों की आवाजें और बीच से बहती छोटी सी जलधारा। गांव के बच्चे उस जंगल को देखकर कहते, ये हमारा जंगल है। लेकिन गांव के बुजुर्ग उन्हें रोक कर कहते, नहीं, ये हमारा जंगल नहीं है, हम तो बस इसके रखवाले हैं। गांव के मुखिया और बुजुर्ग सबको यही समझाते, जंगल हमारा नहीं है, ये प्रकृति का वो वरदान है जिसकी रक्षा के लिए हमें नियुक्त किया गया है। लोक कथा कहती है, एक दिन गांव में एक व्यक्ति को लकड़ी की जरूरत पड़ी। उसने सोचा, जंगल इतना बड़ा है, अगर एक पेड़ काट भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ पर पहला प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, उसे बुजुर्ग की बात याद आई, कुछ लेने से पहले इस जंगल से जरूर पूछना, क्योंकि ये जंगल तुम्हारा नहीं है। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी। जितने भी लोग जंगल में पेड़ काटने आते, यदि उन्हें अपने बुजुर्गों की बात याद आ जाती तो वे भी अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़ जाते। समय बीतता गया, एक पीढ़ी गई, दूसरी आई, फिर तीसरी। लोगों ने घर बनाए, खेती की, बाजार बनाए, लेकिन उस पवित्र जंगल को वैसा ही रहने दिया। न कोई पेड़ काटता, न शिकार करता, न वहां से लकड़ी उठाता, और जंगल वो हर वर्ष और घना होता चला गया। उसकी जड़ें मिट्टी को थामे रहीं, उसकी जड़ों ने और वनस्पतियों ने जल स्रोतों को संभाला, पक्षियों और छोटे जीवों को आश्रय मिला। लोग कहते, इस गांव में सबसे ज्यादा हरियाली है। श्रोताओं ध्यान से सुनिए, जब हम कहते हैं पेड़ लगाइए, जंगल बचाइए, जल बचाइए, तो खासी समुदाय की ये पुरानी परंपरा हमें एक और गहरी बात सिखाती है। वो ये कि प्रकृति की रक्षा केवल नियम बनाकर नहीं, उसके प्रति सम्मान पैदा करके भी की जा सकती है, क्योंकि नियमों से जो काम नहीं होते वे सम्मान देकर आसानी से किए जा सकते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, लोक कथा बताती है कि वहाँ एक जंगल को बचाने के लिए हजारों पहरेदारों या वन रक्षकों की जरूरत नहीं पड़ी। बस एक विचार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, हम जंगल के मालिक नहीं, रखवाले हैं। और शायद आज हमारी धरती को इसी विचार की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो खासी समुदाय के पुराने लोगों ने दिया है। और वो विचार है, ये जंगल हमारा नहीं है, हम जंगल के रखवाले हैं। तो श्रोताओ, आप तो सुविचार भेजते ही रहते हैं। आज सुनिए उमंग कार्यक्रम की ओर से ये सुविचार। आज अगर हम परिवार और आसपास के एक पेड़ को सिर्फ पेड़ न मानकर परिवार का सदस्य मान लें, तो दुनिया और ज्यादा खुशहाल बन जाएगी। अगर ये विचार आज हम धारण कर लें, तो शायद हमारी धरती कोड़ी और हरी हो जाए। शायद आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद दें कि हमने उन्हें केवल इमारतें नहीं, एक जीवित धरती भी विरासत में दी है। तो श्रोता मित्रों, कैसी लगी जानकारी पवित्र वन की, जरूर लिखकर बताइएगा। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताजा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को तुच्छ, निकृष्ट और छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी किसी के काम आ सकता है।
1: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: मैं आपके काम जरूर आऊंगा। छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए।
4: शेर और चूहे की दोस्ती, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब सुनिए अबला को सबला बनाने वाली अबला। ये कार्यक्रम सुप्रसिद्ध भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस की पत्नी श्रीमती अबला बोस के जीवन और नारी उत्थान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताता है।
0: इतिहास में बहुत सारी नायिकाएं ऐसी भी हैं जिन्हें शायद बहुत अधिक स्मरण नहीं किया जाता, जिनका नाम दुनिया के प्रसिद्ध लोगों की सूची में नहीं मिलता, उनकी सराहना में प्रशस्ति गान नहीं लिखे गए और न ही उन्होंने अखबारों की सुर्खियां बटोरी, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया उसकी मिसाल दुर्लभ है।
5: जनस्मृति से भले ही वे नाम धूमिल और विस्मृत हो जाएं, लेकिन इतिहास उन्हें आदर सहित याद रखता है और कभी ना कभी उन्हें आभार सहित प्रकट अवश्य कर देता है। ऐसा ही एक नाम है अबला बोस का।

19वीं सदी का अविभाजित भारत, देश में बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार, दहेज जैसी कई स्त्री विरोधी कुप्रथाएं थीं, जिन्हें चाहकर भी समाप्त नहीं किया जा सका था।

0: उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने का बीड़ा उठाया, लेकिन कौन थी अबला बोस? बता दें, वे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की पत्नी थीं। जगदीश चंद्र बोस पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी और जीव भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया।
1: कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। यदि कहा जाए कि महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की सफलता के पीछे भी उनकी पत्नी अबला बोस का हाथ था, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अबला बोस का जन्म 8 अगस्त 1865 को बरिशाल में हुआ था। बरिशाल तब अविभाजित भारत का हिस्सा था और अब ये बांग्लादेश में है।
0: अबला के पिता दुर्गा मोहन दास ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता और समाज सुधारक थे। अबला की मां ब्रह्ममयी परित्यक्त, विधवा और घरेलू हिंसा के शिकार स्त्रियों के उत्थान के लिए काम किया करती थी। एक दिन की बात है, अबला की मां ब्रह्ममयी किसी मोहल्ले में रहने वाली मजदूर स्त्रियों का हाल चाल पूछने गई थी। उनके साथ अबला भी थी।
2: पानी ले आ रहा है?
0: कल रात तो फिर भी करा गया।
3: क्या बताऊं दीदी, रोज का यही है। हम औरतों की तो हालत बहुत बुरी है दीदी।
0: न कमाता है, न धमाता है, ऊपर से रोज जमाता है।
3: दीदी,
0: अरे इनको तो
3: दीदी।
4: अरे आलोका, तुम सब ठीक तो है ना?
3: नहीं दीदी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।
4: अरे
3: जिस दिन आप परिवार वालों को समझाने आई थी,
4: हाँ हाँ,
3: उसके बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन अब फिर।
4: अब फिर क्या?
3: मुझको कहते हैं तू अपने आदमी को खा गई, हमारे साथ नहीं रह सकती, कहीं और अपना इंतजाम कर ले। कल रात मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊँ दीदी, मायके में भी कोई स्वीकार नहीं करेगा।
4: रो मत आलोका, आज तुम नारी रात्रि पाठशाला में ही रुक जाओ, मैं सारी महिलाओं के साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। बहनों, कल सभी तैयार रहें।
5: जी दीदी।
4: हम सब आलोका के घर चलेंगे।
5: बिल्कुल चलेंगे।
4: आज इसके साथ हो रहा है, कल किसी के भी साथ हो सकता है।
5: जी दीदी।
6: जी दीदी,
5: हम सब तैयार हैं।
1: उन दिनों स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सिस्टर निवेदिता जैसे प्रगतिशील विचारों के प्रभावशाली लोगों के कारण समाज में परिवर्तन आ रहा था। इस कारण ब्रह्ममयी दीदी के नेतृत्व में आलोका जैसी अनेक स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा हो सकी।
0: बालिका अबला ने ऐसी बहुत सी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। वो ऐसे वातावरण और परिवार में पली जहां नारी उत्थान के लिए काम किया जाता था, नारियों को सशक्त, स्वावलंबी और शिक्षित बनाने पर जोर दिया जाता था।
1: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना हुई। वे मात्र 10 वर्ष की थी कि तभी उनकी माता का देहांत हो गया। लेकिन अबला के बाल मन पर उनकी माता की जो छाप पड़ी वो आजीवन उनके साथ रही।
0: प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने बंग महिला विद्यालय और फिर बैथ्यून कॉलेज में दाखिला लिया और फिर मेडिसिन की पढ़ाई के लिए वे मद्रास चली गईं, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है।
1: लेकिन सेहत खराब होने के कारण वे बंगाल लौट आईं और कभी वापस चेन्नई नहीं गईं। वापस नहीं जाने का कारण था 23 वर्ष की आयु में

0: उनकी सर जगदीश चंद्र बोस से शादी। ये था वर्ष 1887 का।
1: समय बदल रहा था। व्याख्यान देने और शोध कार्य के लिए उनके पति सर जगदीश चंद्र बोस को अक्सर विदेश जाना होता था, तो वे भी उनके साथ हुआ करती थीं।
0: एक बार की बात है, शोध के सिलसिले में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए।

0: यूरोप और अमेरिका विदेश यात्राओं के दौरान उन्होंने उन देशों की महिलाओं की सशक्त सामाजिक, आर्थिक और रहन-सहन की स्थिति को ध्यान से देखा। अबला बोस ने देखा कि यहाँ स्त्रियों की दशा बहुत उन्नत है। किसी भी कार्यक्षेत्र और विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी उन्होंने देखा कि जितने पुरुष कर्मी थे, लगभग उतनी ही स्त्रियां भी थीं।
1: और यहीं से शुरू हुआ उनका आगे का सफर, जिसने एक गौरवशाली इतिहास रच दिया। एक और महत्वपूर्ण घटना ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 1917 में डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि मिली।
0: लंदन का रॉयल अल्बर्ट हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बहुत से देशों के वैज्ञानिक इस अवसर पर निमंत्रित थे।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, Royal Society of London welcomes you all at this occasion. We have gathered here to facilitate Dr. Jagdish Chandra Bose, the great scientist from India. Now, I request the President of Royal Society to confer knighthood to Dr. Bose. From today, he will be the esteemed Fellow of the Royal Society. Now, I request him to kindly come on the dais to receive the knighthood. And ladies and gentlemen, it is said, behind every successful man, there is a woman. So now I request the great woman, Lady Bose, his wife, to come on the dais. Give this lady a standing ovation.
0: तब से वे लेडी बोस के नाम से जानी जाने लगी। उस रात डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस अपनी पत्नी अबला बोस के साथ भोजन के बाद बातें कर रहे थे।
3: वाह, सचमुच खाना तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट था ना?
4: जी।
3: बैठो। अच्छा एक बात बताओ, आखिर बात क्या है?

0: मैं सोच रही थी कि यहाँ की स्त्रियाँ कितनी स्वतंत्र और सशक्त हैं। मेरे कहने का मतलब है, यहाँ समाज में उनका बराबर का स्थान है, उनका भी सम्मान उतना ही होता है जितना कि पुरुषों का होता है।
1: बिल्कुल।
0: आपने देखा नहीं, आज आपके नाइटहुड सम्मान के दौरान आपकी पत्नी होने के नाते मुझे कितना सम्मान मिला।
1: हाँ, वो तो है अबला। इसीलिए इन लोगों ने इतनी तरक्की की है।
0: वो तो है। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे अपने देश की स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए।
1: हाँ।
0: हमें उन्हें शिक्षित और स्वावलंबी बनाने की जरूरत है।
1: बिल्कुल।
0: आपको नहीं लगता?
1: लगता है अबला, बिल्कुल लगता है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात होगी। देखो अबला, तुम जो कुछ भी कर सकती हो जरूर करो। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
0: हाँ, हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ही हमारे देश की स्त्रियों को उनका अस्तित्व दिलाएगी।
1: सही कहा तुमने। मुझे तुम पर गर्व है अबला। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा।
0: मुझे भी तो आप पर गर्व है। आपने विज्ञान में बड़ी साधना की है और अपना आसमान ढूंढ लिया है। अब मुझे अपना आसमान ढूंढना है।
1: बिल्कुल।
0: एक ऐसा आसमान जहां हमारे देश की स्त्रियां उड़ान भर सकेंगी, इज्जत से किसी आजाद परिंदे की तरह।
1: ऐसा ही होगा अबला, बिल्कुल ऐसा ही होगा।

0: फिर क्या था। यूरोप की यात्रा से वापस आकर वे लग गईं अपने अभियान में। अशिक्षा और पुरुषों पर आर्थिक और सामाजिक निर्भरता के कारण भारत में उस समय स्त्रियों की दशा दयनीय थी।
1: उन्होंने संघर्ष किया और 1919 में नारी शिक्षा समिति की स्थापना की, जिसका काम प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, उनके लिए पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना, मातृत्व बाल केंद्र और विधवाओं हेतु कल्याण केंद्र खोलना था। उनके द्वारा खोले गए व्यावसायिक स्कूलों में विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर स्त्रियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और चमड़े का काम सिखाया जाता था।
0: इतना ही नहीं, अबला बोस के प्रयासों से कलकत्ता और झारग्राम में महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य से महिला शिल्प केंद्र की स्थापना की गई।
1: अबला बोस के प्रयासों को देखते हुए बंगाल महिला शिक्षा लीग ने उन्हें अपना पहला अध्यक्ष बनाया। उनकी मेहनत रंग लाई और बंगाल में स्त्री शिक्षा के प्रति लोगों का नजरिया बदलने लगा। स्कूल जाने वाली बालिकाओं की संख्या बढ़ने लगी।
0: अबला यानी लेडी बोस को बड़ी खुशी होती जब स्त्रियां उन्हें बताती कि शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने से किस तरह उनके जीवन में खुशी आई है।
2: मेरी तो दुनिया ही बदल गई।
3: अरे दीदी, जब से बुनाई का काम सीखा है तब से घर वाला भी बड़ी इज्जत
2: है। जो बच्चे हैं ना, जब कमा के ले जाती हूँ
3: दीदी, जिंदगी इतनी खुशहाल हो गई है कि क्या ही बताऊँ। जब से मैंने वो टोकरी बनानी शुरू की है, घर के कामों में भी बहुत मदद मिल जाती है।
2: देखो मेरा पर्स, ये मैंने ही बनाया है।
3: अरे अपनी पावर खड़ी है, किसी के आगे क्यों मांगना। सही बात है, हमें नहीं मांगना चाहिए किसी से। अब तो हम अपना काम कर रही हैं, अब हम सशक्त बन रही हैं।
2: बिल्कुल।
0: इस समय तक अबला बोस देश की प्रभावशाली महिलाओं के संपर्क में आ चुकी थीं, जिनमें भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू, रमाबाई रानाडे, सिस्टर निवेदिता जैसी महिलाएं प्रमुख थीं। उन दिनों देश में महिलाओं को मताधिकार देने की बात चल रही थी। साल 1921 में भारत में पहली बार बॉम्बे और मद्रास में महिलाओं को मताधिकार मिला।
1: अबला ने बंगाल की महिलाओं के लिए आवाज उठाई और 1925 आते आते बंगाल की महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा था,
4: मताधिकार के द्वारा अब बंगाल की महिलाएं भी समानता का अनुभव कर सकेंगी, ये सुनिश्चित कर सकेंगी कि उन्हें सम्मान पूर्वक जीने के लिए किसको चुनना है।

सन 1937 में उनके पति श्री जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने उनसे वादा लिया कि नारी उत्थान के कार्य को वे निरंतर करती रहेंगी। अबला ने महिलाओं के हक में काम करना जारी रखा और उनके हित के लिए अथक प्रयत्न करती रहीं।

0: अपने जीवन के अंतिम समय में वो दार्जिलिंग में बस गई। 26 अप्रैल 1951 को इस महान महिला अधिकारवादी नेत्री लेडी अबला बोस का निधन हो गया।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है और कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। आइए समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
1: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल दो प्रतिद्वंदी गुट है और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉक्टर सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
2: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की है। झारखंड और ओडिशा में 7 ठिकानों पर तलाशी और जब्ती कार्रवाई जारी है। ईडी के मुताबिक ये कार्रवाई बैंक के सरायकेला शाखा में कथित बड़े पैमाने पर हुई धोखाधड़ी की जांच के तहत की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देंगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। भारत ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें अगले सप्ताह अमेरिका के न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को वीडियो के जरिए संबोधित करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने पिछले वर्ष भी वीजा नहीं मिलने के बाद वीडियो के जरिए संबोधन किया था। मौसम विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दिल्ली में भी आज बादल छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। एशियन गेम्स 2026 में आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत करेगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम मेजबान जापान के खिलाफ पहली बार खेलेगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला जापान के कुरोगी एथलेटिक पार्क में खेला जाएगा। भारत की टीमें आज सॉफ्ट टेनिस और टेक बॉल में भी मुकाबले खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के ठीक 10:10 और पूरे 17 सेकंड्स हो चुके हैं, और साथ ही साथ वक्त हो चुका है आपके और हमारे पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो मैम
0: जी, आपका शुभ नाम और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम दोनों दोस्त है परभनी से। सतीश कावे मेरा नाम है और दोस्त का नाम वनरंग मोरे। फिल्म
0: जी बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
2: का नाम है लावारिस।
0: जी
2: अपने
0: जी
2: तो ऐसे वैसे
0: अच्छा, ये गाना सुनना चाहते हैं जी। अपने बारे में कुछ बताइए और अपने दोस्त जो जिनका नाम लिया उनके बारे में भी बताइए। कैसी है दोस्ती आपकी? कभी दोस्तों के बीच खटपट नहीं होती है?
2: दोस्ती हमारी पक्की है।
0: पक्की है?
2: हाँ,
0: अच्छा, कैसे पक्की की दोस्ती? कुछ तकरार नहीं होती कभी?
2: हमारी दोस्ती दोस्ती हमारी 10 साल से है।
0: अच्छा।

0: भारती की दोस्ती है वैसा हमारी दोस्ती है।
1: जी जी अच्छा,
0: जैसा रेडियो मित्र है वैसा हमारा मित्र है।
1: जी और कुछ कहना चाहते हैं?
0: धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने
0: गणपति बापा की शुभकामनाएं आपको, सबको जो श्रोता सुनने वाले उनको भी।
1: जी जी आपको भी।
0: विसर्जन विसर्जन के दिन अच्छा देखभाल करो, बच्चे छोटे छोटे बच्चे है उनके ध्यान दीजिए, क्योंकि आजू बाजू में गाड़े आते हैं।
1: विसर्जन पर ध्यान देने की बात जो कही आपने, बड़ी सही बात कही है कि उस समय एक जो निजी स्तर पर सोच होती है वो आपको ठीक रखनी चाहिए कि मान लीजिए विसर्जन हो रहा है तो उसमें बच्चों का ख्याल रखें, और कोई बीमार मरीज है तो एम्बुलेंस है जा रहा है तो उसको रास्ता दीजिए, वो अपनी भीड़ से निकाल देना चाहिए ताकि कई बार जान को खतरा होता है तो उनकी जान बच जाए, है ना।
0: और बारिश तो नहीं, कई कई लंबे बॉडी की तरफ जाना पड़ता है, वहाँ भी थोड़ा ध्यान दीजिए, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, गणपति के साथ में ले जाओ मत, बड़े बड़े को एक दो अंदर उतर सकते हैं पानी में।
1: जी जी बिल्कुल, और अब सरकार की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है कि आपको सीधे पानी में नहीं उतारते हैं, वो बाकायदा जगह जगह कुछ ऐसे गड्ढे भी बनवा देते हैं और वहीं एक सीमा तक जाने देते हैं, सीधे आपको पानी में उतरने नहीं देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
0: धन्यवाद धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। आदाब मैडम
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी? मेरा नाम नहीं है, देखिए मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ, जिला बड़गाम में हमारा गांव पड़ता है। मैडम जी, आज जब से दोबारा हैदर फरमाइश स्टार्ट हुआ था, आपके साथ दूसरी बार बात कर रहा हूँ ममता जी।
0: जी बहुत शुक्रिया, आपका शुभ नाम क्या है?
1: जी नहीं मलिक, मेरा शुभ नाम है, सेंट्रल कश्मीर के बड़गांव डिस्ट्रिक्ट से आपके साथ बात कर रहा हूँ।
0: तो सबसे पहले तो बड़गांव के बारे में आप जानकारी दीजिए। कश्मीर खूबसूरत वादियों की जगह है, जन्नत का सा नजारा है, तो हमारे श्रोताओं को बताइए बड़गांव के बारे में, वो कैसी जगह है, कहाँ पर?
1: सेंट्रल कश्मीर में, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ये सेंट्रल कश्मीर में पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा, कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे बड़गांव में ही मौजूद है। हमारा जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर, वो भी हमारे बड़गांव में भी मौजूद है। और हमारा बड़गांव

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश ममता दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं डिस्ट्रिक्ट चौराहे सोनारी असम से भाईकन मुंडा बात कर रहा हूँ।
0: भाईकन मुंडा?
1: जी मैम।
0: अच्छा, कौन सी जगह?
1: चौराहे डिस्ट्रिक्ट सोनारी असम।
0: जी जी, जरा उस जगह के बारे में बताइए, आप जहाँ से बोल रहे हैं।
1: जी मैम, यहाँ तो मौसम अभी सुहाना है, अभी तो चारों तरफ हरियाली हरियाली है, धान खेती का ये अभी है ना, और चाय बागान है।
0: चाय बागान देखने में बड़ा अच्छा लगता है दूर दूर से, लेकिन उसकी सुना है कि उसकी पत्तियां काटने में बहुत टाइम लगता है, तो आपने ये काम किया है कभी?
1: हाँ, मैं चाय पत्ती का पहले चाय पत्ती को तोड़ के उसको फैक्ट्री मतलब कारखाने में उसको लेके जाता है, इसको प्रोसेस रहता है मैम वो चाय पत्ती बनाने का।
0: जी जी,
1: उसमें मशीन में डाला जाता है।
0: हाँ,
1: फिर इसके बाद उसको सुखाया जाता है, फिर चाय पत्ती बन के रेडी होता है, फिर इसको पैकिंग किया जाता है, ऐसा है।
0: और लोग फिर चाय का स्वाद लेते हैं और
1: जी जी मैम
0: स्वाद लेते हैं, तलब भी होती है। वहाँ का एक नृत्य बहुत मशहूर है, आपको पता है कौन सा?
1: यहाँ तो बिहू। हाँ मैम, बिहू तब यहाँ का मतलब बिहू ही तो असम का जातीय उत्सव बोलते हैं ना हम लोग।
0: जी, तो कौन से उत्सव पे ये नृत्य किया जाता है?
1: मैम देखिए, यहाँ तो बिहू नृत्य, बिहू जो है वो बैसाख महीने में ये होता है मैम, पहला बैसाख से ये महीने भर चलता है।
0: जी जी, तो आप बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है फूल और अंगार, उसमें गाना है चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। और मैम आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही, पहली बार कॉल लगा है मेरा, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था लेकिन आज कॉल लगा है तो बहुत खुशी हो रही।
0: बहुत खुशी हमें भी हो रही है। अब बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं आपको कि आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना चोरी।

0: हेलो
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी नमस्ते
1: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
0: जी बेमेतरा छत्तीसगढ़ की हसीन वादियों से योगेश जांगड़े बोल रहे हैं।
1: जी भाई, छत्तीसगढ़ की हसीन वादियाँ मतलब कैसी हैं वहाँ पर? क्या पहाड़ी इलाका है क्या ये? वो तो
0: जो बस्तर और सरगुजा का क्षेत्र है ये वनांचल क्षेत्र है, तो
1: जी, अच्छा
0: पर्वत पहाड़ तो मतलब काफी है, जंगल है, घना जंगल कह सकते हैं। और जब वहाँ घूमने भी जाना होता है तो वो रास्ते में ही इतना मजा आ जाता है कि क्या कहें।
1: बहुत बढ़िया। तो आप वहां के जंगलों के बारे में जरा कुछ बताइए।
0: काफी घना जंगल है और वहाँ जाते हैं तो जो चित्रकूट और तीरथगढ़ का जो जलप्रपात है वो काफी मनोरम है और रास्ते काफी मतलब जैसे सर्पाकार नहीं होते
1: अच्छा
0: उसी तरह से काफी मतलब मुश्किल भी है ऐसा कह सकते हैं,
1: जी,
0: लेकिन
1: तो
0: आनंद भी बहुत आता है। जी
1: छाया दिखती होगी, और वो जो एक समय ऐसा लगता है कि अब रास्ता बंद हो रहा है, लेकिन पता चला कि
0: जी
1: वहां से
0: जी
1: एक रास्ता खुल जाता है। तो जंगलों में जाते हुए जो इस तरह से दिखाई पड़ते हैं रास्ते, वो बड़े लुभावने और सुहावने लगते हैं।
0: जी
1: एक वहां सतपुड़ा के घने जंगल कितनी दूर है वहां से
0: बहुत दूर
1: जंगल?
0: है हमारे यहाँ से। हाँ
1: अच्छा, सतपुड़ा के घने
0: जी
1: जंगल पर एक भवानी प्रसाद मिश्र की कविता भी है, जो बिल्कुल
0: जी
1: वो दृश्य पैदा करते हैं। वो जैसे सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। याद है आपको ये
0: जी
1: कविता?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से तो कविताएं हमने पढ़ी भी हैं और अभी तो आज ये हिंदी दिवस भी मनाए हैं तो काफी अच्छा लगता है संगीत से जुड़ना, कविताओं से जुड़ना।
1: आगे की पंक्तियां कुछ
0: जी
1: याद है भवानी प्रसाद मिश्र की इस कविता के? झाड़
0: नहीं
1: ऊंचे,
0: वैसे तो याद
1: इस
0: नहीं
1: तरह
0: है।
1: से
0: जी
1: कुछ है, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं, आंख भींचे, घास चुप है, काश
0: जी
1: चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। ऐसे पूरे लगता है कि हवा जंगल में आ रही है, हवा को भी आने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। मतलब पूरा जंगल का दृश्य उपस्थित किया है। तो
0: बिल्कुल
1: मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने बच्चों को इस तरह की कविताएं बतानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, उन कविताओं के बारे में
0: बिल्कुल
1: बताना
0: बिल्कुल
1: चाहिए, जब खास तौर से जब ऐसे जंगल की ओर, जंगल की सैर के लिए जाते हैं तो, है ना? एक बात और कहनी थी कि ये जो जंगल है, जंगल की खूबसूरती है, इसको बचाए
0: हाँ
1: रखने के लिए हम सबको क्या कुछ करना चाहिए?
0: देखिए जंगल तो हमारे राष्ट्रीय संपत्ति है और जो हमारा मानव जीवन ही नहीं मतलब जो हमारा पूरा पृथ्वी जगत कह सकते हैं जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे सारी चीजें आती हैं, तो बचाने के लिए तो यही है कि जंगलों के कटाव को रोके और जो बहुत ज्यादा हम अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जंगलों का जो काटने का काम कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा इनको बचाना जरूरी है।
1: बिल्कुल सही बात है। और नए पौधे रोपने चाहिए, ये नहीं कि बाप
0: बिल्कुल
1: दादा ने
0: बिल्कुल
1: जो लगा दिए हैं, जो पेड़ आम के पेड़ लगा दिए, बस वही आम खा रहे हैं, वही जामुन खा रहे हैं। नए पेड़ भी लगाने चाहिए ताकि जंगल की संपदा हमेशा बनी रहे, हरी भरी बनी रहे, है ना?
0: बचपन बचपन में हमने लगभग 20 पेड़ लगाए थे तालाब के किनारे किनारे
1: जी
0: और वो पेड़ तो आज बहुत वृहद हो गए हैं लगभग 20 से 25 साल के।
1: जी बहुत बढ़िया। और रोज नहीं तो किसी खास मौके पर एक एक पेड़ रोपते रहें तो कितने सारे हो जाएंगे। और क्या काम काज है आपका?
0: हमारा प्रमुख रूप से खेती बाड़ी का काम है।
1: अच्छा, तो कौन सी फसल उपजती है वहां पर?
0: अभी तो धान बहुत आयत है और छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा भी कहा गया है।
1: बिल्कुल। और वहाँ के चावल बड़े खुशबूदार होते हैं, बड़े सॉफ्ट
0: जी जी
1: और मिठास होती है उनमें। कौन कौन
0: जी
1: से चावल पैदा होते हैं?
0: बासमती ये जो मिठास की अब बात की है वो है और हमारे इलाके में सरना और महमाया ये दो किस्में ज्यादा लगाई जाती हैं।
1: जी, तो अब बताइए आपको गाना कौन सा सुनवाया जाए?
0: फिल्म कलाकार से सुनवा देंगे, नीले नीले अंबर पर चांद जो आए।
1: बहुत बढ़िया बातचीत कही आपने। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, मैं हेलो फरमाइश से बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी, हेलो फरमाइश में ही आपका फोन लगा है, बताइए आप
1: जी,
0: कौन बोल
1: बहुत
0: रही।
1: नेहा तिवारी छतरपुर से बोल रही हूँ,
0: जी बताइए
1: और
0: नेहा जी।
1: बहुत मशक्कत के बाद मुझे आपका फोन लगा है
0: जी
1: विविध
0: जी
1: भारती में।
0: जी बहुत शुक्रिया कि आपका फोन लगा और स्वागत है इस प्रोग्राम में। बताइए, आप छतरपुर से बोल रही ना?
1: जी, छतरपुर से बोल रही हूँ।
0: छतरपुर के बारे में बताइए और नेहा जी अपने बारे में बताइए।
1: जी, मैं एक इंजीनियर हूँ पेशे से,
0: जी
1: और छतरपुर हमारा बहुत ही जो एक विरासत है, चंदेला राजाओं के द्वारा बनाई गई खजुराहो, वो करीब मेरे छतरपुर से 50 किलोमीटर दूर है, जो कि विश्व प्रसिद्ध संरक्षित स्मारक है,
0: अच्छा
1: और उसके निर्माण में भी बहुत सारे कारीगर इंजीनियर ने योगदान दिया है।
0: देखिए नेहा जी, आप इंजीनियर हैं पेशे से और ये बात बता रही कि बहुत सारे इंजीनियर्स का योगदान है इस जगह के बारे में। तो जो हम बात कर रहे हैं ना, जिन ध्वनि तरंगों के माध्यम से हम बात कर रहे हैं आपसे, यहाँ भी इंजीनियर का बहुत बड़ा योगदान है। हम तो ये कहेंगे कि अगर इंजीनियर का योगदान नहीं रहे तो ये जहाँ रेडियो जो चैनल है, जैसे रेडियो के प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं, वो फिर कैसे होगा। आप चूंकि पेशे से इंजीनियर हैं तो आप कुछ बोलेंगी, आप कुछ कहेंगी।
1: हम जो देश के महान इंजीनियर और भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन की याद में इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है, और यह भारत रत्न उनके मेहनत को सम्मानित करने के लिए यह दिन तय किया गया था।
0: जी जी जी
1: श्री विश्वेश्वरैया जी ने कावेरी नदी पर कृष्ण सागर बांध और बाढ़ सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए,
0: जी जी
1: और श्री विश्वेश्वरैया जी के बारे में क्या कहें, उनकी इतनी उपलब्धियां इस आधुनिक भारत को है, इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का विश्वकर्मा कहा जाता है।
0: नेहा जी, हमें बताइए कि अब जो जमाना है, बिल्कुल तकनीक का ही जमाना कहा जाता है इसे, और जो नई पीढ़ी आ रही है तकनीक से ही जुड़ी हुई है, तो तकनीक का जो उपयोग भी होता है, सदुपयोग कई बार दुरुपयोग भी होता है, इस पर आप कुछ कहेंगे कुछ?
1: जी, किसी भी चीज के सदुपयोग और दुरुपयोग को ही आप वरदान या अभिशाप कह सकते हैं। तकनीक के क्षेत्र में भी यही है। तकनीक का इस्तेमाल यदि हम अच्छी बातों के लिए, जैसे हम मसलन आजकल की युवा पीढ़ी यूट्यूब रील्स इत्यादि कई चीजों में उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही है, और कई बार उन्हीं चीजों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तो यही है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, विज्ञान अभिशाप और वरदान इसी रूप में है,
0: जी
1: इसी तरह
0: बिल्कुल
1: से तकनीक भी अभिशाप और वरदान इसी
0: जी।
1: रूप में है।
0: अच्छा नेहा जी, ये बताइए कि चूंकि आप इंजीनियर हैं तो आपने, और आकाशवाणी में इंजीनियर हैं, तो क्या नई तकनीक आपने लाई है? मतलब आपको क्या लगता है कि इन दिनों नई तकनीक क्या क्या आई है, कुछ परिवर्तन के बारे में बताइए ना।
1: जी, जब मैंने इस विभाग में अपनी सेवाएं देने शुरू की थी, तब एक बहुत ही सारी चीजें मैकेनिकल हुआ करती थी, रिकॉर्डिंग से लेके एडिटिंग से लेके, और मैकेनिकल हुआ करती थी, जो कि काफी वक्त और गुणवत्ता में भी उतनी उत्कृष्ट होने में काफी समय लेती थी। पर नई तकनीक की वजह से, हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्डिंग होने की वजह से, और अभी तो हमारे पास AI है, अभी हमारे पास प्रसारण में भी हमारे पास अपना वेब ऐप है और हमारे पास न्यूज ऑन एयर ऐप है, तो इन सब गुणवत्ता बढ़ने से तकनीक में करीब करीब मैं बता रही हूँ कि 360 डिग्री जो हुआ है, परिवर्तन हुआ है।
0: जी बहुत बढ़िया बात कही। अब बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए?
1: जी, मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे इंजीनियर से जुड़ा एक गाना बेहद पसंद है, जब आओ लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल,
0: क्या
1: ये
0: बात है
1: फिल्म थ्री इडियट का गाना है और मुझे बेहद पसंद है।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब हम बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुना रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होटो को करके गोल, होटो को करके गोल, सीटी बजा के बोल, लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, ऑटो को करके गोल, ऑटो को करके गोल, सीटी बजा के बोल।

0: जैसे ओ आरती बहुत बढ़िया होता है और दुकानदार और हम लोग समय से पहुंच जाते हैं वहाँ पर और देखने के लिए तो हम लोग जगह करते हैं मैम और बहुत बढ़िया ढंग से होता है और हाथ जोड़ के सभी लोग खड़ा रहते हैं, दुआ मांगते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं।
1: भाई उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है और वहाँ बनारस की सुबह बड़ी खूबसूरत होती है जब गंगा जी में जैसे सूरज बिल्कुल उगता है पानी में से, ऐसा दृश्य होता है। तो वो दृश्य हमने तो नहीं देखा लेकिन लोग बताते हैं, आपने देखा है कभी?
0: जी नहीं, कन्नम ने देखा नहीं है, हम तो जाते हैं देखे हैं, ये बात नहीं है समय से।
1: हाँ
0: तो सच बात है कि हम लोग जब जाते हैं, जैसे विश्वनाथ जी गए और गंगा जी घूमने गए और समय के हिसाब से अगर आरती के समय से हम लोग जाते हैं तो जैसे तर्तीवार हो गया तो तब ठीक है, पहुंच गया, बड़ा बढ़िया से हम लोग देख लेते हैं।
1: सही बात है, बनारस की चाट बड़ी मशहूर है, बनारस का पान बड़ा मशहूर है, अब हम ही सब बता देंगे, आपको कुछ बताएंगे।
0: जी बनारस के तो आपने पान के बारे में ये बात कही है ममता दीदी की, हकीकत सच बात है कि हर व्यक्ति के मुंह में जो उम्र हो जाती है, छोटे बच्चे तो नहीं 18 साल से चालू कर लेते हैं पान खाना, और जो पान भी खाएंगे और काम धंधा में अपना व्यस्त रहेंगे।
1: और वहाँ की गलियाँ पतली पतली सकरी सकरी गलियाँ।
0: हाँ ये तो पतली पतली जो गलियां है, जैसे कि कचौड़ी गली में है
1: हाँ।
0: और जैसे कि बहुत दूर से कचौड़ी गली में हिलते ही मतलब खोआ मंडी में जैसे एक अजीब समाहक आती है कि हमने कचौड़ी गली आ गया।
1: अच्छा कचौड़ी गली का नाम लिए, सुनिए कचौड़ी गली का नाम लिए, कचौड़ी गली का एक लोकगीत में भी आ गया है वो कचौड़ी गली, याद है क्या वो गनवा आपको?
0: जी जी जी
1: याद है तो सुनाइए जरा।
0: जी नहीं हम गा सकते,
1: नहीं गा सकते,
0: नहीं नहीं गाना तो देखिए कचौड़ी पर जो आपने बात कहा है कि हाँ। गाना आ गया है तो हमने सुना नहीं है दीदी, देखिए बात जो हकीकत है
1: हाँ।
0: तो कचौड़ी गली जो हम लोग के बाप दादे से सब बहुत सदियों से ये हाँ। है का नाम, हम लोग की पैदाइश नहीं हुई थी तब भी कचौड़ी गली, हम लोग जब जानकार हुआ तो हम लोग भी जब बनारस जाने लगे तो बाबू जी से पूछने लगे पिताजी से कि ये कचौड़ी गली कौन सा होता है, कर कचौड़ी हुआ मशहूर है, कचौड़ी इतना अच्छा बनता है स्वाद, हो सकता है शायद विश्वनाथ जी के दुआ है कि कनम रे जय संकट मोचन का, भगवान श्री राम जी का जो भी है, सचमुच है कि कचौड़ी ऐसा नहीं बन पाता,
1: नहीं मिल पाता वो स्वाद नहीं मिल पाता, और जो बनाते हैं उनके हाथ की भी प्रशंसा की जानी चाहिए कि जो
0: हाँ।
1: मनोयोग से बनाते होंगे वो एक अलग तरह का स्वाद होता है और फिर वो जगह प्रसिद्ध हो जाती है। तो अलग तरह की बात है कि कचौड़ी के नाम से वो गली मशहूर हो गई है, और छोटे शहरों की ये खासियत है कि पान वाली गली और कचौड़ी गली और जो खस्ता दमालू वाली गली, इस तरह से नाम जो मशहूर हो जाते हैं बड़ा अच्छा लगता है। किसी
0: हाँ।
1: व्यक्ति के नाम से मशहूर होते हैं, किसी महापुरुष के नाम से जगह वो मशहूर हो जाती है, वो जगह उसकी एक अलग तरह की खासियत होती है ना। और कौन कौन से घाट वहाँ के मशहूर हैं?
0: हाँ तो जी जैसे कि दशाश्वमेध घाट से 80 घाट, इतना घाटे सब एक एक घाट जुड़ा हुआ है, सब हम लोग जब जाते हैं ना हम लोग को खुद नहीं पता चलता कि ये घाट तो हमने 10 मीटर चले फिर 10 मीटर चले फिर 20 मीटर, सब घाटे ही घाट घाटे ही घाट, तो इसीलिए 180 घाट उसको माना जाता है।
1: जी जी
0: 180 घाट सब जुड़ा हुआ है
1: बिल्कुल। अच्छा बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
0: जी गाना जरूर सुनना चाहते हैं,

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, ममता जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी बताइए, उज्जैन के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जी बताना चाहेंगे, उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर का मंदिर प्रसिद्ध है
0: जी,
1: जो बिल्कुल चित्रा नदी के किनारे बना हुआ है। और बताना चाहेंगे, यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। सिंहस्थ का मेला भी 2028 में लगाया जाएगा यहाँ पर।
0: अच्छा, और आपका क्या काम काज है?
1: हाँ, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ ममता जी, और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अरे वाह, गायक है, भजन गायक, तो कुछ गा के सुनाइए।
1: हाँ जी, हाँ, उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारे 8 लोगों का ग्रुप है, उसमें हम 4 लोग आने वाले हैं, दो हारमोनियम बजाते हैं, ढोलक और एक तबला बजाते हैं।
0: तो आप हारमोनियम बजा के गा लेते हैं कि सिर्फ गाते हैं? हारमोनियम कोई और संगत करता है?
1: मैं जन गाने का काम करता हूँ।
0: तो ये कुछ गाने के लिए सीखा आपने कि बस ऐसे गाते गाते शुरू हो गए?
1: हाँ, बस कहीं सीखा तो नहीं ममता जी, बस मोबाइल पे या ऐसे जो रिकॉर्ड होते हैं ना, उनको सुन सुन के मतलब सीखे हैं हम 2019 में, जब कोरोना टाइम आया था उस समय पर।
0: अच्छी बात
1: है। जी, हमारे गुरु जी है, वो हमें सिखाते हैं। निर्गुणी भजन की प्रस्तुति भी हम देते हैं ज्यादातर, और भजन कीर्तन का प्रोग्राम भी करते हैं।
0: जी, बड़ा बढ़िया लगता है भाई। अब तो जैसे समय लोगों के पास कम होने लगा है कीर्तन वाला, तो जैसे युग ही खत्म हो रहा है, बहुत कम बचे हैं लोग जो कीर्तन गाते हैं। नहीं तो बाकायदा कीर्तन गाने के लिए बुलाया जाता था लोगों को घरों पर भी।
1: हाँ बिल्कुल, ऐसा तो हमारे इधर भी ममता जी ऐसा ही है, किसी बच्चे का बर्थडे हुआ या कोई धार्मिक फंक्शन होता है ना प्रोग्राम, उनके मतलब यहाँ पर हमें बुलाया जाता है।
0: अच्छा,
1: और हर मंगलवार और ऐसा जो मंगलवार के दिन तो हमारा प्रोग्राम फिक्स होता है हमारे मंदिर पर।
0: तो किन कवियों की रचनाएं आप गाते हैं ज्यादातर जो भजन गाते हैं?
1: ज्यादातर तो, हाँ बिल्कुल बताना चाहेंगे, ज्यादातर तो हम प्रहलाद सिंह टिपानिया जी के भजन गाते हैं, निर्गुणी भजन, और एक और भजन आते हैं यूट्यूब पर राजू दास जी के, उनके भी मतलब हमने भजन काफी गाए हुए हैं।
0: जी, प्रहलाद सिंह टिपानिया तो जब गाते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। तो अब जरा अपने हुनर के बारे में बताइए, आप जरा गा कर सुनाइए हमारे श्रोताओं को।

0: अरे तू जी ममता जी
1: जी बहुत बढ़िया आपने गाया, और हमारे श्रोता भी सुन रहे होंगे भाई, जिनके पास ये कला होती है वो बड़े खुश रहते हैं। जब आपका मन थोड़ा बहुत दुखी हो, उदास हो, तो आप गाकर खुद को हील कर सकते हैं, खुद को आप खुश कर सकते हैं ना। तो
0: जी
1: अब
0: बिल्कुल
1: कौन
0: ममता जी।
1: सा
0: और बताना चाहूंगा मैं,
1: हाँ
0: उससे पहले बताना चाहूंगा मैं मोबाइल ऐप पे विविध भारती के कार्यक्रम सुनता हूँ, और सखी सहेली हेलो फरमाइश पिटारा के तहत आने वाले सभी कार्यक्रम को सुनता हूँ, और बड़े ध्यान से सुनकर मतलब कुछ ऐसे बातें होती है ना, उन्हें नोट भी करता हूँ।
1: जी बहुत बढ़िया, इसी तरह सुनते रहिए। फिलहाल बताइए अभी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: जी फिल्म का नाम है इतिहास, और गाने के बोले जुदा अपने दिलबर से होने लगी है।
1: धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम, आपको सुनवा रहे हैं ये गाना।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए उनसे करबद्ध निवेदन है कि वो हमें कृपया अगली बार 2 महीने बाद फोन करें। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर है 4002466। मुंबई का एसटीडी कोड है 022 और जब भी आप फोन नंबर डायल करें उससे पहले मुंबई का एसटीडी कोड 022 जरूर डायल करें। चलने से पहले आपको ये भी बता दें आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सौरभ घारू, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार।

परवरिश फिल्म से ये कव्वाली आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और सखियों की आवाजें थी। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं रंग तरंग।

फिल्म बाजार की ये गजल आप सुन रहे थे भूपेंद्र की आवाज में। बशर नवाज की लिखी ये गजल थी, खयाम की तर्ज थी। रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

मिस्टर सिंह, मिसेस मेहता, इस एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे ऋचा शर्मा की आवाज़ में। अमिताभ वर्मा के बोल थे, उस्ताद हुसैन खान की ये तर्ज थी।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा, हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं, जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं, उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका MRI करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती का ये कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका MRI करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

वादा रहा इस एल्बम में आप सुन रहे हैं बाबू मान की आवाज़, गीत और संगीत बाबू मान के, और यही है रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश श्रोताओं।

0: ये विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
1: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HJT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। एक रिपोर्ट।
2: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से AI को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि AI की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। दुष्प्रचार करने वाले पाकिस्तानी अकाउंट द्वारा प्रसारित एक फर्जी वीडियो का सरकार ने खंडन किया है। इस वीडियो में कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश को दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी और AI से निर्मित बताया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली तेजी देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 113 अंक बढ़कर 74,427 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर के गाए गाने से। बोल निदा फाजली के हैं, संगीत उषा खन्ना का और फिल्म स्वीकार किया मैंने।

स्वीकार किया मैंने इस फिल्म का गाना. आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में. और आपको याद दिला दें, आज जानी मानी अदाकारा शबाना आज़मी का जन्मदिन है. तो चलिए विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें देते हैं जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ. और आज का ये कार्यक्रम उन्हीं के नाम करते हैं. सुनिए अगला गीत.

0: फकीरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
1: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम

0: प्रेम कथा
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत

एक मूड, एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजू से धुन की लकीरें खींच दो, तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है गाने की, एक लम्हे की जितनी। हां, कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुरियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो कहते हैं, हां वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी,

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा, हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं, जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं, उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका MRI करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज शबाना आजमी जो जानी मानी अदाकारा हैं, उनका जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम बधाई दे रहे हैं और उन्हीं के नाम आज का यादों की महफिल कार्यक्रम। ये लिबास फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर और सुरेश वाटकर की आवाजें, गुलजार के बोल, राहुल देवर्मन का संगीत।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में ये था गुलजार का लिखा गाना, संगीतकार राहुल देवबर्मन और फिल्म थी लिबास। लीजिए अब पेश है अर्थ फिल्म की एक गजल जगजीत सिंह की आवाज में, कैफी आजमी के बोल कुलदीप सिंह की तर्ज है।

0: जम्बो जेट जम्बो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जम्बो जेट सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
0: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू एफओसी ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान के वायुसेना में शामिल होने से सैन्य पायलट प्रशिक्षण में भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से एआई को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि एआई की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर अधिकारियों और लोगों के लिए मितव्ययिता संबंधी उपायों की घोषणा की है। पाकिस्तान ने ईंधन के इस्तेमाल और अधिकारियों की विदेश यात्रा में कटौती की घोषणा की है। साथ ही नए सरकारी वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी गई है और आधिकारिक रात्रि भोजों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों को सीमित कर दिया गया है। बाजारों और शॉपिंग केंद्रों को रात 9 बजे तक और रेस्तरां को रात 11 बजे तक बंद करने को कहा गया है। भारतीय एजेंसियों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में इसके संभावित असर को देखते हुए वे इन कथित वित्तीय माध्यमों पर नजर रखे हुए हैं। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन, आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से यात्रा की दूरी, समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार हो रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 233 अंक बढ़कर 74,547 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23,336 पर था। 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ कल से जापान के आइचे नागोया में हो रहा है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तुर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has reaffirmed India's support for Bhutan's developmental goals and priorities during his official visit to Bhutan from the 16th to the 18th of September. Dr. Jaishankar and his Bhutanese counterpart Leon Po Dien Thungyel reviewed all aspects of bilateral cooperation besides regional and international issues of mutual importance. The two sides appreciated the progress in strengthening the special and multifaceted India-Bhutan partnership. Both ministers also jointly inaugurated and launched several development projects. These included the 65-bedded Galsuen Jetsun Pema Mother and Child Hospital in Mongar, the Jagannathan Bridge on the Samdrup Jongkhar Trashigang Highway, and the transfer of 43 Jersey cows from India to the National Cattle Breeding Center in Bumthang. India also handed over 54 electric vehicles to the Bhutanese government. The ministers also laid the foundation stone for the 500 kilowatt Lunana hydropower project. Northern Army Commander Lieutenant General Pratik Sharma has commended the White Knight Corps for successfully neutralizing two Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur. Lieutenant General Pratik Sharma complimented the White Knight Corps for their swift, precise and professional action in neutralizing two terrorists during Operation Sohan in Majalta area of Udhampur district. Our Jammu correspondent reports that the successful intelligence-based operation conducted in seamless synergy with JNK police and CRPF once again underscores the strength of joint inter-agency coordination in the counter-terrorism grid. Bangladesh Prime Minister Tariq Rahman has extended warm birthday greetings to Prime Minister Narendra Modi on his 76th birthday. In a message posted on X, PM Rahman extended his warmest birthday wishes to Modi by wishing him good health and high spirits as he continues his dedicated service to the people of India. PM Modi responded by thanking Rahman for his message. The message was shared by the High Commission of India in Bangladesh on its official Facebook page. Earlier, the Prime Minister's office also posted a greeting card featuring PM Modi's photograph on its official Facebook page, wishing the Indian Prime Minister on his birthday. Defence Minister Rajnath Singh will visit Kerala and Karnataka today. In a social media post, Mr. Singh said that he will attend the inaugural ceremony of an event organised by Janmabhoomi, a prominent Malayalam daily, in Kochi, Kerala. Later in the evening, the Defence Minister will attend a handing over ceremony in Bengaluru for the light combat aircraft Tejas final operational clearance twin-seater trainer and Hindustan Turbo Trainer 40 basic trainer aircraft to the Indian Air Force and Dhruv NG helicopters to Pawan Hans Limited. The first meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 will be held in New Delhi today. The committee will receive a briefing from representatives of the Ministry of Home Affairs on the provisions of the bill. Both Houses of Parliament on the 12th of August gave their nod to referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to a joint parliamentary committee for further scrutiny. The bill seeks to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010 with the objective of making the use of foreign contributions more transparent and accountable. India has voted for a United Nations General Assembly resolution to allow Palestine President Mahmoud Abbas to address the high-level meeting of the Assembly in New York in the US next week via video. Earlier, the US refused to give him a visa to come to New York. The resolution was passed overwhelmingly yesterday with 152 votes, while only the US, Israel and Paraguay voted against it. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in the afternoon session today. The Sensex rose 233 points to 74,547, while the Nifty added 66 points to 23,336 when reports last came in. Double Olympic medalist Manu Bhakar and defending Asian Games shot put champion Tajinder Pal Singh Toor have been named India's flag bearers for the opening ceremony of the Asian Games. The opening ceremony is scheduled to take place tomorrow. And with that, we end this news bulletin.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रवर्तन निदेशालय ईडी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में झारखंड और ओडिशा में 7 ठिकानों पर कर रही है छापेमारी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आगामी त्योहार को देखते हुए रांची के एचईसी बाईपास रोड पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर लगाई रोक। रांची में आज पेडिकॉन 2026 शुरू, देश भर के

0: 300 से अधिक बाल रोग विशेषज्ञ होंगे शामिल। बच्चों की बीमारियों और आधुनिक उपचार पर विशेषज्ञ करेंगे चर्चा। जमशेदपुर पुलिस ने हत्या की कथित साजिश को किया नाकाम, हथियार के साथ 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और राज्य में आज बारिश और वज्रपात की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से, राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज की विशेष श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि पीएम जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय समूहों के परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
1: भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन पीएम जनमन योजना लॉन्च हुई थी। इसके तहत करीब 1350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ है। 950 से ज्यादा गांवों में हर घर जल पहुंचाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। मोबाइल कनेक्टिविटी से भी जोड़ने के लिए काम हो रहा है। साथ ही अति पिछड़े आदिवासी इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। ये विकास हमारे आदिवासी समाज को प्रगति के समान अवसर देगा।
0: झारखंड में भी पीएम जनमन योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के परिवारों को पक्का आवास, पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कोडरमा जिले में प्रधानमंत्री जनमन योजना से 42 बिरहोर परिवारों के आवास का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें 16 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। बिरहोर परिवारों के लाभुकों ने बताया कि आवास निर्माण के लिए 4 किस्तों में राशि का भुगतान किया जा रहा है। पक्का मकान बनने से उनकी आवास संबंधी परेशानियां दूर हो गई हैं।
2: पैसा आया 30 आया तो हम उतना आधा चढ़ा दिए, आधा चढ़ा करके फिर एक बार आया 50 में फिर उतना मेंटल कर दिए। अब मैं आ रहा है 1,00,000 रुपया, उसी में अब ढलाई करेंगे हम। एगो किचन है, एगो कमरा है। अब खुश है।
3: अभी 30,000 आया, इतना भर में अभी गुजारा चलेगा, रहेंगे टूटल फूटल में। जब आएगा तो बनाएंगे, चेक करेंगे, दीवार सब मकान होगा तब यही रहेंगे घर में, दिक्कत नहीं हो।
0: झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की है। झारखंड, उड़ीसा में 7 ठिकानों पर ईडी की तलाशी और जब्ती कार्रवाई जारी है। ईडी के मुताबिक यह कार्रवाई बैंक की सरायकेला शाखा में कथित बड़े पैमाने पर हुई धोखाधड़ी की जांच के तहत की जा रही है। ईडी के अनुसार कारोबारी संजय कुमार डालमिया पर बैंक के तत्कालीन अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर कथित धोखाधड़ी करने का आरोप है। झारखंड उच्च न्यायालय ने एचईसी क्षेत्र के बाईपास रोड पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने रांची के उपायुक्त और एसएसपी को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया, रोकने का निर्देश दिया है। अदालत ने अतिक्रमणकारियों को 31 दिसंबर तक स्वयं सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने को कहा है। यह निर्देश आगामी त्योहारों को देखते हुए दिया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय में जेएसएससी सीजीएल सहित अन्य नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने सरकार के नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक जारी रखी है। राज्य सरकार ने मामले में शपथ पत्र दाखिल किया, जबकि प्रार्थियों ने प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगा। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के तत्वाधान में आज से 20 सितंबर तक रांची पेडिकॉन 2026 का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में झारखंड सहित विभिन्न राज्यों के 300 से अधिक बाल रोग विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में बच्चों से जुड़ी विभिन्न बीमारियों, आधुनिक उपचार और एंटीबायोटिक्स के सही उपयोग पर विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। साथ ही प्री कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, पेपर पोस्टर प्रेजेंटेशन और क्विज का आयोजन होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के

0: देख सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर में पुलिस ने हत्या की कथित साजिश को नाकाम करते हुए हथियार के साथ 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। सिटी SP ललित मीणा ने बताया कि पुलिस को कुछ लोगों के हथियार लेकर निकलने और हत्या की योजना बनाने की सूचना मिली थी। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
1: सूचना प्राप्त हुई कुछ लोग आर्म्स और एम्युनिशन कैरी कर रहा है और मिल्लत नगर क्षेत्र में बोलघर स्कूल वहां पर बैठकर कुछ लोग अनहोनी करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका गठन किया गया सुबह भोर का समय था 1:30 बजे के आसपास। 5 व्यक्ति उस जगह से पकड़े गए और इस तरीके से जुगसलाई पुलिस द्वारा एक कार्रवाई की गई।
0: भारतीय शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के सत्र में मामूली तेजी देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 113 अंक बढ़कर 74,427 पर और निफ्टी 30 अंक बढ़कर 23,301 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,42,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,40,000 रुपए प्रति किलो है। जमशेदपुर में टेलको स्टेडियम भुवनेश्वरी मंदिर रोड पर N111 के पास स्कूली बच्चों से भरी एक वैन डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वैन बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। हमारे संवाददाता ने बताया कि हादसे में करीब 15 से 17 बच्चे घायल हुए हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि घायल बच्चों को टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
2: हम लोग की असेंबली चल रही थी तब तक हमें खबर मिली, तो जैसे प्रेयर खत्म हुई तो हमने 5-6 टीचर्स को जल्दी भेजा। तब तक पब्लिक ने बहुत हेल्प, तुरंत तुरंत बच्चों को टाटा मोटर्स हॉस्पिटल ले आए। जब तक हम लोग पहुंचे तो देखे 5-6 बच्चे बहुत पैनिक थे, ठीक ठाक थे, उनको हम स्कूल ले आए। उनके पेरेंट्स को कॉल किया, टाटा मोटर्स हॉस्पिटल ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया।
0: और अब मौसम का हाल। राज्य के अधिकांश जिलों में आज बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। रांची में अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। लोगों को वज्रपात के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रवर्तन निदेशालय ED स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में झारखंड और उड़ीसा में 7 ठिकानों पर कर रही है छापेमारी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आगामी त्योहारों को देखते हुए रांची के HEC बाईपास रोड पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर लगाई रोक। रांची में आज से पेडिकॉन 2026 शुरू। देश भर के 300 से अधिक बाल रोग विशेषज्ञ होंगे शामिल। बच्चों की बीमारियों और आधुनिक उपचार पर विशेषज्ञ करेंगे चर्चा। जमशेदपुर पुलिस ने हत्या की कथित साजिश को किया नाकाम। हथियार के साथ 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और राज्य में आज बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना कितना विशिष्ट होता है, कितना असाधारण, वो भी जब खामोश सा अफसाना डायरी में दर्ज करना हो। ये टिप्पणी पहले आ चुकी है और आप तक पहुंचा चुके हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि पानी पे लिखा खामोश अफसाना जो शबाना दी के लिए, उनकी हिरनी सी बड़ी बड़ी आंखों में उजालों के दिए जलते, एक खूबसूरत से ख्वाब आंखों में पले, मुस्कुराए वो खिलखिला के तो आसमां से चांदनी के नूर बरसने लगते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर हम चुप रहकर जवाब देने की और आंखों की भाषा की नजरों की बात, तो जरा सुनिए ये गाना और बूझिए फिल्म का नाम और बताइए किसकी आवाज में है ये गाना।
1: नजरों से कह दो जी।

फिल्म थी 20 साल बाद और वहीदा रहमान विश्वजीत थे कलाकार। हमारे श्रोताओं ने ये जानकारी भी दी है और सही जानकारी दी है। वाह, एक श्रोता ने लिखा है वाह मेरा चयनित गीत, ये तो बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। हेमंत कुमार की आवाज़ थी और शकील बदायूनी के बोल थे, हेमंत कुमार का ही संगीत था। गजब के बोल थे, ज़रूरत क्या तुम्हें तलवार और खंजर की, तो क्या ऐसी आँखें ऐसी निगाहें आपके इर्द गिर्द भी हैं? जब आप किसी की आंखों की तारीफ करते हैं तो यूं जरा बताइएगा ये भी, आज अपने दिल की बात कह डालिए खामोशी से, नजरों की बात भी कह डालिए खामोशी से। एक श्रोता ने लिखा है कि 20 साल बाद जरा नजरों से कह दो जी, एक सदाबहार क्लासिक है इस गीत को, मशहूर गायक हेमंत कुमार ने मखमली आवाज दी है, इसका संगीत भी उन्होंने तैयार किया था, क्या खूब लिखा है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि डायरी लिखना भाव प्रवणता की निशानी है, और बहुत सारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि डायरी तो लिखी लेकिन फिल्म के नाम और गीत के बोल लिखे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। कई बार हमें गाने नहीं याद होते हैं तो उस समय हम डायरी के पन्ने पलट लेते हैं, हालांकि आजकल पन्नों की ओर कौन जाए, मोबाइल के ही नोट पैड में लिख लिया करते हैं, लेकिन नोट पैड भी, मोबाइल का नोट पैड भी एक तरह का डायरी का काम किया करता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे तो कमेंट भी खामोश रह जाते हैं, ज़रा कुछ लिखिए तो सही, खामोश नहीं बिल्कुल बोलते हुए नजर आएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि माँ की आंखें बच्चों को पता चल जाती हैं कि माँ किस मूड में हैं, और टीचर की निगाहें, उसका जिक्र भी तो कीजिए कि टीचर आज किस मूड में हैं। कुछ टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे तो उनकी पोशाक पहनकर हम अंदाज़ा लगाया करते थे कि अरे आज मिस ने ये वाली साड़ी पहनी है, इस दिन तो गुस्सा करती हैं तो आज ज़रूर गुस्सा करेंगी, ऐसा भी होता था। तो कौन सी आपकी टीचर हैं जिनकी निगाहों से आपको डर लगता था लेकिन अदब बहुत करते थे, उनके प्रति प्रेम भाव स्नेह भाव बहुत होता था। ये आपको अपने अनुभव साझा करने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि विभिन्न मुल्कों में हर देश की एक निर्धारित सरहद हुआ करती है और उस सरहद के निगहवान आंखें ही होती हैं। यहां ध्यातव्य है कि देशो ही द्विविधः, और तात्पर्य देश को भूमि के साथ ही साथ आतुर भी कहा जाता है। आतुर तो ये शरीर ही है, प्रणय में फिर ऐसी ही आतुरता देखी जाती है, जिसके निगहबानी का भरोसा जब प्रेमियों के बीच पनपता है तभी प्रणय साकार होता है। जरा आसान भाषा में लिख दीजिए भाई, ताकि हमारे सारे श्रोता समझ लें ये बात। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आंखों की होंगी बातें जिनके बिना जीवन वीराना लगता है, कल्पना कीजिए कि वे कैसे जीते होंगे जिनको ये सुख प्राप्त नहीं होता। आज एक गीत सुनने की तमन्ना है, 1964 की फिल्म है शबनम का गीत, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम। चलिए फिर यही गाना सुन लिया जाए। कई श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है और बहुत सारे श्रोता बहुत सारे गाने लिख रहे हैं, तो आप अपने गानों की डायरी खोलिए और उसमें से गाने चुनिए। आप जो सुझाव देते रहेंगे वही गाना सुनवाएंगे। सुनिए शबनम फिल्म का गाना, बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम। अगली कौन सी फिल्म हो, अगला कौन सा गाना हो, जरा बताइएगा। आंखों की, चुप रहने की, खामोशी की, अफसाना की, बहुत जल्द बताइए ताकि हम गाना प्लेलिस्ट में डाल सकें। अगली फिल्म का नाम

शबनम फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज, जावेद अनवर के बोल, उषा खन्ना का संगीत। हमारे सुधी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दे दिया, गीतकार और संगीतकार का नाम बिल्कुल सही सही। एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो अपने फिजिक्स के टीचर से डरते थे और उनकी आंखें भी बहुत अलग ही, सिर्फ हम ही नहीं सभी बच्चे उनकी आंखों और उनकी उनसे डरते थे। अभी भी याद है वो टीचर हमें। लेकिन एक बात यहां जोड़ना चाहेंगे, टीचर से डर लगे जो स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, लेकिन असल में उनसे आप असली ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके डर से आप बहुत सारी पढ़ाई कर ले जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है तिरछे नैनों वाली बीबी भोली भाली, और एक श्रोता लिख रहे हैं कि एक गाना है चुप हो जा अमीरों के सोने की घड़ी फिल्म बंदी। और अभी जो हम आंखों की बात कर रहे थे तो आंखों वाले गाने भी आप सुझाइए ताकि हम वो गाने हम सुनवा सकें। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले मैं जो भी फिल्म का गीत पसंद होता था लिख लेती थी, इस तरह मेरे पसंद के गीतों की डायरी तैयार हो जाती थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी की क्लिष्टता ही उसकी सुंदरता है। दरअसल हिंदी की क्लिष्टता सुंदरता नहीं कह सकते हैं, बल्कि लालित्य जो होता है वो सुंदरता को निखारता है। शब्दों का लालित्य, भाषा का लालित्य, भाव का लालित्य। एक श्रोता की टिप्पणी है, जब मोबाइल नहीं था तब सखी सहेली में जो गाने बजते थे वो बहुत ही बढ़िया हुआ करते थे, और फिल्म के नाम के साथ गाना हम नोटबुक पे नोट कर लिया करते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि वो मिला तो, पर शायद हकीकत में नहीं बस ख्वाबों में, पर क्या उसे मिलना कहेंगे। कई बार ख्वाबों में मिलना भी तो मिलना होता है, ख्वाब कई बार हकीकत में ढल जाते हैं और कई बार ख्वाब हकीकत से लगते हैं, हकीकत ख्वाब सा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है, अफसाना लिख रही हूँ, चुप चुप खड़े हो, हम इंतजार करेंगे, छोटी सी दुनिया, आंखों आंखों में बात, जरा नजरों से कह दो वो शाम कुछ अजीब थी अब बस। बहुत सारे गाने हैं, इतने गाने अगर पढ़कर सुनाऊंगी तो फिर बाकी टिप्पणियों का क्या होगा। लेकिन आप गाने सुझाते रहिए ताकि हम अपनी प्लेलिस्ट को समृद्ध करते रहें आज के इस प्रोग्राम के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि समय बलवान है, जब मैं स्कूल और कॉलेज में था तब मेरी डायरी में लिखने की अच्छी आदत थी, कवियों की कविताएं, कोटेशंस, अखबारों के अच्छे लेख, देश विदेश के घूमने के स्थलों की जानकारी, जनरल नॉलेज के विशेष, और अपने दिमाग से लिखी खुद की कविताएं। एक चीज आपने नहीं जोड़ा कि अखबार की कतरने भी इकट्ठी की जाती थी, कॉपी या डायरी में अखबार की कतरने बाकायदा कैंची से काटकर उसे चिपका दिया करते थे, और जब डायरी के पन्ने पलटते थे तो वो जानकारी सामने आ जाती थी, और जब कोई खास निबंध या आलेख लिखना होता था तो वो पन्ने पलट लिए जाते थे। आप में से बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने डायरी में वो अखबार की कतरने संभाल कर आज भी रखी हैं, और कितने लोग हैं जिन्होंने उस डायरी को ही फेंक दिया या रद्दी में बेच दिया। उस डायरी में ऐसे लगता था कि जान होती थी, प्राण वायु होती थी डायरी। वो डायरी बड़ी अनमोल होती थी कि बड़े होने पर भी उस डायरी की अहमियत, मतलब जब याद आती है तो ऐसे लगता है कि वो डायरी किसी व्यक्ति की तरह है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी के आने का इंतजार भी कितना प्यारा होता है, दरवाजे पर नजर रहती है, हर आहट पर लगता है शायद वही आए हैं, पता नहीं वो कब आएंगे, मगर मन उनकी राह देखना नहीं छोड़ता। इंतजार में एक मीठी सी खुशी होती है क्योंकि दिल में किसी अपने के आने की उम्मीद जो होती है। अब निगाहों की, आंखों की बातें और गाना भी वही। फिल्म का नाम है घर, आपको पूछना है कौन है हीरो कौन हीरोइन। गाने के बोल तो समझ में आ गए होंगे इस इंटरल्यूड म्यूजिक के साथ ही। बताइए कौन है गीतकार और संगीतकार, हीरो हीरोइन का नाम।

घर फिल्म का गाना था किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी। गीतकार गुलजार, संगीतकार राहुल देवर्मन, बिल्कुल सही जवाब आया है। और हीरो हीरोइन का नाम भी हमने पूछा था, विनोद मेहरा, रेखा। सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि अखबार में कुछ नई जानकारी या कोई प्रिय नायक नायिका हो तो अखबार को काट लिया करते थे, अब तो नहीं करते। मेरी बहन तो अभी भी पकवान की रेसिपी काट कर रख लेती है और फ्रिज पर चिपका देती है ना क्योंकि अक्सर यही होता है कि अखबार की कटिंग काट कर फ्रिज पर चिपका देते हैं, लेकिन कई बार भूल भी जाया जाता है कि अखबार की कटिंग रखी है कुछ नया बनाने के लिए, क्योंकि अब मोबाइल है, मोबाइल में गूगल पर जाकर नई नई रेसिपी मिल ही जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आंख मिली तो दिल धड़का फिल्म नागरानी, फिल्म का अन्य नाम कोबरा गर्ल, संगीत श्रीनाथ त्रिपाठी। इस गाने के लिए अपने शास्त्रीय रागों पर आधारित शैली के बदले चित्रगुप्त की सहायता से उन्होंने अरेबियन शैली का संगीत बनाया था और आशा जी की मौलिक गायन शैली और रागिनी का नृत्य। इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यारी निगाहों से मैं देखता रह गया था कुछ देर जब मैं पहली बार मिला था सगाई से पहले अपनी होने वाली धर्मपत्नी को, जब वो मुस्कुराई तो मैं चुप नहीं रहा और खूब बातें की थी। लेकिन एक चुप की भाषा भी होती है, खामोशी की भाषा भी, जब बोलने से पहले जो भाषा होती है वो होती है आँखों की भाषा, और जब दिल मिलते हैं तब आँखों की भाषा बोलती है बड़ी खूबसूरती के साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने टीचर की बात कही तो मैं बता दूं कि बीएड करते समय हमारी उम्र 20-21 की थी और हमारे क्लास में जो लेक्चरर नई नई आई थी वो भी बीएड पास करके टेम्प्रेरी बेसिस पर आई थी। बला की खूबसूरत थी, उनकी आंखें बिल्कुल चपल हिरणी सी थीं और वो आंखें बोलती आंखें थीं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और रोमांटिक गानों में से एक है। इस गीत को गुलजार साहब ने लिखा है। और एक श्रोता की टिप्पणी है कि मैं टीचर को हमेशा सताया करते थे, एक तो अपने भाई बहनों से हम बेहद प्यार करते थे और बचपन में मैं बहुत शरारती थी तो मैं अपनी आंखों से ऐसे इशारे करती थी कि सारे भाई बहन की परिचय फिल्म वाले सीन चालू हो जाते थे। मुझे नैनो वाली ने मतलब ये गाना सुनना चाहते हैं। चलिए अब फिलहाल जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं इसकी भी फरमाइश की है एक तरह से हमारे श्रोताओं ने, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, तो ये गाना हम सुनवा रहे हैं। आपको बूझना है फिल्म का नाम और बहुत जल्द बताइएगा क्या है फिल्म का नाम और आवाजें किसकी हैं, किन आवाजों में गाना है और फिल्म का नाम।

बाबुल फिल्म का गाना था, तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाजें थी। हमने यही सवाल पूछा था, कुछ श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है और कुछ श्रोताओं ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन से ही खाना बनाने का बड़ा शौक था, किताबों में कोई नई रेसिपी आई तो मैं उसको काटकर डायरी में चिपका लेती थी, अगर नहीं काट पाती थी तो कॉपी पर लिखकर इसकी कटिंग करके चिपका लेती, यही मेरे पास आज भी धरोहर की तरह रखी हुई है। जब मैं ससुराल गई तो उसी कॉपी को ले गई, पापा चिढ़ाते थे ये क्या रेसिपी पढ़ पढ़ कर खाना बनाओगी। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे बाजार फिल्म के गीत की पंक्तियां बहुत पसंद है, गली के मोड़ पे सूना सा कोई दरवाजा, तरसती आंखों से रास्ता किसी को देखेगा, और ये आज की इबारत से मैच भी कर रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि वो तो हमने भी चिपकाया था, पर रेखा के चित्र जहां भी कटिंग मिलती थी बस काटा और बायोलॉजी की फाइल में चिपका दिया, और उसे सजाया भी करते थे कलर के पेन से, कोई गोल कटिंग बीच में और चार साइड में, बहुत समय तक फाइल हमारे पास रही। क्या कभी आपने किसी कॉपी में जो छोटी सी नोटबुक हुआ करती थी उसमें एक तरफ फूल पत्ती ले आके चिपकाते थे और एक तरफ उसमें गानों के बोल लिखते थे, और कई बार संगीत की कॉपी में ऐसा बहुत किया जाता था, जब वो आपको परीक्षा में वो कॉपी सबमिट करनी होती थी तो उसकी बड़ी सजावट होती थी। तो आप अपने यादें ताज़ा कीजिए और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, फिल्म है ये रात फिर ना आएगी। आपको बताना है कौन है पर्दे पर गा रहे हैं ये गाना। बात मिलने की है यहाँ पर, और आज की इबारत से कौन सा शब्द है जो इस गाने में आ रहा है, कौन से शब्द आपको बूझना है, हीरो हीरोइन का नाम।

ये रात फिर ना आएगी इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, SH बिहारी के बोल थे। और हमने आपसे पूछा था कौन है हीरोइन और कौन है हीरो, शर्मिला टैगोर और विश्वजीत। हमारे श्रोताओं ने सही जवाब लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि वो शाम बड़ी खूबसूरत थी, जाने पहचाने रास्तों पर चलते हुए अचानक ही वही चेहरा सामने था, बरसों बाद मिले थे, मगर आंखों ने जैसे एक पल में सारी दूरी तय कर ली। उसके हाथ में वही डायरी थी, वही खामोश अफसाना जिसे कभी मेरी नजरों ने चुपके से पढ़ लिया था। उसने कुछ नहीं पूछा, मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में वही पुराना इंतजार था। एक श्रोता ने लिखा है कि वो डायरी थी मेरी, एक मेरी डायरी थी, फिल्मी गीत थे उसमें, और दूसरी डायरी थी जिसमें गजलें लिखती थी, और एकल गायक गायिका को एक रंग के पेन से और युगल स्वरों को दो रंग के पेन से, सामूहिक स्वरों को कई रंगों के पेन से लिखा करते थे। मुझे गीत, खासकर सभी पुराने गीत बहुत पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार हुआ यूं कि हमें किसी की बात पर डांट पड़ी कि तुमने ये सही नहीं किया, और हम गुस्सा होकर बैठ गए, आंखों में आंसू भी आए। बुआ जी ने डांटा, उधर से पापा देख रहे थे और इशारे में कह रहे थे छोड़ो ये सब, बहन के सामने कह रहे थे, पर फिर हम चुप हो गए। मतलब आंखों की भाषा से इन्होंने समझ लिया। अब सवाल जवाब का सिलसिला, बताइए कब आप जरूरत से ज्यादा सवाल करते हैं, कब आप जवाब देने से कतराते हैं।

भाई ये सवाल जवाब का सिलसिला था, बताइए आप कब मतलब उम्र के किस पड़ाव में ज्यादा सवाल किया करते थे? वैसे बच्चे बहुत सवाल करते हैं, लेकिन आप क्या सही तरीके से अपने बच्चों के जवाब देते हैं ये भी बताइएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सवालों के जवाब किस तरह से देते हैं। हालांकि ये सवाल जवाब कुछ अलग तरह का था, एक हीरो हीरोइन के बीच सवाल जवाब का सिलसिला है। राजेंद्र कुमार और बी सरोजा देवी सभी श्रोताओं ने ये लिख डाला है, जबकि मैंने पूछा नहीं था, तो इस बात के लिए आप सभी का शुक्रिया। और ये बात सही लिखी आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी डायरी 1978 से 82 तक लिखी हुई है, जब कॉलेज फर्स्ट ईयर से ग्रेजुएशन तक के सफर में दिल दर्द दिल और आर्थिक दुर्दिन दुर्दशा से भरी पड़ी है। कभी उठाकर स्याही से लिखा था पढ़ता हूं तो स्वयं पर हंसता हूं। उम्र के एक पड़ाव पर आकर लगता है कि यह क्या नादानी थी, लेकिन वो बहुत अच्छा समय होता है जब आप अपनी अपने भावनाओं को कागज पर लिख डालते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बिछड़ना फिर मिलना जिंदगी का दस्तूर है, इन शब्दों में से गीत आया फिर मिलोगे कभी। एक श्रोता ने लिखा है कि आंखों की बात चली है तो बता दूं कि किसी की आंखों में पल भर के लिए जो दर्द छलका था उस दर्द को आज भी याद करता हूं। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये रात फिर ना आएगी के बारे में जानकारी दी है। और सभी श्रोताओं ने लिखा है कि ससुराल फिल्म का गाना था। अब चलिए आगे बढ़ें और आपको पूछना है कौन है इसमें हीरोइन और कौन है हीरो। फिल्म है बहू बेगम, और आपने कब किसका इंतजार किया और वो आपके इंतजार के बाद भी नहीं आया या नहीं आई।

रना कार्रवाई की तारीफ की। आकाशवाणी जम्मू के हमारे नामा निगार ने बताया कि यह ऑपरेशन खुफिया जानकारी की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के करीबी तालमेल से चलाया गया था, जिससे इंसदाद दहशतगर्दी के सिलसिले में एजेंसियों के दरमियान मुश्तरका तालमेल की मजबूती का इजहार होता है।

0: बहु बेगम फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में साहिल लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था। और अब प्रोग्राम के आखिर में पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना, बुझिए आप कौन है इस फिल्म में कलाकार।
1: शम्मा जलती है जले,
2: हाय हाय

पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। फिल्म में देव आनंद और नूतन होते हैं। इससे पहले जो गाना हमने सुनवाया था, हमने पूछा था कौन है कलाकार, मीना कुमारी और प्रदीप कुमार थे। अब आज का सुरीला सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: Karnataka, Trinamool Congress, and West Bengal Trinamool Congress. Chief of Army Staff General Dhiraj Seth visited Russian Land Forces headquarters as part of his three-day official visit to Russia. The interaction focused on deepening military cooperation and expanding training engagements. They also focused on strengthening capability development between the two armies. On his arrival, General Dhiraj Seth received a ceremonial Guard of Honor. Later, he paid homage at the tomb of the unknown soldier in Moscow. According to the Ministry of Defense, the chief will be visiting the National Defense Control Center in Moscow and interact with senior officials of the Russian Ministry of Defense, including Vasily Sergeyevich Osmakov, Deputy Minister of Defense. The global ratings agency Moody's today raised India's real GDP growth forecast to 7% from its earlier projection of 6% for the current financial year. The agency said the upward revision reflects the resilience of the Indian economy amid the global shock caused by the conflict in West Asia. The agency expects India to continue growing faster than all other G20 economies. Moody said India's real GDP growth rose to 8.2% year-on-year in the first half of 2026, compared with 7.3% in 2025. Microsoft CEO Satya Nadella has said artificial intelligence must reach India's farmers, small businesses and rural communities and not just big techs. Speaking to over 40 Indian-American tech leaders at the Ideas for India Forum in Seattle, Nadella urged the industry to focus on broad public access, national data sovereignty and human oversight. Indian tech ball debutant Quincy Joachim D'Souza stormed into the semi-finals of the Aichi Nagoya Asian Games in Japan after securing two wins in the women's singles event this morning. Quincy produced a strong comeback in her Group A Match 2 encounter against Japan's Yuina Sakamoto to seal a hard-fought 2-1 victory. The Indian debutant followed it up with a convincing 2-0 win over Cambodia's Kom Yin Dy in Group A Match 2. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Bihar, eastern Rajasthan, Gujarat, Lakshadweep, Odisha, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. According to IMD, heavy rainfall accompanied by thunderstorms, lightning and gusty winds is expected to prevail over the Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during next 2 days. And now before we end the bulletin, headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's support for Bhutan's developmental goals and priorities. Both countries review bilateral cooperation and issues of mutual importance. Hindustan Aeronautics Limited to hand over LCA Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force in the presence of Defence Minister Rajnath Singh in Bengaluru today. Railways approve 493 crore rupee project for construction of new rail line between Mukundwan and Gadchandur in Maharashtra. Security forces killed two Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur district of Jammu and Kashmir. Global ratings agency Moody's raises India's real GDP growth to 7% for current financial year. And with that we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को एलसीए तेजस और एचटीटी-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों को मार गिराया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की और जापान में एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विंसी जोआकिम डिसूजा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। एक रिपोर्ट।
2: श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मोंगार में 65 बिस्तरों वाला ग्यात्सुएन जेत्सुन पेमा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, समद्रुप जोंखार त्राशीगांग राजमार्ग पर जगन्नाथ पुल और भूटान के बुमथांग स्थित राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र को भारत से 45 जर्सी गायों को दिया जाना शामिल है। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। बैठक में दोनों पक्षों ने मार्च 2024 में हुए ऊर्जा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग में हाल की प्रगति का उल्लेख भी किया। भूटान की पनबिजली परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया गया और कहा कि इससे दोनों देशों के मौजूदा ऊर्जा सहयोग को और गति मिली है। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्रे ने कहा है कि पिछले कई दशकों में सेमीकंडक्टर चिप एक छिपे हुए औद्योगिक घटक से आगे बढ़कर आर्थिक क्षमता, तकनीकी परिपक्वता और राष्ट्रीय क्षमता का मापदंड बन गई है। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश, चाहे वो कितना ही विकसित क्यों न हो, अकेले चिप का निर्माण नहीं कर सकता। श्री मिश्री ने कहा कि ताइवान दुनिया की करीब 90% सबसे उन्नत चिप का उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए डिजाइन, सॉफ्टवेयर, उपकरण और सामग्री दूसरे देशों से आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान आधुनिक कॉकपिट से लैस है। ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेश निर्मित असैन्य हेलीकॉप्टर है, जो उड़ान सुरक्षा मानकों AS-4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक रिपोर्ट।
3: फुल ऑपरेशन क्लीयरेंस प्राप्त LCA तेजस, HTT-40 विमान चालक प्रशिक्षण विमान और ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर का डिफेंस और नागरिक विमानयान क्षेत्र में शामिल होना एक अहम उपलब्धि है। इससे भारत मिलिट्री और सिविल पायलट्स के प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। देश में ही विमान निर्माण से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे आवश्यक नव उद्योग बढ़ेंगे। विदेशी विमानों के आयात की निर्भरता घटेगी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत भी हो पाएगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉक्टर सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटवन, आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि नई रेल लाइन एक छोटा और बेहतर रेल मार्ग उपलब्ध कराएगी। इससे यात्रा की दूरी, परिवहन समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। ये रेल लाइन मौजूदा वर्धा मानिकगढ़ रेलखंड पर भीड़ कम करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध कराएगी। इससे मालगाड़ियों का संचालन अधिक सुचारू हो सकेगा। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रगति मंच से सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने सक्रिय शासन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के बारे में बताया। राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख में वृद्धि हुई है। ये विशेष साक्षात्कार आज शाम 7:10 पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
5: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
1: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष की सार्वजनिक सेवा को समर्पित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत एक नई और दूरदर्शी पहल सेवा प्रथम नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। महेंद्रगढ़ में पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंच राज्य के छात्रों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, जमीन स्तर के इनोवेटर्स और आम नागरिकों को अपने नवीनतम विचारों, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों तथा समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान ने झारखंड के सुदूर गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। राज्य के 91% से अधिक गांवों को ODF प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, जहां अब ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष काम हो रहा है। स्वच्छता को हर नागरिक के स्वभाव और संस्कार में शामिल करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।
7: साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए।
6: प्रधानमंत्री के इसी विजन की वजह से आज झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लगभग 42 लाख शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही राज्य के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में गोवर्धन योजना के तहत कचरे से कंचन और बायोगैस बनाने की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन का सीधा लाभ पाने वाली रांची की ग्रामीण महिलाओं ने इलाके में आए इस बड़े बदलाव पर अपनी खुशी साझा की।
8: मेरा नाम निरूपमा तिग्गा है। मैं नगड़ी प्रखंड के सपारुम गांव की रहने वाली हूँ। ये जो योजना है स्वच्छ मिशन भारत का, प्रधानमंत्री हमारे स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय गांव में दिए वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं।
9: हमारे सपारुम पंचायत के सपारुम गाँव में 540 के लगभग शौचालय बने हैं। पहले तो इस गाँव में बहुत शौचालय नहीं रहने के कारण बहुत परेशानियां, बहुत बीमारियां होती थी, परंतु अभी जब से शौचालय मिला है सभी को सुविधा होती है।
6: झारखंड में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस साल 5000 से अधिक स्वच्छता लक्षित इकाइयों और कचरा संवेदनशील स्थानों की युद्ध स्तर पर सफाई की गई है। स्वच्छता की इस नई चेतना ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारा है बल्कि स्वच्छता से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए विकसित भारत 2047 की नींव को और मजबूत किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कर्मवीर के साथ मैं महविश रहमान।
1: भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस मामले में चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश को सामान्य प्रक्रिया बताया है। इस आदेश में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के दौरान पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन होने पर उसके चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी जाती है। श्री राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में श्री त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस में अतीत में कई विभाजन हुए हैं और इसका चुनाव चिन्ह भी कई बार बदला गया है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने आज पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू की। पार्टी का नारा है नशा मुकाना सारा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो और अन्य नेताओं ने माधोपुर से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक GDP वृद्धि दर अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये संशोधन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। एजेंसी ने आशा व्यक्त की कि भारत सभी अन्य G20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज रफ्तार से बढ़ना जारी रखेगा। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 176 अंक बढ़कर 74,491 और निफ्टी 40 अंक बढ़कर 23,318 पर कारोबार कर रहा था। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेग बॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसूजा ने जापान की योना साकामोतो को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LCA Tejas और STT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटवन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओं, कार्यक्रम एक कलाकार में आप सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत है। आज बात उस महान अदाकारा की जिनकी आंखों में गहराई और आवाज में एक ऐसा एहसास जो आपके दिल को छू जाता है। इस गीत से आप समझ गए होंगे आज हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री शबाना आज़मी की।

श्रोताओं, आज एक ही कलाकार कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं शबाना आजमी जी की। 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में जन्मी शबाना जी को कला, साहित्य और संवेदनशीलता विरासत में मिली। इनके पिता मशहूर शायर कैफी आजमी थे और माँ रंगमंच की जानी मानी अभिनेत्री शौकत आजमी।

घर के साहित्यिक मॉल और FTII पुणे से मिले अभिनय के प्रशिक्षण ने इन्हें बहुत ज्यादा निखारा। शबाना जी ने 1974 में फिल्म अंकुर से अपने फिल्मी सफर का आगाज किया। पहली फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। अपनी दमदार मौजूदगी इन्होंने फिल्मी दुनिया में बनाई। इसके बाद समानांतर सिनेमा में उनके अभिनय का स्वर्णिम दौर शुरू हुआ। फिल्म स्वामी में उनके सादगी भरे अंदाज को अभी आपने सुना। इसके अलावा गंभीर और आर्ट फिल्मों तक वो सीमित नहीं रहीं। शबाना जी ने व्यावसायिक सिनेमा में भी कदम रखा और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। फिल्म अमर अकबर एंथनी का यह नगमा उनके चुलबुले और रोमानी अंदाज को बयां करता है।

एक खूबसूरत पहलू ये भी रहा है कि वह संवादों से ज्यादा अपनी आंखों से अभिनय करती। उनकी आंखों से जो अभिनय होता वो लोगों के दिल को छू जाता। महेश भट्ट की फिल्म अर्थ में एक टूटे रिश्ते और स्त्री के आत्मसम्मान की कहानी को जगजीत सिंह की आवाज में रचा ये गीत बखूबी

श्रोताओं, फिल्मों के अलावा शबाना आज़मी सामाजिक मुद्दों, महिला अधिकारों और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए हमेशा मुखर रही है। जीवन के इसी संघर्ष और संवेदनशीलता को फिल्म बाजार की ये गजल बड़ी खूबसूरती से छूती है।

श्रोताओं, इन गीतों को सुनकर शबाना जी के अपने के वो रूप हमें देखने और सुनने को मिलते हैं जो हमें बहुत अच्छा महसूस कराते हैं। शबाना जी ने अपने जीवन में हमेशा नए प्रयोग किए, कभी लीक पर चलने से नहीं झिझकी। मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर से इनसे इनका विवाह इनके जीवन का एक खूबसूरत मोड़ साबित हुआ। समय बीत गया लेकिन शबाना आजमी के अभिनय की चमक कभी धुंधली नहीं हुई। 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों और पद्म भूषण से सम्मानित शबाना जी आज भी सिनेमा में उतनी ही सक्रिय हैं। अपने बेमिसाल अभिनय, समाज सेवा और अदम्य जज्बे से भारतीय सिनेमा को समृद्ध करने वाली मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी जी की ये खूबसूरत जीवन यात्रा यूं ही आगे बढ़ती रहे, यही हमारी दुआ है। श्रोताओं, चलते चलते फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का एक गीत आपको सुनवाते हैं जो उनके अभिनय और जिंदगी के दौर को बयां करती है।

0: भी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम मेट मी मेलोडी।
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेट मी मेलोडीज, और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो हमसफर सोनाली।

जी हाँ दोस्तों, कुछ आवाजें कानों तक नहीं आती, सीधे दिल तक पहुंचती हैं। और कुछ बात हो और गीत संगीत की बात हो तो कुछ गजलें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सिर्फ सुनते नहीं, उनके साथ थोड़ा सा जी लेते हैं। कभी किसी शाम की तन्हाई में, कभी किसी अधूरी मोहब्बत की याद में, कभी किसी ऐसी शख्स की याद में जो अब हमारे साथ नहीं है। ऐसे में बस गजल हमारे पास चुपचाप आ बैठती है। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में बनी फिल्मी गजलों की अपनी ही एक दुनिया है। शब्दों में शायरी, दोनों में ठहराव और आवाजों में ऐसा जादू कि गीत खत्म हो जाने के बाद भी उसका एहसास देर तक हमारे साथ बना रहता है। तो आइए लौटते हैं उन्हीं किसी सफर में, उसी किसी दुनिया में जिसका नाम है गजल। और आप सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम की पहली गजल, फिल्म मिर्जा गालिब, और स्वर है तलत महमूद के साथ सुरैया की।

जी हाँ, मिर्जा गालिब के साथ हमने शुरुआत की हमारी आज की मैथिली मेलोडी इस कार्यक्रम की, और ये बहुत बेहद ही पुरखलूस और बहुत ज्यादा आज भी दिल को झंझोरने वाली, झिझकोरने वाली और इन्हीं ऐसे तारों को छेड़ने वाली गजल है ये वाली मिर्जा गालिब की, जिसे हमने सुना तलत महमूद और सरैया की आवाज में। अब हम जो दूसरी गजल आपके लिए लेकर आए हैं उसको सुनाने के पहले आपको बस इतना कहूंगी कि कभी किसी अपने का साथ इतना प्यारा होता है कि वक्त का पता ही नहीं चलता, और जब वो साथ बस दो घड़ी का हो तो वही दो घड़ी पूरी उम्र की याद बन जाती है। लता मंगेशकर की आवाज में और उनके साथ है मोहम्मद रफी। आइए सुनते हैं इस बेहद खूबसूरत गजल को।

फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया की गजल आप ये सुन रहे थे, जिसे स्वरबद्ध किया था मदन मोहन और लिखा था जी हाँ राजेंद्र कृष्ण ने। अगर हम बात करते हैं तो राजेंद्र कृष्ण जी ने बहुत खूबसूरत गजलें फिल्मी दुनिया को दी हैं, और अब मैं उनकी एक और गजल आपके साथ में यहाँ पर साझा कर रही हूँ, जिसे हमने लिया है फिल्म जहाँ आरा से, और है ये जो आवाज़ वो एक ऐसे इंसान की जिसकी आवाज़ एक लरसता हुआ सा कोई खजाना लगती है, लरसता हुआ सा कोई ऐसा अफसाना लगती है, जिसको जैसे पानी के ऊपर आप हवा में, जब पानी पर हवा चलती है तो जिस तरह से हलचल होती है, वैसे ही ये आवाज़ ऐसी है, जब आप सुनते हैं तो लगता है एक अलग सी हलचल इस आवाज़ में है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तलत महमूद की। तो आइए सुनते हैं फिल्म जहाँ आरा की ये गजल, जिसे एक बार फिर लिखा है राजेंद्र कृष्ण जी।

जहाँ आरा में आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में इस गजल को। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुनहरे दौर की उन गजलों की जो आज भी हमारे दिल को कहीं ना कहीं धड़काती हैं और अभी भी एक हसीन सा कोई तार छेड़ जाती हैं जो देर तक हमारे जहन में, हमारे दिल में जंकृत होता रहता है। बहुत बार ये होता है दोस्तों कि प्यार में, मोहब्बत में बहुत सी शिकायतें होती हैं, बहुत सी शिकवे होते हैं, लेकिन हम चाह कर भी उन बातों को बोलते नहीं हैं। बहुत बार सिर्फ अपनी बातों से या अपनी अंदाज से या अपनी बोलों के ज़रिए या अपनी आँखों के ज़रिए उन चीज़ों को हम बोलना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमारे दिल में महफूज रहती हैं। बहुत सी शिकायतें हमें ज़िंदगी भर ऐसी तड़प दी जाती हैं जो हम बोल करके बयान नहीं कर सकते। तो अब मैटिनी मेलोडी में आपके लिए फिर एक ऐसी गजल लेकर आई हूँ जो है फिल्म अदालत की, और इसे एक बार फिर लिखा है राजेंद्र कृष्ण जी ने और संगीत दिया है, जी हाँ, मदन मोहन ने। तो आइए सुनते हैं ये गजल।

शायद इसीलिए पुरानी फिल्मी गजलें आज भी पुरानी नहीं लगती, वे हर बार सुनने पर हमारे किसी नए एहसास से मिल जाती हैं। तो बस जाते जाते इतना कि कुछ नगमे उम्र के साथ

दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दोपहर के 3:30 हो चुके हैं।

जोर गजल में मारा। समीन मीर तकी मीर एक

0: तेईस सालों से रिश्ता है मेरा विविध भारती से।
1: ये तो सबसे अच्छी बात है आपकी। तो बताइए आपके बच्चे छोटे हैं कि बड़े?
0: मेरी 5 साल की बेटी है और 2 साल का बेटा है।
1: मतलब बहुत परेशान करते होंगे, शैतानी करते रहते होंगे पूरे दिन घर में, है ना?
0: हाँ, अब क्या करें, लेडीज का काम ही यही है अब बच्चों को अच्छी शिक्षा देना,
1: बिल्कुल अच्छे से उनको पढ़ाना, घर लिखाना, घर संभालना। सच में और बहुत बड़ा काम है ये। मतलब आप जॉब करने जाते हैं, लोगों को लगता है वही चीज
0: काम नजर भी नहीं आता, ये काम नजर भी नहीं आता है,
1: जबकि सबसे जरूरी काम है।
0: हाँ, अगर कि मर्द लोग जैसे काम करते हैं उनका काम दिख जाता है, वो ऑफिस संभालते हैं, फिर पता चलता है नहीं ऑफिस है, घर में जितने काम करेंगे ये नजर ही नहीं आते हैं।
1: ऊपर से कहा जाता है आप करते ही क्या है घर पे, जबकि अगर घर पे काम करना पड़ जाए ना तो बस पता चल जाएगा कितना काम होता है दिन भर का पूरा, और साथ ही बच्चों को भी संभालना ना, बहुत बहुत बड़ा काम। हाँ। है आप विविध भारती आप सुनती हैं तो विविध भारती का कम से कम इतना तो एक योगदान रहता होगा ना कि आपका जो काम है पूरे दिन भर का थोड़ा आसान कर देता होगा, है ना?
0: बहुत ज्यादा कई सालों से वही मैं बोल रही हूँ, कई सालों से रिश्ता है मेरा विविध भारती से, तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, और जब शादी से पहले मायके में सुना करती थी।
1: अच्छा।
0: एक भी प्रोग्राम मिस नहीं होता मुझसे, सखी सहेली है हर कोई एपिसोड सुनती थी मैं,
1: रिटायर
0: में जो भी एपिसोड आते हैं हर कोई प्रोग्राम सुनती थी मैं विविध भारती का।
1: ये तो
0: अभी भी सुनती हूँ, लेकिन अब उतना टाइम ज्यादातर नहीं आता है क्योंकि बच्चे कभी इधर उधर।
1: हाँ नहीं, बच्चे छोटे हैं, आपने बताया 5 साल के 2 साल के, तो बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको तो पूरा वक्त देना पड़ता होगा आपको अपना
0: बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि विविध भारती आज हेलो सैली में मेरा पहली बार फोन लगा है, इतने सालों से, मेरे ख्याल से 20 सालों से,
1: अरे
0: 20 साल के बाद फोन लगा है इस प्रोग्राम में।
1: बात करें
0: एक बार विविध भारती में मैंने बात की है वो है हेलो फरमाइश।
1: अच्छा, यानी कि आपकी चलो बात तो हुई, मुझे ये सुनकर ही बहुत अच्छा लगा कम से कम, क्योंकि 20 साल इतना लंबा अरसा आपने लगाया है फोन। नहीं सच में, सच में आप बहुत ही अच्छी हमारी श्रोता हैं, बहुत ही अच्छी, क्योंकि इतना आपने इंतजार किया कॉल लगाने के लिए, तो बहुत बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया। और अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: जी गाने के बोल है इस मोड़ से जाते हैं,
1: है, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। हाँ। बहुत सुंदर गीत है ना, इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हुए काश कभी हम आपसे मिल लें, हमारी मुलाकात हो जाए, है ना?
0: हाँ आप आइए ना कश्मीर,
1: बिल्कुल बिल्कुल कभी
0: आप आइए और सिर्फ देख रहे कितनी सुंदर जगह है, हर मौसम यहाँ बढ़िया से बढ़िया है।
1: नहीं कश्मीर का तो खैर नाम ही काफी है। तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का एक प्यारा सा ये गीत जो मुझे भी बहुत पसंद है।

0: आज की हेलो सहेली कार्यक्रम का समय पलक झपकते ही तेजी से मुट्ठी में बंद रेत की तरह निकल गया, लेकिन हमारे मन की हथेली पर अपने सुनहरे चमकते निशान छोड़ गया है। और आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने हमें बांध लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी, चलते चलते आपको जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपके कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो है 4002 4662 और मुंबई का STD कोड है 022। नंबर एक बार आप फिर से नोट कर लीजिए, 4002 4662 और मुंबई का STD कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867 0288 और मुंबई का STD कोड है 022, यानी 2867 0288 और मुंबई का STD कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई, वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी कामयाब जरूर होते हैं, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था, उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल का, और साथ ही संपादन में सहयोगी बनी नम्रता टिकोले। विद भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: बहुत सारे कृषि जो क्षेत्र थे वहां पे कृषि का सही उपयोग या सही दिशा में उनका बढ़ोतरी नहीं हो पा रहा था, इसलिए सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया जिसका मूल मंत्र था कि अब कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी सरकारी महकमे हैं उनके अधिकारी किसानों तक पहुंचेंगे, किसानों के गाँव तक जाएंगे, न कि किसान जो है सो इन चीजों का लाभ लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाए। तो ये जो सरकार जो है वो जनता के दरवाजे तक पहुंचे, इसके पहल के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में ये एक अनूठा प्रयास था।
2: इस अनूठे प्रयास ने न सिर्फ गुजरात की कायाकल्प की बल्कि उससे प्रेरणा लेकर भारत के कई गांवों जो सूखे से परेशानी में थे उनका भी परिवर्तन हुआ। 25 वर्षों का ये सफर हमें सिखाता है कि जब शासन में विजन हो, नीतियों में स्पष्टता हो और क्रियान्वयन में पारदर्शिता हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी प्रगति के अवसर में बदला जा सकता है। गुजरात का ये विकास मॉडल आज केवल एक राज्य का अनुभव नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विकसित भारत के सपने की सबसे मजबूत रीढ़ है। केतन जी आपका, डॉक्टर स्थाना आपका इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
3: धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारी नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. अस्थाना। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप का नंबर है 9289094044।
5: अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा।

मेरा ही तो घर है ना। किसके सहारे छोड़ गया था मैं अपना घर? उमी? उसने पुकारना चाहा, मगर गहरे निश्वास के साथ आंख नाक और मुंह में धूल भर आई। हाँ, बाथरूम भी यही है। हाँ, यही तो है बाथरूम। यानी घर तो मेरा ही है, बाकी सब भी धीरे धीरे साफ हो जाएगा। झाड़ू भी मिल गई, रसोई के दरवाजे के पीछे रखी थी, ठीक वहीं जहां हमेशा रहती थी। और इस एक छोटी सी बात ने उसे यकीन दिला दिया कि ये घर सचमुच उसका है। रात होते होते उसने घर को काफी हद तक ठीक कर लिया। यानी ओमी कभी आया ही नहीं मेरे जाने के बाद। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उसी के भरोसे सब कुछ छोड़ के गया था। वो जरूर यही कहीं छुपा बैठा होगा, नालायक, यही कहीं बैठा होगा। उसने ओमी को खोजना चाहा, पलंग के नीचे, पर्दे के पीछे, खिड़की के बाहर, बगीचे में, हर तरफ देख लिया। ओमी कहीं नहीं था। अंधेरा गहराने लगा था। उसने बत्ती जलानी चाही तो तारे कटी हुई मिली। शायद चूहा कुतर गया था। किसी तरह तारे जोड़ी और स्विच दबाया तो बल्ब चनक कर टूट गया। खाने का मन भी नहीं था उसका, और खाने को कुछ था भी नहीं। वो वैसे ही अंधेरे में लेट गया, एकटक पंखे को देखता रहा, भीतर ही भीतर ओमी को पुकारता रहा।

आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। वो हड़बड़ाकर उठा। ओह, इतनी देर हो गई। मैं तो इतनी देर तक सोता ही नहीं था। अब तक सब जग गए होंगे। उसने दाएं बाएं देखा, फिर उसे याद आया कि वो अपने घर में है, जेल की सलाखों से बाहर। अब तो वो खुद अपनी मर्जी का मालिक है।

जब तक चाहूंगा सोऊंगा, जहां चाहे जाऊंगा, अब मैं आजाद हूं। अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। सुन रहे हो ना ओमी, ओमी ओमी सुन रहे हो ना, अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। हाँ। उसे फिर ओमी की याद हो आई। याद आई कि ओमी को तो पता ही नहीं होगा कि उसे समय से पहले ही रिहा कर दिया गया है और वो अपने घर उसका इंतजार कर रहा है। उसका मन मायूस हो गया। आखिर ओमी के बिना ये आजादी किस काम की? आएगा ओमी, आज जरूर आएगा। आएगा तो उसे क्या खिलाऊंगा? अच्छा चलो, बाजार से कुछ सब्जी भाजी खरीद लेता हूं। हाँ, आज अपनी पसंद की सब्जियां लाऊंगा। रोज रोज घी आग कद्दू खा खा कर रुकता चुका हूं। और हाँ, नया बल्ब भी तो लाना है। ओमी जरूर कहीं दूर से इस घर पर नजर रखता होगा, जलती बत्ती देखकर दौड़ा चलाएगा। हाँ, उसे क्या मालूम कि मैं समय से पहले ही रिहा हो गया हूँ। जरूरत का सामान खरीद कर वो घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने बड़े चाव से सब्जी बनाई। गोल गोल नरम नरम रोटियां सेकते हुए भीतर ही भीतर ओमी को पुकारता रहा। सोचा पास पड़ोस में पूछूं कि पिछली बार ओमी कब आया था यहाँ, मगर हिम्मत नहीं हुई। बाहर की दुनिया पराई हो गई थी। एक सजायाफ्ता से कौन बात करना चाहेगा? लोग उसे नहीं पहचानते अब, ये भी अच्छा ही है। उसने राहत की सांस ली और खा पी कर सो गया। बत्ती जली ही छोड़ दी। उसे भरोसा था कि बत्ती जलती देखकर ओमी दौड़ता हुआ यहाँ आएगा। नींद में भी वो हर खटके से जागता रहा, पर सुबह हो गई और ओमी नहीं आया। अगला दिन भी बीत गया, फिर एक और रात ओमी नहीं आया। वो हर रात बत्ती जली छोड़ देता इस उम्मीद में कि उजाला देख कोई तो दौड़ा चला आएगा। लगातार चलता पंखा उसे बरसों पीछे लिए जा रहा था, बहुत पीछे, कॉलेज की गहमा गहमी के बीच। कॉलेज का वार्षिक उत्सव, सजी धजी भीड़ मंच की तरफ देख रही थी। भीड़ उत्साह से ओमी ओमी ओमी ओमी पुकार रही थी। भीड़ में से आवाजें आ रही थी, ओमी ओमी। वो देख रहा है ओमी मंच पर खड़ा है। मंच पर इतनी तेज रोशनी है कि आंखें चुंधिया जाएं। तेज रोशनी में वो ओमी को ठीक से देख भी नहीं पा रहा, मगर वो उसकी आवाज सुन रहा है। वो कह रहा है, दोस्तों आज की ये महफिल किसी खास के नाम, देखता हूँ मेरी आवाज उस तक पहुँचती है या नहीं। महफिल में तालियों की आवाज, सीटियां और उत्साह भर उठता है। ओमी एक तान भरता है और हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सबकी धड़कनें रुक गई हैं। वे सांस रोके ओमी का गीत सुन रहे हैं, उसे अपलक देख रहे हैं और ओमी है कि आंखें बंद कर गा रहा है। मखमली आवाज का जादू हर किसी पर छाने लगा है।

सुनिए, क्या क्या खूब गाते हैं आप। मैं तो खो ही गई थी, मगर ये गीत नहीं था, मेरे दिल की आवाज थी। और आपने क्या कहा कि आप तो खो गई। अरे, आप खो जाएंगी तो मैं खुद को कहाँ ढूंढूंगा। अच्छा, अपना नाम तो बता दीजिए ताकि ढूंढने में कुछ आसानी हो। जी, मेरा नाम गीत है। अरे वाह, आप गीत और मैं गायक, क्या खूब है। अब समझा ये निगाहें क्यों बार बार आपकी तरफ खींची चली जा रही थी। चलिए, आप तो बातें बनाते हैं। उसे खूब याद है ओमी और गीत की वो पहली मुलाकात, जिस दिन ओमी के दिल की आवाज गीत तक पहुंची गई। फिर तो वो हर जलसे में ओमी की आवाज के साथ खींची चली आती। यही हाल ओमी का भी था। जब वो गाने लगता तो सबसे पहले उसी की ओर देखता, फिर आंखें बंद कर तसल्ली से गीत में डूब जाता। गीत उसकी जिंदगी थी, इसीलिए तो उसने अपने बैंड का नाम ओम बैंड से ओम गीत बैंड कर दिया था। ओमी के दोस्त उसे गीत का नाम लेकर खूब चिढ़ाते थे, मगर वो चिढ़ता नहीं था। उल्टे एक मीठी मुस्कान उसके होठों पर आ जाती, जैसे कोई अपना सबसे प्यारा राज सुन ले और भीतर ही भीतर खुश हो जाए। उसके दोस्त जानबूझकर उससे बात करते हुए गीत का नाम बीच में डालते हुए दोहरी जुबान में उससे पूछते, ओमी भाई, आज के जलसे में तुम्हारे गीत ने गजब ढा दिया भाई। ओमी हंसकर कहता, यार, गीत ने मंच पर ही नहीं, मेरे जीवन के रंगमंच पर भी गजब ढा दिया है। हाँ। वो कुछ देर हंसता, मगर फिर संजीदा होकर कहता, हाँ, पहले मैं गाता था, अब जिंदगी गाती है। मेरे गीतों के शब्द अब लगे बोलने, जब से सुर पर उन्हें वो सजाने लगी है। दूर कहीं कोयलिया गाने लगी है। उसे संजीदा देखकर दोस्त भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते। अम्मा यार, ये तो सच है, जब से गीत तेरी जिंदगी में आई है, तेरी आवाज में बला का जादू आ गया है, एक नशा सा छा गया है तेरी गायकी में। ओमी एक पल के लिए रुका, जैसे वो इस बात की गहराई को तौल रहा हो, फिर धीरे से अपने भीतर ही बोल पड़ा, हाँ, मेरे हर बोल में वो होती है, हर सुर में उसका चेहरा होता है। जब उसकी झुकी हुई नजरों को देखता हूँ तो मेरी तान खुद ब खुद ऊपर उठती चली जाती है। सब जानते थे कि ओमी और गीत एक दूसरे के लिए बने हैं, ये जोड़ी कुछ अलग ही है। ये बात अब किसी से छुपी नहीं थी। जलसों में लोग ओमी का गाना सुनने आते थे, मगर कनखियों से गीत को भी देखते रहते। ये अनूठी संगत थी, सुर और शब्द की, आवाज और अर्थ की।

उधर गीत की सहेलियां भी कहां कम थी, हर वक्त उसे ओमी के नाम की मीठी झिड़कियां देती रहती। ए, गाता तो ओमी है मगर भाव तेरे चेहरे पर होते हैं, ऐसा कैसे होता है गीत? देख अभी भी तेरा चेहरा कैसा सिंदूरी हो गया है। हायो रब्बा, ओमी को देखते ही ये तो किसी दूसरी दुनिया में जा पहुंचती है। उनकी बातें सुन गीत एक पल के लिए चुप हो जाती, फिर धीरे धीरे जैसे मन में सांस लेते सपने को शब्द देती भी बोल पड़ती। हाँ सच में, ओमी जब तान भरता है ना तो जाने मुझे क्या लगता है, जैसे जैसे मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं, किसी और ही दुनिया में हूँ। हाँ जैसे मैं बादलों की पालकी पर जा बैठी हूँ और ओमी की तान के साथ साथ ऊपर उठती जा रही हूँ, ऊपर और ऊपर, पता नहीं कितने ऊपर। सहेलियां एक दूसरे को देखने लगती और गीत बोलती रहती। और पता है जब भीड़ तालियां बजाती है, जब सारा हॉल उसकी आवाज की जादूगरी से गूंज उठता है, तो मेरे भीतर कुछ उमड़ने लगता है, जैसे जैसे कोई नदी बरसों से शांत बह रही थी और अचानक अचानक उसमें बाढ़ आ गई हो, और मैं उस बाढ़ को रोकना नहीं चाहती, बस उसमें बहती रहना चाहती हूँ। गीत तू तो बनी ही उसके लिए है रे, यूं ही तो तेरा नाम गीत नहीं पड़ा। गीत अपनी सहेलियों के चूहल में खो जाती और कहती, माँ ने संगीत सीखा था और प्यार से मुझे गीत कहकर बुलाया करती, गीत तो बस मेरे पुकारने का नाम था। मगर जब ओमी मुझे गीत कहकर बुलाता है ना, तब सच मानो मेरे कानों में संगीत गूंजने लगता है, मुझे अपना नाम सच्चा लगने लगता है, जैसे जैसे सालों से ये नाम उसी की आवाज का इंतजार कर रहा था, वो मुझे पुकारता है और मेरे भीतर एक चमकार सी बज उठती है, जैसे किसी ने सितार की मिजराब को छू दिया हो। हाँ ऐसा लगता है मुझे। और सच में ऐसा ही था, ओमी की आवाज में गीत थी और गीत की सांसों में ओमी का सुर, दोनों एक दूसरे में इस तरह घुले थे कि अलग करना मुश्किल था, जैसे नदी में समाया आसमानी रंग। दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, बिना कहे बिना जताए। ये प्रेम शोर नहीं करता था, ये बजता था धीरे धीरे मीठे मीठे।

0: उसे अच्छी तरह ध्यान है कि कॉलेज में इस जोड़ी की कितनी चर्चा थी। वो अचानक सोच में पड़ जाता है और खुद से ही पूछ बैठता है, पता नहीं दोनों कैसे होंगे, कहाँ होंगे। जरूर दोनों ने शादी कर ली होगी, शायद इसीलिए यहाँ आना कम हो गया होगा। क्या पता कहीं कहीं शहर छोड़कर तो नहीं चले गए होंगे। काश काश कोई ओमी को ये बता दे कि मैं समय से पहले ही घर आ गया हूं। काश काश कोई ओमी को बता दे। वो करवट बदलता है, उसके भीतर बेचैनी है। कैसे वो अपनी बात ओमी तक पहुंचाए पता नहीं। ओमी कहाँ है क्या पता, कब से उससे बात नहीं हुई। हर रात यही सब सोचते हुए करवटों में बीतती है उसकी। अधनींदी सी हालत में वो बीते वक्त की परछाइयों को पकड़ने के लिए दौड़ता रहता है। बीती जिंदगी की यादें उसके भीतर शोर मचाती रहती हैं, जबकि सामने अजब सा सन्नाटा रहता है। वो उस कागज की तरह था जिस पर कुछ लिखकर मिटा दिया गया हो। न उस कागज पर लिखे को पढ़ा जा सकता था, न वो ऐसा कोरा था कि जिस पर कुछ नया लिखा जा सकता हो। बिखरी बिखरी यादें उसके जहन में आती जाती रहती। वो फिर जा पहुंचा उसी जलसे में जहां ओमी गाना गाकर उठा था और भीड़ उसे घेरे खड़ी थी। ओमी हर किसी से बात कर रहा था, मगर उसकी आंखें उधर कोने में खड़ी गीत की तरफ देखे जा रही थीं। गीत भी उसे ही देख रही थी और खुश हो रही थी कि कितने फैन थे उसके इर्द गिर्द। वो दूर से ही उनकी गिनती कर ही रही थी ताकि ओमी को बता सके। इतनी देर में उधर से मोहित बैंड के कलाकार गुजरने लगे। उसके पास से निकलते हुए उसके सिंगर मोहित ने ऊंची आवाज में कहा,
1: हीरे और पत्थर में फर्क करना सीख ले गीत, हीरा भी मैं हूँ और हीरो भी मैं ही।
0: मोहित की बात पर उसके साथियों का ठहाका गूंज उठा। गीत ने भले ही उसकी बात पर लापरवाही से कंधे उचका दिए, मगर ओमी इसे हल्के में नहीं ले पाया। वो भीड़ का दायरा तोड़कर मोहित की तरफ बढ़ा। उसके फैन भी उसके पीछे पीछे हो लिए और देखते ही देखते बैट बल्ले निकल गए। अचानक ओमी ने देखा कि गीत को मोहित के साथियों ने घेर लिया था। ओमी सब कुछ भूलकर उस चक्रव्यूह में दाखिल हो गया, जिससे बाहर निकलने के लिए गीत भरपूर कोशिश कर रही थी। ओमी के पीछे उसके दोस्त भी आ गए। भीड़ में पता नहीं कौन किस पर हावी था। चीख पुकार के बीच गोली चलने की आवाज आई और कुछ ही देर में सायरन बजाती एम्बुलेंस आ पहुंची थी और गीत को जिसमें चढ़ाया जा रहा था। उसके कपड़े खून में भीगे हुए थे, कातर नजरें ओमी को ढूंढ रही थीं। गीत बेआवाज उसे पुकार रही थी। ओमी महसूस कर रहा था कि अगर गीत को कुछ भी हो गया तो उसकी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ओमी मन ही मन गीत को पुकार रहा था। हाँ, मन ही मन गीत को पुकार रहा था।

एम्बुलेंस के बजते हूटर की तेज आवाज से उसकी नींद उचट गई और वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। अच्छा हुआ कि उसकी नींद टूट गई। वो उस घटना को सपने में भी दोहराना नहीं चाहता था। उसने अपनी आंखें कस कर मूंद ली। वो जीवन के उस प्रसंग को पूरी तरह नकार देना चाहता था जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। मगर आंखें बंद कर लेने पर वो दृश्य और साफ साफ दिखने लगता था। आखिर वो उठकर बैठ ही गया, सोने की जबरन कोशिश छोड़ दी और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर अंधेरा था, मगर उसकी चेतना में वो दृश्य जस का तस कैद था, जिसे वो कभी दोहराना नहीं चाहता था। उसका ऐसा अतीत जिससे उसका वर्तमान इस तरह चिपका था कि उसे कभी अलग ही नहीं किया जा सकता था। यही वो पल था जहां से बदल गई थी उसकी दुनिया, वो दुनिया जो ओमी की दिलकश आवाज से गुलजार थी, वो दुनिया जिसमें गीत की मासूमियत भरे प्रेम का दरिया छलकता रहता था। मगर उस दिन सब कुछ बदल गया था। भुलाने की लाख कोशिशों के बावजूद उस दिन की घटना उसके जहन में कब्जा करके बैठी थी। उसे अच्छी तरह ध्यान है कि मोहित के एक साथी ने पिस्तौल निकाल ली और ओमी की ओर घुमा दी। बचने की कोशिश में ओमी बगल घूम गया और गोली उसके पीछे खड़ी गीत के सिर पर लग गई। ओमी ये देखकर अपना आपा खो बैठा और उस व्यक्ति पर झपट पड़ा। हाथापाई में पिस्तौल छिटक कर दूर जा गिरी। ओमी तूफान की तरह पिस्तौल की ओर लपका। वह सोच की सुरंग में गहरे जा घुसा था कि अचानक बरामदे में जलती बत्ती गुल हो गई। शायद बिजली चली गई थी, लेकिन पंखा चल रहा था। हो सकता है बल्ब फ्यूज हो गया हो, पूरी रात जलता रहा था। अब इस अंधेरे में ओमी उसे कैसे ढूंढ पाएगा, वो बेहद परेशान हो गया ये सोचकर। ऐसा ही परेशान वो उस दिन भी था जब ओमी पिस्तौल उठाने लपका था। वो जानता था कि इस वक्त अगर ये पिस्तौल ओमी के हाथ लग गई तो वो सारी दुनिया तहस नहस कर डालेगा, तांडव मचा देगा। उसने बिना एक पल गंवाए ओमी से पहले खुद वो पिस्तौल अपने हाथ में उठा ली और ओमी को गीत का ध्यान रखने का इशारा किया, जिसे खून से लथपथ हाल में एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा था। जीवन में आया ये कल बीत कर भी नहीं बीता और उसे आज भी उसी तरह उद्वेलित कर रहा था। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखों को जोर से भींच लिया, जैसे वो आगे की घटना को रोक देना चाहता हो, ताकि वक्त वहीं थम जाता और वो न होता जो हुआ।

वो दोबारा बिस्तर पर लेट जाता है, सोने की कोशिश करने लगता है, मगर उसे लगता है कि तब से आज तक वो नींद में ही तो जीता रहा और इसी अवस्था में इतने बरस गुजार दिए। वो करवट बदलता है और साथ ही दृश्य बदलता है। वो देखता है उसके हाथ में पिस्तौल है और पुलिस उसे पकड़ कर लिए जा रही है। ओमी उसे रोकना चाहता है, उसके पीछे पीछे आ रहा है, मगर वो ओमी को रोक देता है। तो गीत का ध्यान रख, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, वो ओमी को देखकर बुदबुदाता है। ओमी दौड़कर एम्बुलेंस में जा बैठता है। उसके बाद कोर्ट कचहरी, पेशी पर पेशी, हर पेशी पर ओमी आता है, पीछे की बेंच पर बैठता है, खामोश बेबस। वो ओमी को देखकर भी नहीं देखता कि कहीं पुलिस को ओमी पर किसी तरह का शक न हो जाए। उसे कुछ याद नहीं कौन उसकी वकालत करता है और वकालत में क्या क्या कहता है। वो बस खामोशी से सबकी दलीलें सुनता रहता है, न किसी का समर्थन करता है न विरोध। उसकी चुप्पी को हामी समझा जाता है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। ओमी दूर से उसे जेल जाता देखता रहता है। ओमी की आंखों से झांकते सवालों और उसमें तैरती अंतहीन बेबसी को अनदेखा कर वो जेल की सलाखों में कैद हो जाता है।

हर रात यही कहानी कई कई तरह से उसकी आंखों में घूमती रहती है। हर रात वो बीच नींद में जाग जाता और फिर यादों का अंतहीन सिलसिला चल पड़ता। प्याज के छिलकों की तरह एक के बाद एक घटनाओं का सिलसिला उसे मथता रहता। वो याद करने लगता कि जेल जाते वक्त ओमी ने धीरे से उससे कहा था कि वो उसका इंतजार करेगा, उसके पीछे इस घर का ख्याल रखेगा। वह ये सब कतई दोहराना नहीं चाहता, वह उस सारी कहानी को भूल जाना चाहता है। उस रात भी इसी कोशिश में लगा था कि दिमाग में छपी इस दर्दनाक इबारत को किस तरह मिटाया जाए कि अचानक कहीं दूर से उसके कानों में कोई आवाज सुनाई पड़ती है, एक मीठी तान, ऊंची तान, सुरीला आलाप। अरे अरे, ये आवाज तो ओमी की है। हाँ, ओमी की ही तो है, 100% ओमी की। ये ओमी ही है, ओमी ही है। वो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठता है। मैं जानता था ओमी जरूर आएगा। मैं जानता था वो जरूर आएगा, इसीलिए तो बत्ती जला रखी थी मैंने। हाँ, मगर कहाँ, बल्ब तो फ्यूज हो गया था, पर ओमी तक मेरी आवाज पहुंच गई होगी। देखा, अंधेरे की टोह लगाता ओमी आ ही गया मेरे पास। मैं आया, बस तुरंत आया। आता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ ओमी, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, कहता हुआ वो दरवाजे की तरफ लपका। चिटकनी खोलने की जल्दबाजी में हाथ दीवार से टकरा कर छिल गया, मगर उसे सुध कहाँ थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, आगे पीछे झांका, वहां कोई दिखाई नहीं दिया। ओमी ओमी ओमी, जरूर तू मेरे साथ मस्ती कर रहा है, यही कहीं छुपा होगा तू बाहर, है ना? कहाँ है ओमी? ओमी कहाँ है तू? कहाँ छिपा है ओमी? देख, सामने आ जा, कहाँ है? वो दरवाजे से बाहर निकल आया, सीढ़ियों की तरफ लपका, मगर वहां भी कोई नहीं था। कुछ पल को वो मायूस तो हुआ, मगर फिर अपनी बेवकूफी पर खुद ही हंस पड़ा। अरे, आवाज तो उधर खिड़की की तरफ से आ रही थी, और मैं यहाँ दरवाजा खोलने आ गया। वो खुद पर ही हंसने लगा और दौड़कर घर के पिछवाड़े में बगीचे की तरफ दौड़ा। उसके भीतर का कौतूहल देखते ही बनता है। जिस पल का वो इतनी रातों तक जगकर इंतजार करता रहा, आखिर वो सफल हुआ। हड़बड़ी के बावजूद वो दबे पांव घर के पिछवाड़े की तरफ बढ़ता है। बेतरतीब लताओं का जाल उसे किसी जासूसी फिल्म का आभास दे रहा है। अंधेरे उजाले के बीच हर पेड़ के पीछे कोई साया छुपा सा लग रहा है। वो धीमी आवाज में पुकारता है ओमी को, ओमी, ओमी, ओमी, मगर कोई उत्तर नहीं मिलता। ओमी, वो फिर पुकारता है, इस बार थोड़ी तेज आवाज में पुकारता है, ओमी, सुन रहे हो ओमी? पीछे की तरफ हल्की सी सरसराहट मालूम पड़ती है। वो हौले से घूमकर देखता है, मगर ओमी कहीं नहीं दिखता। अलबत्ता एक बिल्ली जरूर झाड़ियों से निकलकर दूसरी तरफ भाग जाती है। वो मायूस हो जाता है, उसकी आंखें सुनसान सड़क को टटोलती हैं, मगर दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। अंधेरा और घना होने लगता है, इतना घना कि जिसमें परछाई भी दिखाई न पड़े। आखिर वो ओमी को कहां से देख पाता? वो लौटकर कमरे में आ जाता है, गहरी सांस भरकर वापस बिस्तर पर लेट जाता है।

अगली सुबह जब वो सोकर उठा तो धूप की तेज किरण आंखों पर पड़ रही थी। वो बहुत व्याकुल था। अब वह और सब्र नहीं कर सकता था। उसे ओमी को खोजना ही था और ये काम वो अकेला नहीं कर सकता था। उसे किसी के मदद की जरूरत थी। वो उठकर पड़ोस में जाने को बढ़ा। हाँ, हो न हो वे जरूर बता पाएंगे कि मेरे पीछे यहाँ कोई कभी आया था। और वो कहाँ रहता है, मैं जाकर पड़ोस में पूछ लेता हूँ। मगर दरवाजे पर दस्तक देने से पहले वो ठिठक गया। किसी ने चेताया कि अब वो क्या करने जा रहा है। वो सोचने लगा कि पड़ोसी को अपने बारे में क्या बताएगा, और ये भी कि वो इतने सालों तक कहाँ रहा और आज अचानक कैसे आ गया, और ओमी को क्यों ढूंढ रहा है। वो एक सजा याफ्ता मुजरिम था। ये जानकर पास पड़ोस के लोग पता नहीं उसके साथ कैसे पेश आए। हो सकता है उससे डरने लगे, अपने बच्चों को भी उससे बचकर रहने की हिदायत दे डाले। ऐसे में उसकी सहायता कौन करता। वो बहुत असहाय हो गया। फिर उसे ध्यान आया कि जेलर साहब उसे बहुत मानते थे। वो जेलर साहब की ओर जाने को लपका। सोचने लगा, क्यों ना जेलर साहब से ही मदद ले लूं। हाँ, उनकी वजह से ही तो मेरी सजा 2 साल कम हो गई और मैं जेल से छूटकर बाहर आ गया। हाँ, वो बहुत समझदार हैं, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। हाँ, जेलर साहब के पास जाता हूँ, वहीं जाता हूँ मैं। वो सोचता है कि जेलर साहब कितने भले और मददगार हैं, वे जरूर उसकी सहायता करेंगे। वह याद करता है कि बिना उसके कुछ कहे ही जेलर साहब ने उसकी फाइल मंगाई थी और उसकी रिहाई के लिए अपील की थी। जेलर साहब भी एक ऐसे इंसान थे जिनसे वो अपने मन की बात कह सकता था और वही कोई रास्ता भी सुझा सकते थे। बस फिर क्या था, वो जल्दी से तैयार होकर जेल की तरफ निकल पड़ा।

0: प्यार।
1: क्या हुआ, घर में मन नहीं लगा? हम्म, जेलर साहब ने पूछा। वो सीधा मुद्दे पर आते हुए बेचैनी भरे स्वर में कहता है, साहब ओमी से मिलवा दो ना। ठीक है, मिलवा देंगे, पर ये ओमी है कौन? साहब जी, वो मेरे साथ ही रहता था, बहुत अच्छा गाता था, अरसा हो गया उसकी आवाज सुने। वो मेरे साथ यहां भी आया था, मुझे जेल तक छोड़ने। उसने वादा किया था साहब कि वो मेरे घर का ध्यान रखेगा। जेलर साहब सोच में पड़ गए, कौन हो सकता है, क्योंकि उनके रहते तो कभी कोई इससे मिलने आया नहीं। खैर, जब ये जेलर साहब इस जेल में आए, तब अन्य मुजरिमों की तरह इसकी भी पिछली कहानी से जेलर साहब पूरी तरह नावाकिफ थे। हाँ, उसके स्वभाव की नरमी से जरूर जेलर साहब को प्रभावित किया था, और उन्होंने उसकी समय पूर्व रिहाई की अपील भी लगाई थी। अपील करते समय ही उन्होंने उसकी फाइल पढ़ी थी और जाना था कि ये हत्या के जुर्म की सजा भुगत रहा है। उन्हें तब भी विश्वास न हुआ था कि ये व्यक्ति किसी का कत्ल कर सकता है। खैर, जेलर साहब ने अर्दली से कहकर उसकी फाइल मंगवाई थी कि शायद उसमें ओमी का कुछ पता ठिकाना मिल सके। अर्दली फाइल लाकर देता है, जेलर साहब उसकी फाइल पलटते हैं कि अचानक खट से एक तस्वीर फाइल से नीचे गिरती है। जेलर साहब से पहले वो लपक कर तस्वीर उठा लेता है और चहक उठता है, साहब जी, साहब जी, साहब जी, यही तो है ओमी। हाँ साहब जी, यही है ओमी, इसी को तो ढूंढ रहा हूँ मैं। इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसके बिना मेरी रिहाई का कोई मतलब नहीं है साहब जी। इसे ढूंढ दो, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो। जेलर साहब सोचने लगे कि फोटो फाइल से निकली है तो इसमें इसके बारे में भी जरूर कुछ लिखा होगा। वो फाइल के पन्ने पलटने लगते हैं। शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी को दफा 302 के जुर्म में आज तारीख। जैसे जैसे वे फाइल पढ़ते जा रहे थे, सारा रहस्य खुलता जा रहा था। जब उसे यहाँ लाया गया था और रिकॉर्ड के लिए जो तस्वीर खींची गई थी, ये वही तस्वीर थी, यानी ओमी और कोई नहीं, वो खुद था। जेलर साहब समझ चुके थे कि लंबे समय तक जेल की जिंदगी जीते जीते वो खुद को ही पहचान नहीं पा रहा था। अपने कॉलेज के ओम गीत बैंड का वो सिंगर, हिंदुस्तानी और पाश्चात्य संगीत का फ्यूजन, जिसके गाने की खासियत थी, जिसकी ऊंची तान और दिलकश आवाज के कितने ही दीवाने थे, वो और कोई नहीं, खुद ही था ओमी। जेलर साहब फाइल पलट रहे थे और महसूस कर रहे थे कि एक समय में वो कितना हसमुख और हाजिर जवाब हुआ करता था, कितना खूबसूरत, कितना सुदर्शन युवक, मूछों की हल्की धारी, चमकदार आंखों वाला वो युवक, संगीत की धुन पर थिरकता, आवाज के आरोह अवरोह पर झूमता ओमी एक जिंदा दिल इंसान था। उसकी दिलकश आवाज को सुनने भीड़ उमड़ आती थी। ओमी, ओमी, ओमी, ओमी, हर तरफ उसके नाम की धूम मची रहती थी। ऐसे ही म्यूजिकल कॉन्सर्ट में अपने प्रतिद्वंदी मोहित बैंड के लोगों के साथ उसका झगड़ा हुआ। हाथापाई, जानलेवा हमला, जिसमें इसकी गोली से गीत नाम की युवती की मौत हो गई। उसके बाद से ही ये अवसाद में चला गया, ऐसे गहरे अवसाद में कि इसने खुद को बचाने की कोशिश करना तो दूर, बल्कि खुद की उसकी हत्या का इल्जाम अपने सिर ले लिया। उसके वकील ने कहना चाहा कि ये गोली बचाव के दौरान गीत को लगी थी, मगर शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी अब जीना ही नहीं चाहता था। जेलर साहब समझ रहे थे कि ओमी यानी वह खुद ही खुद को माफ नहीं कर पा रहा था, और उसने अपने लिए ये उम्र कैद की सजा चुनी थी। जिस तरह सभी कैदी अपनी रिहाई के दिन गिनते रहते थे, इसने कभी भी

जेल से बाहर निकलने का सपना नहीं देखा, यही उसकी दुनिया थी। मगर जब जेलर साहब की मदद से उसकी रिहाई हुई तब वो खुद ही दो हिस्सों में बट गया। वो खुद की पिछली जिंदगी को थर्ड पर्सन होकर देखता रहा और खुद को ही खोजता रहा। उसके नाम के अक्षर कैदी नंबर में तब्दील हो गए। उसके भीतर का ओमी जेल की ऊंची दीवारों में दफन हो गया। उसकी आवाज की खनक लोहे की सलाखों में गुम हो गई। जेलर साहब पूछना चाहते थे कि ये कैसी और किसकी रिहाई थी, क्योंकि जिसे कैद किया गया था वो रिहा होने से बिल्कुल अलग था। कैद तो किया था एक मशहूर सिंगर को, जिसकी लरजती आवाज के कितने ही दीवाने थे, मगर जिसे रिहा किया गया, ऊंची तान लेना तो दूर, वो तो किसी से दबी जुबान में भी बात नहीं करता था। चुपचाप हुक्म की तामील करना उसे बाकी कैदियों से अलग करती थी। हंसने गाने से तो उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। उसकी कोई पसंद नापसंद नहीं थी। अब वो किसी से नहीं लड़ता था, किसी से नहीं उलझता था, कोई बहस नहीं। उसमें न तो किसी तरह की जिद थी न उत्तेजना। कैद के इन लंबे वर्षों में वो एक निहायत तटस्थ व्यक्ति हो चला था, एकदम शांत और निर्विकार। अनजाने में या आत्मरक्षा में वो खुद अपनी प्रेमिका की हत्या का कारण बन गया था। इस आत्मग्लानी में घुल घुल कर उसकी जिद पानी हो गई थी और वो अपने भीतर ही भीतर खामोश होता चला गया। रिहाई के बाद अचानक वो गुमशुदा शख्स ओमी उसके भीतर उभरने लगा था और ये व्यक्ति दो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियतों में बट गया था। जेलर साहब महसूस कर रहे थे कि वो मल्टीपल डिसऑर्डर का शिकार हो चुका था, यानी एक ही व्यक्ति में अलग अलग किरदारों को जीना। वो खुद को खुद से अलग करके देख रहा था, कुछ हद तक आउट ऑफ बॉडी जैसा एहसास। ये तुम्हारी ही तस्वीर है, समझे? तुम ही ओमी हो, शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी। सुना तुमने? समझे कुछ? तुम ही हो वो ओमी। जेलर साहब ने उसकी तस्वीर उसे वापस लौटाते हुए कहा। वह कुछ समझ नहीं पाया कि जेलर साहब क्या कह रहे हैं। वो अबूद सा जेलर साहब का मुंह ताकने लगा। फिर वो अकबकाकर कुर्सी से उठा और उस फोटो को लेकर कमरे में लगे आईने के सामने खड़ा हो गया। कभी वो उस तस्वीर वाले कमसिन चेहरे को देखता तो कभी आईने में बड़ी अपनी अधपकी दाढ़ी को। जेलर साहब कह रहे थे कि ये दोनों चेहरे उसी के हैं, मगर उन दोनों में कुछ भी तो एक जैसा नहीं था। वे दोनों शख्स एक कैसे हो सकते थे? वह पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था, खुद से पूरी तरह अनजान। वो सोच रहा था, क्या कह रहे हैं जेलर साहब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं ही ओमी हूं। क्या कह रहे हैं जेलर साहब? पता नहीं, पता नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी

गीतों भरी कहानी। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अलका सिन्हा की लिखी कहानी रिहाई। वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी का था, संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: ये है विविध भारती
1: आकाशवाणी का रांची केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। चतरा में स्थित आम्रपाली ओपन कोल माइंस की सुरक्षा कल से आधिकारिक तौर पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल संभाल लेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खदान से बड़े पैमाने पर हो रहे कोयले के अवैध कारोबार और चोरी पर पूरी तरह लगाम कसने के लिए ये बड़ा निर्णय लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के रांची स्थित आवास पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में राजीव गांधी प्रतिभा प्रतियोगिता परीक्षा की घोषणा की गई। यह विशेष प्रतियोगिता परीक्षा नवंबर 2026 में रांची विश्वविद्यालय और अन्य कॉलेजों में आयोजित की जाएगी, जिसमें केवल राज्य के आदिवासी छात्र छात्राएं शामिल हो सकेंगे। पाकुड़ की एक अदालत ने शादी का झांसा देकर महिला का यौन शोषण करने और आपत्तिजनक वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने के मामले में मुख्य अभियुक्त जौहर आलम को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। खूंटी जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां साइको थाना क्षेत्र में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चोरी की गाड़ियां बेचने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के मास्टरमाइंड गुरुदयाल मुंडा समेत 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। देवघर में आज उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निवारण किया गया तथा लंबित मामलों पर कड़े निर्देश जारी किए गए। और आत्महत्या रोकथाम सप्ताह के अवसर पर बोकारो के चास स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राओं के बीच एक विशेष मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार। ये आकाश

जाने तुम्हारी आंखों में ऐसा क्या है कि एक बार नजर मिली तो दिल वहीं ठहर गया। अब यौवन भी जैसे तुम्हारे ख्यालों में ही बीत रहा है और दिल हर पल तुम्हें ही पुकार रहा है। तुम्हारी चाहत में ऐसी तड़प है कि चैन भी रूठ गया है। आलम ये है कि अब इस भीड़ में कोई नजर ही नहीं आता, क्योंकि तुमसे नैन जो लड़ गए हैं तो दिल भी बस तुम्हारा हो गया है।

0: अगर जीवन एक बगिया है तो हम
1: चैनल से बोल रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 5:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं लोक संगीत का लोकप्रिय कार्यक्रम लोकरंजनी।
0: खूबसूरती इस बात में नहीं कि हर मौसम अच्छा हो, बल्कि इसमें है कि हम हर मौसम में खिलना सीखें।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। हर बात पर रूठना, मनाना और छोटी छोटी बातों पर तकरार करना छोड़ दीजिए। जिंदगी वैसे ही बहुत छोटी है, इसे शिकवों में क्यों गुजारना। कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराइए, दिल की बातें कीजिए, कभी प्यार से हाल पूछिए, कभी बिना किसी वजह के अपने होने का एहसास दीजिए। क्यों ना आज तकरार छोड़कर बस प्यार की बातें की जाए।

प्रेम में दो लोग अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा लेते हैं, जहां खुशियां और सुकून एक दूसरे से मिलते हैं। इस दुनिया में ना कोई दौलत बड़ी होती है, ना कोई महल, बस साथ और अपनापन ही काफी होता है। हर पल खास लगता है जब उसमें अपने हम सफर का साथ होता है। इसलिए प्रेम की इस खूबसूरत रियासत में प्रेमी खुद को राजा और अपनी प्रेमिका को रानी समझता है।

रात की खामोशी में एक लड़की चांद से पूछती है, आज फिर मेरी आंखों से नींद क्यों रूठ गई? क्या तुमने उसे कहीं छुपा लिया है? चांद भी जैसे उसकी बेचैनी समझकर मुस्कुरा देता है। शायद नींद किसी ने चुराई नहीं, बस किसी की याद ने उसकी पलकों पर डेरा डाल लिया है। और अब चांद से यही सवाल है, बताओ हमारी नींद किसने चुराई?

आज के चाय गीत में बस इतना ही। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 मेगाहर्ट्ज़।

प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर में यानी शाम 5:35 पर आप सुनेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। शाम 6:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 6:02 पर ग्रामीणों एवं कृषकों को संबोधित कार्यक्रम होगा खेती बारी। चर्चा होगी समन्वित मछली पालन पर धान और चर्चा में सुनिएगा धान फसल में कीट एवं रोग प्रबंधन। भेंट वार्ता आप सुनेंगे प्राकृतिक खेती पर। भेंट वार्ताकार हैं सुषमा श्रीवास्तव। ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम होगा ग्रामीण सभा शाम 6:30 पर। चर्चा होगी गौशाला की साफ सफाई आवश्यक, आज का विचार में बकरी पालन से फायदे। भेंट वार्ता आप सुनेंगे जाड़े की अगेती दलहनी फसलें एवं उसकी खेती पर। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर विनोद कुमार पांडे, कृषि विशेषज्ञ गरीब कृषि विज्ञान केंद्र चिया की पलामू से। भेंट करता हैं संतोष कुमार। आज का मौसम और जानेंगे आज के बाजार का भाव इसी कार्यक्रम के अंतर्गत।

शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आजकल प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 7:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग का आनंद आप लेंगे। शाम 7:45 पर रोजगार से जुड़ी बातें होंगी कार्यक्रम उड़ान के तहत। संकलन एवं वाचन मीनाक्षी कर्ण का है। शाम 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से हम प्रस्तुत करेंगे। शाम 8:30 पर कव्वाली का प्रोग्राम होगा महफिल। आज के फनकार हैं नुसरत फतेह अली खां और हमनवा। 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर उर्दू खबरें आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9:30 पर हम पुनः शामिल होंगे विविध भारती की प्रसारण सेवा में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। रात 10 बजे आप सुनेंगे स्पेशल प्रोग्राम कर्टेन रेजर, इसको हम प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 10:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा को हम पेश करेंगे। रात 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारी ये सभा समाप्त होगी हमेशा की तरह रात 11:10 पर। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली तमाम बहनों को रागिनी कुमारी का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम घर आंगन में। बहनों, कार्यक्रम

0: बहनों, इस गाने के बाद आइए सुनते हैं एक चर्चा, घरेलू कामकाज एवं नौकरी की दोहरी जिम्मेदारियां कैसे बिठाएं सामंजस्य, इस विषय पर बात करते हैं। तो बहनों, आज की महिला घर और कार्यस्थल दोनों की जिम्मेदारियां निभा रही हैं। घर की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की ज़रूरतें और नौकरी, इन सभी को साथ निभाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही योजना और परिवार के सहयोग से इन जिम्मेदारियों में अच्छा सामंजस्य बनाया जा सकता है। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि पूरे दिन के कामों का एक छोटी सी योजना बनाया जाए। कौन सा काम कब करना है, इसकी प्राथमिकता तय करें। जो काम तुरंत ज़रूरी नहीं, उन्हें बाद के लिए रखा जा सकता है। घर के काम केवल महिला की जिम्मेदारी नहीं है, पति, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य भी अपनी क्षमता के अनुसार काम बांटें। जैसे बच्चे अपनी किताबें और सामान व्यवस्थित करें, पति खरीदारी या रसोई कुछ काम में सहयोग करें, नौकरी के दौरान अपने कामों पर ध्यान दें और घर पहुंचने पर हर काम को एक साथ करने के बजाय धीरे धीरे पूरा करें। सप्ताहांत में कुछ ज़रूरी काम पहले से कर लेने से सप्ताह के दिनों में समय बचाया जा सकता है।
1: और महिलाओं के लिए अपने आराम और व्यक्तिगत समय को भी महत्व देना जरूरी है। पर्याप्त नींद, पौष्टिक भोजन और थोड़ा सा विश्राम उन्हें पूरे दिन सक्रिय रहने में मदद करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर काम बिल्कुल परफेक्ट करना बहुत ज़रूरी नहीं है। परिवार में सहयोग, समझ

0: हर काम को उसी समय पूरा करने की कोशिश ना करें। कुछ काम पहले से तय किए जा सकते हैं, जैसे अगले दिन के कपड़े, बच्चों की किताबें या भोजन की कुछ तैयारी।
1: दूसरा महत्वपूर्ण कदम है बहनों और परिवार का सहयोग। घर के सभी सदस्यों को उनकी उम्र और क्षमता के अनुसार छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ दें। इससे बच्चों में आत्मनिर्भरता भी आती है और जिम्मेदारी की भावना का विकास भी होता है। कार्यस्थल पर भी समय का सही उपयोग करें, जरूरी कार्यों को पहले पूरा करें और जहां संभव हो काम की स्पष्ट योजना बनाएं। घर और नौकरी के बीच संतुलन बनाने के लिए परिवार के साथ अपनी दिनचर्या और ज़रूरतों पर खुलकर बातचीत करना भी ज़रूरी है। महिलाओं को अपने लिए थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना ज़रूरी है। कुछ देर आराम करना, पसंद का संगीत सुनना, टहलना या परिवार के साथ शांत समय बिताना मानसिक रूप से तरोताज़ा कर सकता है। तो याद रखें कि सामंजस्य का अर्थ यह नहीं है कि महिला हर जिम्मेदारी अकेले और बिना थके निभाए। सामंजस्य का अर्थ है जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा, समय का सदुपयोग और एक दूसरे का सहयोग। याद रखिए, काम बांटिए, समय संवारिए और सहयोग बढ़ाइए, तभी घर और नौकरी दोनों में संतुलन और खुशहाली लाई जा सकती है। तो बहनों, अब इस चर्चा के बाद आइए आपको वार्ता सुनवाते हैं। स्मार्टफोन का बढ़ता प्रचलन एवं पारिवारिक दूरियां, वार्ताकार हैं अन्नपूर्णा कुमारी।
2: तो मेरा स्नेहपूर्ण नमस्कार, जोहार। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर अपने विचार साझा करना चाहती हूँ जो आज लगभग हर घर, परिवार और हर व्यक्ति के जीवन में जुड़ा हुआ है। विषय है स्मार्टफोन का बदलता प्रयोग और परिवार की बढ़ती दूरियाँ। कहा जाता है कि समय के साथ जीवन बदलता है। पहले बैलगाड़ी थी, फिर साइकिल आई, उसके बाद मोटरसाइकिल और कारें आईं। पहले खत लिखे जाते थे, फिर टेलीफोन आया और आज हमारे हाथ में एक छोटा सा मोबाइल स्मार्टफोन जिसमें पूरी दुनिया समा गई है। जैसे कि कहा जाता है कि एक गागर में एक सागर है। यह तकनीक का चमत्कार है। आज हम घर बैठे बैंक का काम कर सकते हैं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई करवा सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं और देश दुनिया के हर खबर को जान सकते हैं। सच कहा जाए तो मोबाइल में जीवन को पहले की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक बना दिया है, लेकिन हर सुविधा के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। जिस साधन का उपयोग हमारी सुविधा के लिए होनी चाहिए थी, कहीं वही साधन हमारे जीवन और हमारे रिश्तों पर हावी तो नहीं हो गया है? यह सवाल आज हम सभी को अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। आज यदि हम किसी घर में जाएं, एक अजीब सा दृश्य देखने को मिलता है। परिवार के सभी सदस्य एक ही कमरे में बैठे हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा। पिता अपने मोबाइल पर समाचार देख रहे हैं, माँ सोशल मीडिया पर किसी की तस्वीर देख रही है, बेटा ऑनलाइन गेम खेल रहा है और बेटी मोबाइल पर वीडियो देख रही है। सब एक दूसरे के पास हैं, लेकिन किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। यह दृश्य आज शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे कस्बों और गांवों में भी आम हो गया है। मुझे अपना बचपन याद आता है। शाम होते ही पूरा परिवार एक साथ बैठता था, दिन भर की बातें होती थी, दादी नानी कहानियां सुनाती थी, पिता घर के छोटे बड़े मामलों पर चर्चा करते थे, माँ पूरे परिवार को एक साथ बैठा कर खाना खिलाती थी, त्योहारों की खुशियाँ भी सामूहिक हुआ करती थी। परिवार का अर्थ केवल एक घरों में रहना नहीं था बल्कि एक दूसरे का सुख दुख में सहभागी बनना था। आज समय बदल गया है, परिवार छोटे हो गए हैं और बातचीत भी छोटी होती जा रही है। कई घरों में ऐसा होता है कि सुबह सब अपने अपने काम में निकल जाते हैं और रात को लौटकर भी मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा दिन बीत जाता है लेकिन परिवार के लोग एक दूसरे से 5 मिनट भी खुलकर बात नहीं कर सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये स्मार्टफोन धीरे धीरे हमारी आदत नहीं बल्कि हमारी आवश्यकता से भी आगे बढ़कर हमारी निर्भरता बनता जा रहा है। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले स्मार्टफोन देखते हैं, रात को सोने से पहले भी आखिरी बार स्मार्टफोन ही देखते हैं। यदि कुछ देर मोबाइल हमारे पास ना रहे तो बेचैनी होने लगती है। यह स्थिति चिंताजनक है। स्मार्टफोन का सबसे अधिक प्रभाव हमारे पारिवारिक संवाद पर पड़ा है। किसी भी परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती है आपसी बातचीत। जब लोग एक दूसरे से बात करते हैं, उनकी भावनाएं साझा करते हैं, एक

दूसरे की समस्याएं सुनते हैं और परिवार और भी मजबूत बनता है। लेकिन जब बातचीत की जगह मोबाइल लेता है तब रिश्तों में धीरे धीरे दूरी आने लगती है। आज बहुत से माता पिता शिकायत करते हैं कि बच्चे उनकी बातें नहीं सुनते। दूसरी ओर बच्चे कहते हैं कि माता पिता के पास उनके लिए समय ही नहीं है। सच तो यह है कि दोनों ही कहीं ना कहीं स्मार्टफोन की दुनिया में उलझ कर रह गए हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, एक 10 साल का बच्चा पूरे दिन माता पिता का इंतज़ार करता है। जब उसके माता पिता घर लौटते हैं तो वह उत्साह से दौड़कर उनके पास आता है। वह स्कूल की बातें बताना चाहता है लेकिन पिता मोबाइल पर किसी ऑफिस के संदेश में व्यस्त हैं और माँ किसी वीडियो या सोशल मीडिया में। बच्चा कुछ देर इंतज़ार करता है फिर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन वह फिर कोशिश करता है कि धीरे धीरे वह उनकी उनसे बातें करें, लेकिन वह धीरे धीरे यह समझ जाता है कि उनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। तब वह अपना साथी मोबाइल को ही बना लेता है और यहीं से दूरी की शुरुआत होती है। बच्चे कभी अचानक ज़िद्दी नहीं बनते, वे कभी अचानक चुप नहीं हो जाते। उनके व्यवहार में आने वाले परिवर्तन के पीछे कहीं ना कहीं परिवार के साथ या संवाद की कमी ही होती है। आज छोटे छोटे बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन दिखाई देता है। कई बार माता पिता अपने व्यस्तता के कारण बच्चों को मोबाइल दे देते हैं ताकि वे रोएं नहीं, मोबाइल देखें, उन्हें परेशान ना करें। शुरुआत में यह आसान उपाय लगता है लेकिन धीरे धीरे यह आदत एक बड़ी समस्या बन जाती है। आज डॉक्टर भी कह रहे हैं कि लंबे समय तक स्मार्टफोन देखने से बच्चों की आंखों में बुरा प्रभाव पड़ता है, उनकी नींद प्रभावित होती है, उनका ध्यान पढ़ाई में कम लगता है, बाहर खेलना कम हो जाता है, कल्पना शक्ति घटने लगती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे वास्तविक दुनिया के बजाय आभासी दुनिया में अधिक समय बिताने लगते हैं। कुछ समय पहले एक समाचार पढ़ने को मिला, एक छोटे बच्चे से उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या आज पार्क चलोगे? बच्चे ने जवाब दिया, नहीं मुझे पार्क नहीं जाना, मुझे मोबाइल पर ही खेलना है। यह उत्तर सुनने में छोटा लगता है लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा संदेश छिपा है। जिस उम्र में बच्चों को मिट्टी में खेलना चाहिए, पेड़ों पर चढ़ना चाहिए, दोस्तों से बातें करना चाहिए, उनके साथ दौड़ना चाहिए, उम्र में वे मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां चला रहे हैं। मोबाइल बच्चों को जानकारी तो दे सकता है पर बचपन नहीं दे सकता। मोबाइल मनोरंजन तो दे सकता है लेकिन परिवार का स्नेह नहीं दे सकता। मोबाइल खेल दिखा सकता है लेकिन बच्चों के साथ खेलने का आनंद नहीं दे सकता। हमें यह समझना होगा कि बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण केवल अच्छी शिक्षा से नहीं होता बल्कि अच्छे पारिवारिक वातावरण से होता है। जब माता पिता बच्चों के साथ बैठते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तब बच्चे भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। 6 बजे हैं, आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने सुखदेव नगर में विशाल हेल्थ कैंप लगाया, जहां सैकड़ों लोगों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच हुई। इस शिविर में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, विधायक सीपी सिंह और महापौर रोशनी खलको उपस्थित रहे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज गुमला जिले के सिसई, गुमला और बिशनपुर विधानसभा क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दावा आपत्ति, मतदाता दस्तावेज सत्यापन और सुनवाई की व्यवस्था का जायजा लेते हुए इसे त्रुटि रहित बनाने का निर्देश दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची के बिरसा चौक से लेकर सेल सैटेलाइट चौक तक बाईपास रोड में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर तत्काल रोक लगा दी है। इस कानूनी आदेश पर विस्तृत जानकारी देते हुए झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अविनाश अखर ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया गया है। सिमडेगा के कुरडेग थाना क्षेत्र अंतर्गत कसडेगा बस्ती में आज एक ही परिवार के दो सगे भाइयों की कुएं में डूबने से मौत हो गई। दोनों भाई घर के पास स्थित कुएं में नहाने गए थे और पानी अत्यधिक होने के कारण दोनों बाहर नहीं निकल पाए और उनकी मौत हो गई। देवघर में पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर की अध्यक्षता में आज पुलिस पदाधिकारियों की मासिक अपराध की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आगामी दुर्गा पूजा और त्योहारी सीजन के मद्देनजर SP ने सभी थाना प्रभारियों को विशेष सुरक्षा खाका तैयार करने का निर्देश दिया है। रांची में आज दक्षिण पूर्व रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स मीट का उद्घाटन मंडल रेल प्रबंधक करुणा निधि सिंह ने किया। इस प्रतियोगिता में फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, स्विमिंग और एथलेटिक्स सहित 8 खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 690 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी।

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम ग्रामीण भाइयों को रागिनी कुमारी का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही प्रतिमा वर्मा का भी नमस्कार।
0: स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। ग्रामीण भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे समन्वित मछली पालन की।
1: जी हाँ ग्रामीण भाइयों, समन्वित मछली पालन से हमारा अर्थ है मछली पालन को खेती या पशुपालन जैसी अन्य गतिविधियों के साथ जोड़कर किया जाए ताकि एक ही संसाधन से अधिक लाभ हमारे किसान भाई प्राप्त कर सके। तालाब के साथ सब्जियों की खेती, बतख पालन या अन्य उपयुक्त कृषि गतिविधियों को जोड़ा जा सकता है। इससे उपलब्ध पानी, जमीन और जैविक संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकता है। इसके कई लाभ भी हैं। एक ही स्थान से कई प्रकार की गतिविधियाँ की जा सकती हैं, किसान की आय के अतिरिक्त स्रोत बन सकते हैं। खेत और तालाब के संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। खेती और मछली पालन को एक दूसरे से जोड़कर उत्पादन बढ़ाने का अवसर मिलता है। जोखिम एक ही फसल या गतिविधि पर निर्भर नहीं रहती।
0: समन्वित मछली पालन शुरू करने से पहले तालाब की स्थिति, पानी की गुणवत्ता, उपलब्ध जमीन, स्थानीय बाजार और लागत का आकलन करें। मछलियों की उचित प्रजाति और संख्या का चयन करें और मत्स्य विशेषज्ञ की सलाह से करें। तालाब में जरूरत से अधिक मछलियां न डालें और पानी की नियमित निगरानी करें।
1: मान लीजिए किसी किसान के पास तालाब है, वह केवल मछली पालन ही नहीं बल्कि तालाब के आसपास सब्जियों की खेती भी कर सकता है। करण भाइयों, उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करके खेती और मछली पालन को आप एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं।
0: और इस पद्धति का एक सबसे बड़ा लाभ है कि किसान की आय केवल एक गतिविधि पर निर्भर नहीं रहती। यदि किसी एक उत्पादन से अपेक्षित लाभ न मिले तो दूसरी गतिविधि से भी आय का सहारा मिल सकता है। लेकिन समन्वित मछली पालन शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तालाब का आकार, पानी की गुणवत्ता, मछलियों के लिए उचित वातावरण, चारे की उपलब्धता और बाजार की मांग को समझना चाहिए। स्थानीय मत्स्य विभाग या कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही योजना बनाना ज़्यादा बेहतर होता है और महिला किसान भी इसी कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकती हैं, जैसे मछलियों को चारे देने, तालाब की देखभाल, सब्जियों की खेती और उत्पादों की बिक्री में भी सहयोग करना।
1: इस चर्चा के बाद आइए सुनते हैं एक लोकगीत।

0: भरत सिंह भारती की आवाज़ में आप अभी लोकगीत सुन रहे थे। आइए इसके बाद सुनवाते हैं सुषमा श्रीवास्तव की आवाज़ में वार्ता प्राकृतिक खेती।
1: प्राकृतिक खेती टिकाऊ खेती। प्राकृतिक खेती एक रसायन मुक्त पारंपरिक खेती पद्धति है जिसे कृषि पारिस्थितिकी आधारित विविध कृषि प्रणाली माना जाता है जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को कार्यात्मक जैव विविधता के साथ एकीकृत करता है। प्राकृतिक खेती ऐसी खेती होती है जिसमें फसलों पर किसी भी प्रकार का रासायनिक कीटनाशक एवं उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ प्रकृति के दौरान निर्मित उर्वरक और अन्य पेड़ पौधों के पत्ते, खाद, पशुपालन, गोबर खाद एवं जैव कीटनाशक उपयोग में लाया जाता है। यह एक प्रकार से विविध प्रकार की कृषि प्रणाली है। इसमें अन्य लाभों के अलावा मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की बहाली और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का शमन या निम्नीकरण प्रदान करते हुए किसानों की आय बढ़ाने का मजबूत आधार प्रदान करती है। इससे टिकाऊ खेती को बल मिलता है। प्राकृतिक खेती को समझने के लिए हमें कि टिकाऊ खेती को भी समझना होगा। टिकाऊ कृषि पद्धतियों का लक्ष्य खेती के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षरण को कम करना है, साथ ही फसल और खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना भी है। छोटे पैमाने के कृषक समुदायों के भीतर ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए टिकाऊ खेती की कई रणनीतियां हैं। इस दिशा में विशेष रूप से

वर्षा आधारित क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सतत कार्यक्रम मिशन NMSA तैयार किया गया है, जिसमें एकीकृत खेती, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, संसाधन संरक्षण में तालमेल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वास्तव में टिकाऊ खेती को अपनाने का मतलब है कि आप बिना पर्यावरण यानी मिट्टी, हवा, पानी को प्रदूषित किए और बिना किसी भी प्राकृतिक संसाधन को समाप्त किए अपने कार्यों से पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को बिना बाधित किए किसी विशिष्ट फसल में पर्याप्त उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाई टिकाऊ खेती के तरीकों को अपनाने से पहले यह जरूर जानना चाहेंगे कि टिकाऊ खेती या प्राकृतिक रूप से खेती करने के क्या लाभ हैं, और किसान भाइयों को जानना भी चाहिए। आज जब पूरे विश्व में पर्यावरण असंतुलन की समस्या बनी हुई है, एक चुनौती बनी हुई है, भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में टिकाऊ खेती अत्यंत ही लाभदायक है। पर्यावरण संरक्षण में योगदान, टिकाऊ खेती अगर किसान भाई अपनाते हैं तो उससे पर्यावरण संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान दिखाई देता है। पर्यावरण जीवन का संबल है और हमारी अनेक प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसी से हमें स्वच्छ वायु, साफ पानी, हरे भरे जंगल, विविध पशु पक्षी और आधारभूत मिट्टी प्राप्त होती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को उसी अवस्था में अपनी आगामी पीढ़ियों को सौंप दें जिस अवस्था में यह हमारे पुरखों से मिली है। टिकाऊ खेती प्राकृतिक आधारित खेती होने के कारण पर्यावरण संरक्षण में हमारी पूरी सहायता करती है। प्रदूषण की रोकथाम, टिकाऊ कृषि के फायदे में एक बहुत बड़ी बात है कि इससे प्रदूषण की रोकथाम होती है। टिकाऊ खेती में प्रयुक्त होने वाली कृषि अवशेष अपनी उपयोगिता से हमें लाभान्वित करके अंतिम रूप से प्राकृतिक परिवेश में घुल मिल जाती है और पर्यावरण को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाती। उदाहरण स्वरूप, इसमें प्रयुक्त होने वाली सड़ी गली गोबर की खाद, फसलों के अवशेष मिट्टी में मिलकर उसे किसी प्रकार से विषाक्त नहीं करती। टिकाऊ कृषि अपनाने से लागत में भी कमी होती है। टिकाऊ खेती की विधियों में कृत्रिम संसाधनों का प्रयोग कम से कम किया जाता है, इसलिए इससे खेती की लागत में कमी हो जाती है। इसके अंतर्गत कृत्रिम खाद, कृत्रिम कीटनाशियों एवं जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता समाप्त हो जाती है, जिससे किसान के लाभ में बढ़ोतरी तो होती ही है, समूची मानवता लाभान्वित होती है। जैव विविधता में बढ़ोतरी, टिकाऊ खेती के अंतर्गत खेतों में अनेक वनस्पतियों एवं जीवधारियों को पलने बढ़ने का सुअवसर प्राप्त होता है, जिससे कृषि परिवेश की जैव विविधता में बढ़ोतरी हो जाती है। साथ ही साथ पशुधन के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी होता है। टिकाऊ खेती की प्रक्रिया ऐसी है जिसके अंतर्गत खेती एवं पशुपालन को साथ साथ किया जाता है। ऐसे में पशुधन की संख्या में बढ़ोतरी होती है। यही नहीं, टिकाऊ खेती मत्स्य पालन, सुकर पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, बत्तख पालन आदि को प्रोत्साहित करती है। जैसे गाय पालन से गोबर मिलता है, उसी प्रकार मुर्गी पालन से जो अवशिष्ट निकलता है वह मछलियों का भोजन बनता है। इस प्रकार एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करके लागत में कमी और पशुधन के लिए लाभकारी है। हरियाली में भी वृद्धि होती है टिकाऊ कृषि से। टिकाऊ खेती
की प्रकृति के अंतर्गत

0: बागवानी एवं कृषि वानिकी को अपनाने पर अत्यधिक जोर दिया गया है, जिससे परिवेश की कुल हरियाली में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है और हो जाती भी है। इससे एक ओर किसान को लंबे समय तक लाभ तो होता ही रहता है, इसीलिए कि पेड़ जब लगते हैं तो उससे मिलने वाले लाभ किसान भाइयों को होते रहते हैं, जबकि पर्यावरण की भी सुहावना एवं संतुलित बना रहता है। किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी टिकाऊ खेती की पद्धति के अंतर्गत एक ओर किसानों की लागत में कमी होती है, तो दूसरी ओर खेती में वृक्षारोपण, पशुपालन आदि के परस्पर उपयोग का एक ऐसा चक्र विकसित हो जाता है जिससे व्यर्थ पदार्थों का निकास शून्य हो जाता है। इससे किसान का आर्थिक लाभ बढ़ जाता है, साथ ही इससे केवल तात्कालिक लाभ ही प्राप्त नहीं होता, वरन लंबे समय तक लाभ मिलता रहता है। टिकाऊ खेती को जब किसान भाई अपनाते हैं तो सामाजिक समानता में भी वृद्धि होती है। टिकाऊ खेती सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से किसान, श्रमिक समुदाय एवं परिवेश के मानवीय संबंधों पर आधारित है। इसके अंतर्गत सभी लाभ के बराबर भागीदार होते हैं, इसलिए इससे सामाजिक समानता व समरसता में वृद्धि होती है। किसान को जहां आर्थिक लाभ मिलता है, वहीं श्रमिक को निरंतर कार्य व मजदूरी की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। साथ ही साथ अक्षय स्रोतों में भी वृद्धि टिकाऊ कृषि के द्वारा होती है। टिकाऊ खेती एक ओर खेती के कृत्रिम संसाधनों से परहेज करती है, जबकि दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। इससे पर्यावरण में अक्षय स्रोतों की वृद्धि होने लगती है। उदाहरण स्वरूप रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद के स्रोतों में वृद्धि होती है। सुख शांति और सौंदर्य के स्रोतों में भी वृद्धि टिकाऊ खेती के द्वारा होती है। टिकाऊ खेती से जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता एवं परस्पर निर्भरता का जो समग्र जीवन संतुलन निर्मित होता है, वह मानवीय परिवेश में सुख शांति एवं सौंदर्य के स्रोतों में वृद्धि एवं अनुकूलता के दर्शन सुलभ कराता है। इससे कृषि क्षेत्र एवं परिवेश में जीवन की सार्थकता एवं अनुकूलता के दर्शन सुलभ हो जाते हैं। इस प्रकार टिकाऊ खेती के अंतर्गत खेत खलिहान एवं फसलों, किसान व श्रमिकों से अत्यंत कोमल व्यवहार करते हैं और उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते। टिकाऊ खेती पशुधन के लिए भी उपयोगी है एवं अनुकूल सिद्ध होती है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अस्थाई कृषि या टिकाऊ खेती द्वारा खेती जनित सभी प्रकार की समस्याओं का स्वतः ही अंकुश लग जाता है और खेती प्रकृति का एक अवयव और अनुपम उपहार बन जाती है। टिकाऊ खेती के आधार पर विभिन्न फसलों का फसल प्रणाली में समावेश करने के प्रति इकाई लागत को कम किया जा सकता है। इससे विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न जैसे धान्य, दाल, तेल इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ मृदा या मिट्टी स्वास्थ्य का संरक्षण होता है। इस तरह हम देखते हैं कि प्राकृतिक खेती के जल संरक्षण और पारिस्थितिक संरक्षण पहलू पानी की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन कृषि मूल्य श्रृंखला के विविध चरणों में CO2 उत्सर्जन में कमी में योगदान करते हैं। इन फायदों को देखते हुए किसान भाइयों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए।
1: अभी आप सुषमा श्रीवास्तव की वार्ता सुन रही थी। विषय था प्राकृतिक खेती और अब बात करते हैं धान फसल में कीट एवं रोग प्रबंधन की। धान की अच्छी पैदावार के लिए समय पर कीट और रोग की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। धान में तनाछेदक, पत्ती लपेटक और भूरा फुदका जैसे कीट नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं झुलसा रोग, शीत ब्लाइट और गर्दनमारी जैसे रोग भी फसल को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले खेत का निरीक्षण, नियमित निरीक्षण करें किसान भाइयों। पत्तियों का रंग बदलना, पौधों का सूखना, तने के अंदर नुकसान या असामान्य धब्बे दिखाई देने पर तुरंत ध्यान दें। हर कीट या रोग दिखाई देने पर तुरंत दवा का छिड़काव करना जरूरी नहीं है। पहले समस्या का सही पहचान करें और स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें।
2: और कीट से बचाव के लिए कुछ उपाय भी हैं ग्रामीण भाइयों, जैसे खेत में संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक का प्रयोग करें, खेत में अनावश्यक पानी जमा ना रहने दें और उचित जल प्रबंधन करें, खेत की नियमित निगरानी करें, प्रभावित पौधों या हिस्सों को समय पर पहचानें और उचित प्रबंधन करें, जरूरत पड़ने पर ही अनुशंसित कीटनाशक या रोगनाशी का प्रयोग करें और लेवल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ही इस्तेमाल करें। एक ही रसायन का बार बार प्रयोग करने से आप बचें। पहचान सही, निगरानी नियमित और उपचार जरूरत के अनुसार, इसी से धान की फसल को कीट और रोगों से सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। धान की अच्छी फसल के लिए केवल अच्छी किस्म और खाद पानी ही पर्याप्त नहीं है, कीट और रोगों की समय पर पहचान और उचित प्रबंधन भी बहुत ही जरूरी है। धान के खेत में पौधों का नियमित निरीक्षण करें। यदि कुछ पौधे अचानक सूखने लगें, पत्तियों पर धब्बे दिखाई दें, पत्तियां मुड़ने लगें या तने में नुकसान दिखाई दे, तो इसे आप नज़रअंदाज ना करें।
1: तनाछेदक के प्रकोप में पौधे के बीज की पत्ती सूख सकती है, जिसे अक्सर डेड हार्ट कहा जाता है। भूरा फुदका हो तो पौधे का रस चूसकर खेत में पौधों के समूह को प्रभावित कर सकता है। रोगों में ब्लास्ट और शीत ब्लाइट बहुत प्रमुख समस्याएं हो सकती हैं। तो किसान भाई क्या करें? सबसे पहले नियमित निगरानी करें, सप्ताह में कई बार खेत का निरीक्षण करें और समस्या वाले स्थानों को ध्यान से देखें। दूसरी बात, संतुलित पोषण, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का आवश्यकता से अधिक प्रयोग करने से बचें और स्थानीय अनुशंसा के अनुसार ही खाद दें। तीसरी बात, ध्यान रखें जो खेत का उचित प्रबंधन करें, पानी का उचित निकास रखें और खेत में अनावश्यक रूप से लंबे समय तक पानी जमा ना होने दें। चौथी जरूरी बात, सही पहचान हो, केवल अनुमान के आधार पर कीटनाशक या रोगनाशी का प्रयोग ना करें किसान भाइयों। समस्या की पहले पहचान करें, उसके बाद कृषि विशेषज्ञ से उचित उपाय जरूर पूछें। और आखिरी और बहुत ज़रूरी बात, रसायनों का सुरक्षित प्रयोग करें। यदि दवा की आवश्यकता हो तो केवल अनुशंसित उत्पाद और मात्रा का उपयोग करें और लेबल पर दिए सुरक्षा निर्देशों का पालन जरूर करें। देखिए, धान की फसल पर पैनी नज़र समस्या दिखे तो करें सही पहचान और विशेषज्ञ की सलाह से ही उचित प्रबंधन करें। फसल को स्वस्थ रखने के लिए खेत में साफ सफाई रखें, संतुलित मात्रा में खाद दें और ज़रूरत के अनुसार सिंचाई और जल निकास की व्यवस्था रखें। अत्यधिक यूरिया के प्रयोग से बचें। अगर कीट या रोग का प्रकोप दिखाई दे तो अपने स्तर पर कोई भी रसायन मिलाकर प्रयोग ना करें। कृषि विभाग या कृषि विशेषज्ञ से समस्या की पहचान करवा कर ही अनुशंसित दवा और मात्रा का प्रयोग करें। और किसान भाइयों, दवा का छिड़काव करते समय अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। लेबल पर जो निर्देश दिए हैं, जैसा कि मैंने कहा कि सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग और निर्देशों का पालन जरूर करें। तो खेत की नियमित निगरानी करें, कीट रोग की सही पहचान करें, जरूरत पड़ने पर उचित उपचार करें, यही स्वस्थ धान की फसल और बेहतर उत्पाद की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

जहाँ संभव हो स्वस्थ बीज और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल किस्मों का चयन करें। फसल अवशेष और खरपतवार का उचित प्रबंधन भी खेत को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यदि कीट या रोग का प्रकोप आर्थिक नुकसान की सीमा तक पहुंचता है, तभी विशेषज्ञ की सलाह से उचित नियंत्रण और उपाय अपनाएं। कीटनाशक या रोगनाशी की मात्रा अपनी ओर से न बढ़ाएं और अलग अलग दवाओं को बिना सलाह मिलाकर प्रयोग न करें। कीट दिखते ही घबराने की जरूरत नहीं है। खेत की स्थिति देखकर एकीकृत कीट प्रबंधन अपनाना बेहतर तरीका है, जिसमें निगरानी, कृषि संबंधी उपाय, जैविक उपाय और आवश्यकता पड़ने पर अनुशंसित रसायनों का उपयोग भी शामिल हो सकता है। धान की फसल पर रखें नियमित नजर, सही समय पर करें सही पहचान, कम करें अनावश्यक दवा का इस्तेमाल, स्वस्थ रखें और अपनी फसल और खेत को।

0: तो ग्रामीण भाइयों, इसी चर्चा के साथ अब हमारा समय भी आपसे विदा लेने का हो चला है। तो इसी के साथ कार्यक्रम खेतीबाड़ी से अब दीजिए रागिनी कुमारी और
1: प्रतिमा वर्मा को अनुमति।
0: नमस्कार, नमस्कार।

अभी हमारे जो श्रोता सुन रहे थे ग्रामीणों एवं कृषकों को संबोधित कार्यक्रम खेतीबाड़ी, हम आकाशवाणी के डाल्टन इंजकिन से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कृषि उत्पाद एवं ग्रामीण विकास प्राधारित कार्यक्रम ग्रामीण सभा।

0: ग्रामीण सभा सुनने वाले तमाम श्रोताओं को प्रतिमा वर्मा का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही रागनी कुमारी का भी नमस्कार।
0: इस ग्रामीण सभा कार्यक्रम में सबसे पहले बात करते हैं गौशाला की साफ सफाई आवश्यक क्यों है। पशुओं का स्वस्थ रहना किसान भाइयों केवल अच्छे चारे पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उनके रहने की जगह की स्वच्छता भी उतनी ही जरूरी है। गौशाला में गोबर और मूत्र को नियमित रूप से हटाना चाहिए। फर्श को सूखा और साफ रखने से गंदगी, दुर्गंध और कीटों की समस्या कम करने में मदद मिलती है। पानी जमा ना होने दें और नालियों की नियमित सफाई करें। पशुओं के बैठने की जगह आरामदायक और सूखी होनी चाहिए। चारा और पीने का पानी रखने वाले बर्तनों को भी नियमित रूप से साफ रखें। खराब या सड़ा हुआ चारा पशुओं को ना दें। गौशाला में पर्याप्त हवादार व्यवस्था और रोशनी होना भी जरूरी है। गर्मी और बरसात के मौसम में विशेष सावधानी रखें, क्योंकि नमी और गंदगी से संक्रमण का जोखिम बढ़ सकता है।
1: और ग्रामीण भाइयों, सफाई करते समय हाथों की स्वच्छता और उचित सुरक्षा का भी ध्यान रखें। यदि किसी पशु में बीमारी के लक्षण दिखाई दे तो उसे अन्य पशुओं से अलग रखकर पशु चिकित्सक से सलाह लेना उचित है। पशु हमारे परिवार और खेती का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए जिस तरह हम अपने घर को साफ रखते हैं उसी तरह गौशाला की नियमित भी साफ सफाई भी बहुत ही जरूरी है। गौशाला में गंदगी और नमी रहने से दुर्गंध, मक्खी और अन्य कीटों की समस्या बढ़ सकती है। इससे पशुओं के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए गोबर और गीला बिछावन रोज हटाएं और फर्श को यथासंभव आप सूखा रखें। पीने के पानी की नाद और चारा रखने के बर्तनों को नियमित रूप से साफ करें। पशुओं के लिए साफ और पर्याप्त पानी उपलब्ध रखें। गौशाला की नालियों में पानी या गंदगी जमा ना होने दें। ग्रामीण भाइयों, गौशाला में हवा का उचित आवागमन होना चाहिए और पशुओं को छायादार स्थान दें। बरसात में पानी के जमाव से बचाएं। ठंड के मौसम में पशुओं को ठंडी हवा और अत्यधिक नमी से बचाने की व्यवस्था करें। सफाई करते समय दस्ताने या उपयुक्त सुरक्षा साधनों का प्रयोग करें और बाद में साबुन से हाथ को आप अच्छी तरह से धोएं। यदि कोई पशु सुस्त दिखाई दे और खाना पीना कम कर दे या बीमारी के अन्य लक्षण दिखाए तो समय पर पशु चिकित्सक से संपर्क करें।

ग्रामीण भाइयों, गाय और अन्य पशुओं का अधिकांश समय गौशाला में ही बीतता है, जहाँ पर गोबर, मूत्र, गीला चारा और गंदा पानी जमा रहता है, तो मक्खियों और दूसरे कीट बढ़ सकते हैं और पशुओं के बीमार पड़ने का भी जोखिम बढ़ सकता है।

0: इसलिए रोज सुबह गौशाला की सफाई को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, गोबर को समय पर आप हटाएं, फर्श को साफ रखें और पानी की उचित निकासी की व्यवस्था करें और पशुओं के बैठने की जगह सूखी और आरामदायक रखें।
1: चारा हमेशा साफ स्थान पर रखें और पानी के बर्तनों को नियमित रूप से धोएं। बचा हुआ या खराब चारा हटाते रहें। गौशाला में पर्याप्त हवा और रोशनी की व्यवस्था भी रखें। सफाई करते समय केवल फर्श की सफाई ही पर्याप्त नहीं है, नियमित रूप से कोनों, नालियों और चारे के आसपास के स्थानों की भी जाँच करें। जहाँ नमी या गंदगी बार बार जमा होती है, वहाँ उसके कारणों को दूर करने की कोशिश करें। याद रखें कि साफ गौशाला का मतलब केवल साफ जगह नहीं, बल्कि स्वस्थ पशु, बेहतर देखभाल और स्वस्थ वातावरण है। और अब आइए आपको भेंटवार्ता सुनवाते हैं, जाड़े की अगेती दलहनी फसलें एवं उसकी खेती। भेंटवार्ताकार हैं कृषि विज्ञान केंद्र चिया की पलामू के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार पांडे जी। बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संतोष कुमार।
2: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती बाड़ी में। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे अगेती दलहनी फसल, जो जाड़े की अगेती दलहनी फसल है, इस पर बातें करेंगे। और इससे संबंधित जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार पांडे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
3: नमस्कार, जोहार हमारे झारखंड के सभी किसान भाइयों को।
2: सर्वप्रथम तो आप हमारे ग्रामीण भाइयों को ये बताइए कि अभी हमारे किसान भाई जाड़े की जो अगेती दलहनी फसलें हैं वे कौन सी हैं और उसके उसकी खेती की तैयारी कैसे करेंगे, उसके प्रभेद क्या होंगे?
3: इस विषय पर हम जो है विस्तार से एक एक करके जो है हम प्रकाश डालेंगे। हमारे झारखंड के किसान भाई जो है इसको ध्यान से सुनेंगे। अभी जो है हमारे झारखंड में जो है कुछ दिनों से, अभी 3-4 दिनों से जो है बारिश जो है बंद हो गई है और हमारे बहुत सारे किसान भाई जो है इसका इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश बंद हो और हम जो है अपनी रबी की फसल की तैयारी में लग जाएं। लेकिन बहुत इंतज़ार के बाद जो है बारिश जो है बंद हुई है। लगभग जो है ये 15-16 अगस्त से बारिश हो रही थी, अभी जो है कुछ दिन पहले ही बारिश बंद हुई है। तभी खेत में हमारी पर्याप्त नमी है, अभी इसको जो है किसान भाई जो सूखने दे और सूखने के बाद जो है जब खेत बिल्कुल माने यूँ लगे कि जुताई के लिए हमारा खेत तैयार हो गया है तो उसकी जो है जुताई शुरू करें। अभी तो खरपतवार घासें जो है खेत में बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि खरीफ का ये हमारा मौसम है, इसमें जो है खरपतवार घास जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए खेतों में बहुत ज़्यादा घासें होंगी। तो इसके लिए इसकी जो है अच्छी तरह से जुताई जो है बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जो क्या करेंगे इसको जो है कि किसान जो है ट्रैक्टर से जो है जो कल्टीवेटर होते हैं 9-10 कल्टीवेटर, उससे जो है खेत की जो है हम जुताई करें। एक बार उससे जुताई दी हम एक बार करते हैं, यदि रोटावेटर है तो रोटावेटर से भी उसकी जुताई एक बार करें और फिर उसके बाद एक बार और कल्टीवेटर से जुताई करें। इसके बाद जो है पाटा दे करके जो है खेत को जो है छोड़ दें। इसमें जो है इसके बाद भी नमी खेत में बनी रहती है क्योंकि बरसात इतनी इस बार अच्छा हुआ है कि हमारे रबी के फसल के लिए बहुत ही मैंने अच्छा ये समय है और समय पे बंद हो गई है बारिश जो है। हमें अनुमान है कि ये बारिश जो है अब शांत रहेगी और किसान भाइयों को रबी की फसल की तैयारी करने का समय मिलेगा। तो इसमें जो है मुख्य रूप से हमारी फसल है चना है, मटर है, मसूर है और तीसी है।
2: अच्छा,
3: ये जो है चार मुख्य फसलें हैं जिसको हमारे झारखंड में जो है लोग लगाते हैं हमारे किसान भाई। इसमें जो है जो हमारी चना है वो मुख्य फसल है और इसमें जो है हमारा जो है हम लोग जो है हमेशा जो है सर्टिफाइड सीड जो है प्रमाणिक बीज जो है लगाने की बात जो है किसानों से करते हैं। हाइब्रिड भी किसान लगाते हैं लेकिन प्रमाणिक बीज जो होता है उसको जो है आप जो है 3-4 साल तक आप रख सकते हैं उसको जो है उसकी जो है

0: से बुआई जो है आप कर सकते हैं। एक बार लगने के बाद जो है खेत जो बीज आपका अनाज होता है उसको बीज के रूप में स्टोरेज करके जो है उसको कर सकते हैं, तो किसान की जो है लागत जो है कम होती है। इससे मार्केट में हाइब्रिड भी है लेकिन उसकी जो है कीमत काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो सर्टिफाइड सीड जो है जो प्रमाणिक बीज है उसको किसान लगाए, उसमें हमारे मुख्य प्रभेद है बीजी 3043 है, जीएनजी जो है 2207 है, और बिरसा चना 3 है, और एक और जो है अच्छी वैरायटी है स्वर्ण लक्ष्मी DBGC 3।
1: अच्छा, ये किसके प्रभेद है?
0: ये जो है चना के, हमारे जो है चिकपी चना जो होता है उसके प्रभेद है, और ये लगभग जो है ये सभी जो है 115 से 120 दिन की हमारी वैरायटी है।
1: अच्छा, उतने दिन में ये तैयार है?
0: हाँ, इसका जो है हमारा जो है दूरी रखना चाहिए वो 30 × 10 सेंटीमीटर, मैं लाइन से लाइन 30 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा
1: 10 सेंटीमीटर
0: जो है। इसका जो है जो अगेती बुआई हमारी है तो वो जो है मैंने असिंचित क्षेत्र में ही होती है, जैसे कि अब बारिश उसके सिंचाई के उसके पास साधन नहीं है तो उसको और जल्दी लगाना होगा।
1: अच्छा,
0: ताकि एक दो बारिश यदि उसको मिल जाए आगे तो उसकी फसल जो है तैयार हो जाती है। इसका जो समय होता है हमारा 1 अक्टूबर से मध्य अक्टूबर 15 अक्टूबर के आसपास जो है इसमें जो है वो बुआई करें। यदि उसको जो है सिंचित क्षेत्र में करना है, उसके सिंचाई के उसके पास साधन है तो 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में वो कर सकता है।
1: अच्छा,
0: यदि धान काटने के बाद उसके पास खेत है कि उसके पास ऐसे खेत में नहीं बचा हुआ है जो परती खेत हो जो रबी की फसल के लिए रखता है किसान जो है, कुछ किसान रखते हैं इसको जो है, तो वो तो उसे लगा सकते हैं आपका उसमें अगेती में। और समय पे जो धान की फसल पे निर्भर है वो धान की फसल कटने के बाद जो है वो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में धान कटने के बाद जो है उस समय भी नमी रहती है खेत में वो लगा सकते हैं। ठीक है, अब रही इसका बीज दर क्या है। इसका बीज जो है 70 से 80 kg जो है किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर में 2.5 एकड़ में, एक एकड़ में करीब 62.5 कट्ठा होता है। तो यदि आप जो है काबली चना लगाते हैं जो बड़े दाने वाला चना है उसका जो 90 से 100 kg इसका बीज दर है और एक हेक्टेयर में मतलब 2.5 एकड़ में। और इसका उर्वरक जो है इसमें जो है फास्फोरस की जो है दलहनी फसल में जो है फास्फोरस DAP SSP वगैरह की जो है मात्रा जो है अच्छा खासा रखना चाहिए।
1: अच्छा,
0: इसमें जो नाइट्रोजन कम दीजिए लेकिन उसको जो है फास्फोरस जो है ज़्यादा दीजिए।
1: अच्छा,
0: इसलिए इसका जो है उर्वरक का जो मात्रा होती है 25, 50, 25 और 20 जो है सल्फर होता है और मैंने 25 नाइट्रोजन और 50 फास्फोरस मैंने DAP की मात्रा जो है उससे जो है डबल ही करीब करीब मने रहती है। तो क्योंकि जो दलहन फसल में इसकी जरूरत होती है बोरान का भी मने दलहनी फसल में जरूरत पड़ती है किसान को जो है वो, हालांकि हमारे फुलामू प्रमंडल में देखते हैं कि लोग बोरान का के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन दलहनी फसल के लिए बोरान की भी बहुत आवश्यकता है। एक्चुअली बोरान जो होता है ना, जैसे कि फूल जब लगने वाला होता है, फूल जब आता है और दाना जब बनने का होता है तो उस समय बोरान की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है पौधों को। तो उसमें बोरान का छिड़काव अति जो है वो खेत में डाले जो है 5 से 8 kg प्रति एकड़ किसान जो है कर सकते हैं। एक एकड़ में यहाँ 27 कट्ठा है। निराई गुड़ाई भी करना है 2 बार निराई गुड़ाई कर सकते हैं, एक बार भी कर दीजिएगा तो उसमें जो है टिलरिंग अच्छा आ जाएगा जो है सिंचाई 2 बार, एक बार फूल आने से पहले एक बार फली आने के बाद। उपज इसमें जो है देखा गया है कि करीब करीब जो है 15 से 20 क्विंटल
1: उपज
0: प्रति हेक्टेयर जो है 2.5 एकड़ में जो है उपज जो है
1: ले सकते हैं।
0: रहती है दूसरी फसल जो है हमारी जो है मटर है। मटर में हमारा प्रभेद जो है इसकी भी खेत की तैयारी देखिए, जितनी भी दलहनी फसल है उसकी उर्वरक की मात्रा, खेत की तैयारी और उसमें जो है खरपतवार नियंत्रण के लिए भी मैं फिर से मैंने उस चने में बता दे रहा हूँ कि खरपतवार के लिए एनाक्लोर जो है 50 EC जो है 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आप करेंगे तो मैंने जैसे बुआई किए बुआई के 2-3 दिन के बाद जो है उसका छिड़काव कर दीजिए तो घास जो है ऐसे तो जुताई से काफ़ी ख़त्म हो जाती है लेकिन फिर भी बच गई तो मैंने वो इससे जो है हो जाता है। ये दलहनी फसल सबके लिए
1: जी
0: करीब करीब है, मैंने किसी भी फसल में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक पेंडी मेथिली

0: बीन भी आता है, उसका भी उससे काम है, उसको भी किसान कर सकते हैं। मटर में जो है हमारा HFP जो है 14-26 है, दांतेवाड़ा मटर एक है, शिखर एक मटर वेराइटी है हमारा। ये सब प्रमाणिक बीज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, हाइब्रिड के बारे में नहीं कर रहे हैं। तो अब इसकी जो है दूरी है जो है 30 से 30 × 15 माने 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 15 सेंटीमीटर पौधा
1: कतार से
0: गया,
1: कतार,
0: कतार से पौधा से
1: पौधा
0: पौधा।
1: से पौधा।
0: और ये 115 से 125 दिन की वैरायटी हमारी है
1: अच्छा,
0: मटर की जो
1: हाँ।
0: है। किसान जो है इसको जो है बुआई जो है मध्य अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में जो है
1: कर सकते
0: हाँ
1: हैं,
0: किसान इसकी बुआई कर सकते हैं इसको जो है।
1: मतलब अगेती की जो शुरुआती दौर है वो अक्टूबर से प्रारंभ हो गया।
0: हाँ अक्टूबर से प्रारंभ हो गया इसका जो है। आप इस सितंबर में खेत जब आप देख लेंगे खेत हमारा सूख गया है, तैयारी जुताई के लायक हो गया है, तो जुताई करके आप जो है यदि जल्दी फसल लेना चाहते हैं
1: तो
0: तो अक्टूबर से आप स्टार्ट कर दीजिए ये सब
1: जी।
0: जो है, तो आपका जो है जल्दी तैयार हो जाएगा। और अच्छा मार्केट, सबसे बड़ी चीज़ मार्केट में दाम इसका मिल जाएगा।
1: हाँ।
0: मटर वगैरह तो मतलब कि हमारी जो छेमी उसकी जो है अच्छा रेट में बिक जाती है, आगाती आपके तैयार हो गई तो मतलब अच्छा मतलब 50-60 रुपये KG जो है किसान के यहाँ से लोग लेके चले जाते हैं। इसकी भी बीज दर जो है वही है 70 से 80 KG जो है। और उर्वरक की मात्रा इसमें पहले ही बताया, जैसे आप चना में है
1: उस तरह से
0: उसी
1: इसमें
0: तरह का सेम मतलब कि इसमें भी है। इसमें भी दलहनी फसल जितनी है उसमें सल्फर भी डालिए और बोरान भी डालिए, भले थोड़े
1: फास्फोरस भी।
0: हाँ फास्फोरस तो आप डालेंगे ही डालेंगे और नाइट्रोजन जो है डालेंगे ही डालेंगे। इसकी भी उपज जो है करीब 15 से 20 KG के आसपास जो है इसकी भी उपज होती है। और हमारा अगली फसल है मसूर जो है, इसकी भी तैयारी सेम करेंगे, इसमें भी हमारा उर्वरक की मात्रा सेम रहेगी उसी तरह से जैसे हमारा चना और मटर में आपने देखा। इसके प्रभेद जो है IPL 220 है, WBL 77 है और L जो है 47-27 है,
1: ये मसूर के लिए।
0: ये मसूर के लिए इसकी जो है 1 से 115 से 125 दिन की ये भी हमारा वैरायटी है ये हमारा। और खेत की तैयारी उसी तरह से करेंगे जैसे आप उसमें किए हैं
1: चना मटर में।
0: हाँ इसका भी हमारा मध्य अक्टूबर से जो है 1 नवंबर के बीच में जो है। मसूर भी बहुत अच्छी मतलब कि उपज देने वाली फसल है, इसका बीज दर कम होता है, साइज के ऊपर बीज दर निर्भर करता है।
1: अच्छा
0: साइज यदि जिस अनाज की बड़ी है उसका उस हिसाब से ज़्यादा बीज दर होगा, छोटा है तो उसका जो है कम होगा। तो ये जो है मसूर उससे छोटा होता है मटर से चना से, तो इसके जो बीज दर है 25 से 30 KG प्रति हेक्टेयर है। और बड़ा दाना यदि मसूर में है हाइब्रिड वगैरह जो है तो उसका 35 से 40 KG है। इसमें भी निराई गुड़ाई दो बार आप कीजिए 25 दिन पर 45 दिन पर जो है। पानी के साधन है तो सिंचाई दो बार ये कर देंगे तो अच्छा रहेगा। फर्टिलाइजर की मात्रा में पहले बता दिया, इसमें जो है वही सेम रहेगा। इसमें भी खरपतवार के लिए हमारा जो है आपका वही एला क्लोर जो है 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से, या पेंडी मेथिलिन जो है वही 2 लीटर प्रति हेक्टेयर से। ये जो भी दलहनी फसल हम लगाएंगे इसमें यदि आप कर देते हैं तो अच्छा है, नहीं भी करते हैं तो आप जुताई बढ़िया से किए रहेंगे तो खरपतवार जो है निराई गुड़ाई आप करेंगे ही एक बार कम से कम,
1: बिल्कुल
0: उससे भी हमारे खरपतवार निकल जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब कि मैंने दवा पर निर्भर नहीं रहना है।
1: और तो ये बातें हो गई जाड़े की जो अगेती दलहनी फसलें हैं विशेषकर चना मटर और मसूर की।
0: एक तीसी का भी थोड़ा सा जल्दी हम जिक्र कर देते हैं, तीसी भी बहुत मुख्य फसल है। इसमें भी तैयारी उसी तरह से करेंगे। तीसी में आपका दिव्या जो है इस सिंचित मतलब कि सिंचाई का साधन है तो आप करें, मतलब कि प्रियम जो है सिंचित के लिए है, बिरसा हमारे कृषि विश्वविद्यालय के लिए द्वारा निकाली हुई वैरायटी है BIRSA TC1 BIRSA TC2।
1: अच्छा
0: ये सब जो है वैरायटी 125 से 130 दिन के बीच की है। और जो है इसको जो है आप 3:1 हम लोग कहते हैं, मतलब इससे कि 3 लाइन यदि आपने जो है चना लगाया है या गेहूं लगाया है तो उसमें 1 लाइन इसको लगा दीजिए।
1: अच्छा
0: ऐसे करके 3 लाइन ये तो 1 लाइन तीसी।
1: अच्छा
0: चना में भी ये गेहूं में भी आप लगा सकते हैं या उसके बॉर्डर में भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि गेहूं के आपने बुआई की तो उसके जो है बॉर्डर किनारे किनारे जो है 3-4 लाइन जो है आप तीसी मतलब
1: इससे लाभ क्या है।
0: इससे लाभ जो है कई होता है, जैसे कि इसमें थोड़ा वो कांटे भी होते हैं, तो जानवर जो है थोड़ा सा इसको

0: खाने में परहेज करता है, कोई
1: अच्छा
0: खेत में जाता नहीं है। और जो है हमारी गेहूं की भी फसल हो जाती है, उसके मिश्रित इसको वो कहते हैं मैंने, और या 3:1 में भी आप लगा सकते हैं, 3 लाइन वो 1 लाइन वो, या उसको छीट भी सकते हैं,
1: अच्छा
0: छिटकवा पैरा क्रॉपिंग जिसको कहते हैं, छीट करके भी मतलब कि आप जो है
1: लगा सकते हैं।
0: लगा सकते हैं। इसमें भी उर्वरक की मात्रा, इसमें जो है सल्फर वगैरह की जरूरत नहीं है, बोरान वगैरह की, इसमें जो है आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है
1: आवश्यकता
0: जो
1: पड़ेगी
0: 40-20, और जो है सिंचित यदि है तो उसमें ज़्यादा थोड़ा उर्वरक
1: अस्सी
0: लगता
1: किलो
0: है,
1: 30 किलो।
0: हाँ 80 या 30 जो है। निराई गुड़ाई 25 दिन पे करते हैं, कटाई जो है आप यदि समय पर करें तो मार्च में आपकी कटाई हो जाएगी। आपकी तेल की मात्रा इसमें भी 41 से 45% तक करीब करीब होती है, और इसमें भी जो है आप खरपतवार के लिए

0: जो है डायरेक्शन दिशा देने की बात होती है, और नहीं तो किसान जो है अच्छा जानते हैं, बस उसको थोड़ा सा अवेयर उसको जागरूकता जागरूक करने की ज़रूरत है, और विशेष मतलब किसान खुद समझदार हैं।
1: तो ये तो बातें हो गई जाड़े की। अगेती दलहनी फसल जो है विशेषकर चना मटर और मसूर की, और इसके साथ ही तिलहन जो तीसी है इसकी भी खेती हमारे किसान भाई चना मसूर और मटर से मिली जुली खेती है, तो इसको कर सकते हैं और समय से पहले वो जो फसल है उसे बाजार तक ले जा सकते हैं। तो आवश्यकता है
0: उपज इससे जो है उपज भी ज्यादा मिलती है और कीमत भी ज्यादा
1: जी बिल्कुल। तो खाली पड़े जो खेत हैं उसमें आप अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए बिल्कुल, और अगेती का लाभ भरपूर मात्रा में लीजिए। आप थे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार पांडे जी। आप कार्यक्रम से जुड़े सर और अगेती तिलहनी और दलहनी फसलों से संबंधित जानकारियां साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे जाड़े की अगेती दलहनी फसलें उसकी खेती, भेंट वार्ताकार थे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार पांडे जी, बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और अब आज की बात में बात करते हैं बकरी पालन से फायदे इस विषय पर। ग्रामीण भाइयों, ग्रामीण परिवारों के लिए बकरी पालन अतिरिक्त आय का एक उपयोगी साधन हो सकता है। इसे भी संसाधनों के साथ भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन अच्छी योजना और उचित देखभाल जरूरी है। बकरी पालन के कई फायदे भी हैं। बकरियों से दूध और मांस प्राप्त होता है जिनकी बाजार में मांग हो सकती है। बकरी पालन से परिवार को अतिरिक्त आमदनी का अवसर मिलता है। बकरियों का गोबर जैविक खाद के रूप में खेत में उपयोग किया जा सकता है। छोटे किसान परिवार उपलब्ध जगह और संसाधनों के अनुसार इसे अन्य कृषि गतिविधियों के साथ जोड़ सकते हैं। महिलाएं भी चारा देने, पशुओं की देखभाल और स्वच्छता जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बकरी के बच्चों की देखभाल और स्वस्थ प्रजनन प्रबंधन से झुंड को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। सफल बकरी पालन के लिए ध्यान रखें, बकरियों को स्वच्छ सूखा और हवादार स्थान दें, साफ पानी और संतुलित आहार उपलब्ध कराएं, बीमार पशुओं को अलग रखें और नियमित टीकाकरण और कृमिनाशक कार्यक्रम के लिए पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग से संकल्प सलाह लें।

0: ग्रामीण भाइयों, बकरी पालन का एक लाभ यह है कि इसे उपलब्ध संसाधनों के अनुसार छोटे स्तर से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। इससे परिवार को पशु उत्पादों की बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त आय का अवसर भी मिल सकता है। बकरियों के गोबर का उपयोग खेतों में जैविक खाद के रूप में भी किया जा सकता है। इस तरह पशुपालन और खेती को आपस में जोड़कर उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग भी किया जा सकता है। सफल बकरी पालन के लिए कुछ बातें हैं ग्रामीण भाइयों। जैसे पहली बातें हैं कि स्वस्थ और स्थानीय वातावरण के अनुकूल बकरियों का चयन करें। दूसरा है कि पौष्टिक चारा और साफ पानी नियमित रूप से दें। तीसरा है पशुशाला को सूखा, साफ और हवादार रखें। और चौथी बात है कि समय पर टीकाकरण और स्वास्थ्य जाँच करवाएँ। और पाँचवीं है कि बकरियों या उनके उत्पादों की बिक्री से पहले स्थानीय बाजार और कीमतों की जानकारी लें। ग्रामीण भाइयों, स्वस्थ बकरी, पौष्टिक आहार और सही देखभाल बकरी पालन को बनाए परिवार के अतिरिक्त आय का मजबूत आधार। और कार्यक्रम में अब आज का मौसम।
1: आज पलामू में अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 95% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 69% रिकॉर्ड की गई। और अब आज की नसीहत में बात करते हैं समसामयिक कृषि कार्य की। अगले 5 दिनों में मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए किसान भाई धान की फसलें मेड़ों को दुरुस्त रखें ताकि जल जमाव हो सके और दलहनी फसलों में और सब्जियों में जल निकासी की सुविधा रखें। फसलों के वनस्पति से प्रजनन चरण के दौरान जिस किसान उपज में सुधार के लिए 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोरान का उपयोग कर सकते हैं। वर्षा के पूर्वानुमान के आधार पर आगामी दिनों में बुआई, उर्वरक, कीटनाशक अनुप्रयोग, अंतर सांस्कृतिक संचारण को रोक दें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सफ़ेद मक्खी और रस चूसने वाले कीटों के खिलाफ सभी फसलों की नियमित निगरानी करें।
0: और ग्रामीण भाइयों, अरहर में उकठा रोग के प्रकोप

0: देखे जा रहे हैं जो अपनी वानस्पतिक अवस्था में है, इसके बचाव के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर फेंक दें। अगली बार बुवाई से पहले बीज उपचार अवश्य करें और रोग रोधी किस्मों का चुनाव करें। तो ग्रामीण भाइयों, इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम ग्रामीण सभा से अब दीजिए रागिनी कुमारी और
1: प्रतिमा वर्मा को
0: अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण सभा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना है हमें, उस पे लाड भी बरसाना है।
2: हाँ, इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, चार पैसे जोड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा,
1: जिम्मेदारी निभाएंगे। यही है हमारा प्लान।
3: भविष्य की खुशियाँ प्लान कीजिए, थोड़ा सोच के बच्चा पैदा कीजिए, तो बनेगा खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
4: परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना है हमें, उस पे लाड भी बरसाना है।
2: हाँ, इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, चार पैसे जोड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा,
1: जिम्मेदारी निभाएंगे। यही है हमारा प्लान।
3: भविष्य की खुशियाँ प्लान कीजिए, थोड़ा सोच के बच्चा पैदा कीजिए, तो बनेगा खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
4: परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
7: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
6: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी सीजीएल नियुक्तियां रद्द करने के सरकारी फैसले पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार। जांच की निगरानी के लिए पूर्व न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी नियुक्त। रांची में भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत मुफ्त स्वास्थ्य शिविर आयोजित। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने केंद्र की गरीब कल्याण नीतियों को सराहा। गुमला जिले के सिसई, गुमला और बिशुनपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने किया औचक निरीक्षण। मतदाता सूची पुनरीक्षण को त्रुटि रहित बनाने का दिया निर्देश। खूंटी और हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दो अलग अलग अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोहों का भंडाफोड़। 15 अपराधी गिरफ्तार, 36 मोटरसाइकिलें बरामद। और रांची में 3 दिवसीय रेलवे स्पोर्ट्स मीट शुरू। 8 खेलों में दम दिखाएंगे 690 खिलाड़ी। डीआरएम ने एक साल में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का जताया संकल्प। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल नियुक्तियां रद्द करने के अपने फैसले को हाईकोर्ट में सही ठहराया है। सरकार का तर्क है कि व्यापक गड़बड़ियों से परीक्षा प्रक्रिया दूषित हो चुकी थी। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी फैसले पर रोक बरकरार रखी है और जांच की निगरानी के लिए पूर्व न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी को नियुक्त किया है। अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने सुखदेव नगर में विशाल हेल्थ कैंप लगाया, जहां सैकड़ों लोगों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच हुई। इस शिविर में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि इतिहास में पहली बार देश के प्रधान सेवक गरीबों और वंचितों के कल्याण की वास्तविक चिंता कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को लेकर के गांव हो चाहे देहात हो, शहर हो चाहे कस्बा हो, सभी लोगों ने एक भी आशीर्वाद के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की लंबी उम्र की कामना की भगवान से। और जिस प्रकार से देश आजाद होने के बाद पहली बार गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी समाज सभी वर्ग ऐसा महसूस हुआ कि देश के प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री जी गाँव के गरीबों के बारे में चिंता करते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जन सेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इस सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इसी कड़ी में प्रस्तुत है पीएम जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय समूहों के परिवारों के सामाजिक आर्थिक उत्थान की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट।
2: विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री जनमन योजना का लाभ झारखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आदिम जनजाति के लोगों को बड़े पैमाने पर मिल रहा है। इस योजना की मूल भावना को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है,
3: भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन पीएम जनमन योजना लॉन्च हुई थी। इसके तहत करीब 1350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ है। 950 से ज्यादा गांवों में हर घर जल पहुंचाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। मोबाइल कनेक्टिविटी से भी जोड़ने के लिए काम हो रहा है। साथ ही अति पिछड़े आदिवासी इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। ये विकास हमारे आदिवासी समाज को प्रगति के समान अवसर देगा।
2: प्रधानमंत्री के इसी संकल्प का सीधा असर अब सलगी

0: बेढ़ा पत्थल गांव के धरातल पर दिख रहा है। यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि पहले उनके पास रहने के लिए पक्के मकान नहीं थे, जिससे हर मौसम में भारी परेशानी होती थी।
1: मेरा नाम अनिता देवी है। पहले मिट्टी घर में रहते थे, बहुत चूता था, अब ढले घर बन गया, मोदी सरकार धन्यवाद।
2: मेरे नाम मंती देवी है। पहले तो मिट्टी का घर था, उसमें बहुत चूता था। अभी जो पीएम आवास मिला है उसमें अभी ढले कर दिए हैं और उसमें रह रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं मोदी सरकार को।
0: साफ है कि प्रधानमंत्री जन मन योजना सिर्फ पक्के मकान ही नहीं दे रही, बल्कि समाज के सबसे पिछड़े आदिम जनजातीय परिवारों में सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का एक नया विश्वास भी पैदा कर रही है। सलगी पीढ़ा पत्थल गांव के चेहरों पर आई ये मुस्कान बदलते झारखंड की एक जीवंत तस्वीर है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
3: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज गुमला जिले के सिसई, गुमला और बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर प्रक्रिया का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दावा आपत्ति और मतदाता दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया का जायजा लेते हुए इसे त्रुटि रहित बनाने का निर्देश दिया।
4: अभी कितने भी केसेस है उन लोग डिस्पोजल करते जा रहा है, जहाँ पेंडिंग रख रहा है उसका भी देखे उन लोग डिस्पोजल करें, इससे वो सब यहाँ पर कुछ वोटर का तरफ कटनी है उसके पेपर जमा करना पड़ जा रही है, फिर भी एक त्रुटि रहेगी मतदाता सूची निर्माण करने के लिए सभी वोटर से अनुरोध है।
3: उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ आयोग द्वारा सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के रांची स्थित आवास पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में राजीव गांधी प्रतिभा प्रतियोगिता परीक्षा की घोषणा की गई। श्री तिर्की ने बताया कि यह विशेष प्रतियोगिता परीक्षा नवंबर 2026 में रांची विश्वविद्यालय और अन्य कॉलेजों में आयोजित की जाएगी, जिसमें केवल राज्य के आदिवासी छात्र छात्राएं शामिल हो सकेंगे।
5: इस तरह का योजना इसलिए किया जा रहा है कि हम शिक्षा के माध्यम से हमारे आदिवासी बच्चों को संवैधानिक अधिकार के साथ साथ अपने भविष्य को बेहतर करने की, ग्रामीण इलाके से आते हैं, उनके माँ बाप बहुत मुश्किल से उनको पढ़ाता लिखाता है और बच्चे बेहतर से बेहतर कर सकें, अपना भविष्य को बेहतर करें, इसके लिए इस तरह का योजना किया जा रहा है।
3: खूंटी और हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दो अंतरराज्य वाहन चोर गिरोहों का भंडाफोड़ किया है। खूंटी के एसपी ऋषभ गर्ग के अनुसार साइको क्षेत्र से मास्टरमाइंड गुरुदयाल सहित 8 आरोपी दबोचे गए। वहीं हजारीबाग के पेलावल में 7 शातिर अपराधी गिरफ्तार हुए। दोनों जिलों से चोरी की कुल 36 मोटरसाइकिलें और एक टोटो बरामद किया गया है। रांची में आज दक्षिण पूर्व रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स मीट का उद्घाटन मंडल रेल प्रबंधक करुणा निधि सिंह ने किया। इस प्रतियोगिता में फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, स्विमिंग और एथलेटिक्स सहित 8 खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 690 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मौके पर मंडल रेल प्रबंधक ने युवाओं को खेल से जोड़ने और आगामी 1 वर्ष में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात कही।
6: विभाग के सारे कर्मचारियों के बीच में एक समन्वय जुटाने के लिए एक प्रयास किया है कि हमारे पास इतना स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए अपने ही जो सारे पार्टिसिपेंट हैं उनके साथ में एक अच्छा कार्य करें, तो उसके लिए जो है ये स्पोर्ट्स किया जा रहा है।
3: 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप के लिए रांची में 25 सितंबर को झारखंड टीम का ओपन ट्रायल आयोजित किया जाएगा। यह राष्ट्रीय चैंपियनशिप 10 से 21 अक्टूबर तक झांसी में आयोजित होगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। जेपीएससी सीजीएल नियुक्तियां रद्द करने के सरकारी

0: फैसले पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार। जांच की निगरानी के लिए पूर्व न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी नियुक्त। रांची में भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत मुफ्त स्वास्थ्य शिविर आयोजित। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने केंद्र की गरीब कल्याण नीतियों को सराहा। गुमला जिले के सिसई, गुमला और बिशुनपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने किया औचक निरीक्षण। मतदाता सूची पुनरीक्षण को त्रुटि रहित बनाने का दिया निर्देश। खूंटी और हजारीबाग पुलिस की कार्रवाई, दो अलग अलग अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोहों का भंडाफोड़। 15 अपराधी गिरफ्तार, 36 मोटरसाइकिलें बरामद। और रांची में 3 दिवसीय रेलवे स्पोर्ट्स मीट शुरू। 8 खेलों में दम दिखाएंगे 690 खिलाड़ी। डीआरएम ने एक साल में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का जताया संकल्प। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना है हमें, उस पे लाड भी बरसाना है।
2: हाँ, इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, 4 पैसे जोड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा,
1: जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान।
3: भविष्य की खुशियाँ प्लान कीजिए, थोड़ा सोच के बच्चा पैदा कीजिए तो बनेगा खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
4: परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: तुम खेत पर काम कर रहे हो?
7: हाँ भाई, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो?
6: पिछले हफ्ते ही तो तुमने एनएसबी कराई है।
7: अरे इससे कोई कमजोरी नहीं होती, न चीरा न टाका, मात्र 10 मिनट का काम। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं होती है। अरे अरे अरे, कहाँ चल दिए?
6: एनएसबी कराने।
7: पुरुष नसबंदी यानी एनएसबी की सुविधा हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
8: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता।
1: भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के निर्देश पर विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जामताड़ा जिला के कारीगरों एवं शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है। उपायुक्त आलोक कुमार ने बताया कि
2: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि यह केवल आर्थिक सहायता लाभार्थी को नहीं प्रोवाइड करता है बल्कि उसके हुनर को उसकी सबसे बड़ी पूंजी बनाता है।
1: जामताड़ा पुलिस साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। इस दौरान पुलिस को सफलता भी मिल रही है। जामताड़ा पुलिस ने 11 सितंबर को जिले के नारायणपुर एवं कर्माटांड़ थाना क्षेत्र से कुल 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि
3: साइबर अपराध के प्रति लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। इसी क्रम में कल ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी कि कर्माटार और नारायणपुर थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधकर्मी अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं।
1: झारखंड प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षा में हुई धांधली के विरोध एवं सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर 9 सितंबर को भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री रविंद्र राय के नेतृत्व में जामताड़ा समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पूर्व मंत्री श्री राय ने कहा कि
4: राज्य सरकार अपने मंत्रियों और अपने अधिकारियों को, अपने दलालों को, उनको बचाने के लिए सीबीआई से जांच नहीं कराना चाहती और सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है। छात्रों ने जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वो जब आंदोलनरत हुए, पुतला दहन करने गए, तो प्रशासन से ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडों ने, उनके पाले हुए अपराधियों ने विद्यार्थियों और नौजवानों पर डंडे चलाए और दौड़ा दौड़ा कर पिटने का काम किया। झूठे मुकदमे किए गए, वो मुकदमा वापस होना चाहिए।
1: जामताड़ा उपायुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रत्येक मंगलवार को आयोजित जनता दरबार जिले के जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जनता

0: दरबार में लोग अपनी समस्याओं को सीधे उपायुक्त के समक्ष रख रहे हैं। लोगों की समस्याओं का निराकरण भी समयबद्ध हो रहा है। पिछले मंगलवार को उपायुक्त ने 45 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी और निराकरण की दिशा में पहल की। मौके पर उपायुक्त आलोक कुमार ने कहा कि
1: जनता दरबार में टोटल 40 से 45 लोग आए थे, जिसमें एक जो मेजर समस्या बहुत लोगों की थी वो था बिजली बिल से संबंधित। बहुत लोगों का बिजली बिल बढ़ा हुआ आ रहा है और उसमें कुछ इशू है। दूसरा था लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड, बहुत लोगों का मुआवजा नहीं मिला है या उसमें देरी हो रहा है, इससे संबंधित था। तो उसमें ये है कि बहुत कुछ पैसा भी विभाग से आना है वो नहीं आया है, जिसके कारण मुआवजा में देरी हो रहा है। तीसरा था बरसात के कारण कुछ लोगों का घर गिर गया है, तो अगुआ आवास और अम्बेडकर आवास के लिए उन्होंने आवेदन दिया, वो समस्या था। और चौथा मेजर जो ज्यादा आवेदन या रिक्वेस्ट आया है वो कन्यादान योजना से रिलेटेड है, जिसका पेमेंट आ चुका है विभाग के द्वारा, तो उसका पेमेंट हम लोग जल्दी जल्दी करवा देंगे।
0: जामताड़ा जिले भर में भगवान विश्वकर्मा की पूजा आराधना भक्ति भाव से की जा रही है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा।
2: अभी आप सुन रहे थे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। पेशे खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाज़ों में कुछ फिल्मी नगमे।

दिल जला फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। गीत लिखा था इंदिवर ने और इसकी तर्ज बनाई थी बप्पी लाहिरी ने। अगला गीत आइए सुनते हैं वक्त की आवाज़ फिल्म से। आवाज़ें हैं जी हाँ किशोर कुमार और आशा भोसले की। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार बप्पी लाहिरी।

हत्या फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। गीतकार थे इंदीवर और संगीतकार बप्पी लहरी। अगला गीत आई सुनते हैं मजाल फिल्म से। आवाज़ें हैं जी हाँ किशोर कुमार और आशा भोसले की। गीतकार हैं इंदीवर और संगीतकार बप्पी लहरी।

इनाम 10,000 फिल्म से भी आप ये गीत सुन रहे थे। आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और इसकी तर्ज बनाई थी आरडी वर्मन ने। इसी नगमे के साथ ही अब आज का एक रंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।

आरजू फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और इसकी तर्ज बनाई थी अन्नू मलिक ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम की अगली पेशकश है बादल फिल्म से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की। गीत लिखा है समीर ने और संगीत से सवारा है अन्नू मलिक ने।

बाजीगर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी कुमार सानू, अनु मलिक और साथियों की। देव कोहली ने इस गीत को लिखा था और संगीत से संवारा था अनु मलिक ने। और ये है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म खिलाड़ी से। आवाज़ें हैं अभिजीत और अलका याग्निक की, गीत के बोल अनवर सागर की हैं और संगीत जतिन ललित का है।

इसी नगमे के साथ ही अब आज का चित्रपट से कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेशे खिदमत है कव्वाली का प्रोग्राम महफिल। आज के फनकार हैं नुसरत फतेह।

अब आप दिल्ली केंद्र का प्रसारण सुनेंगे। पहले सुनेंगे समाचार संध्या, उसके बाद न्यूज एट नाइट, उसके बाद आप सुनेंगे उर्दू में समाचार।

0: के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन की और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में UAE के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्ध पोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाल में हाल में आई बाढ़ में जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक की है। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक समझौते को शीघ्र पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई सवाल पूछे। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक। तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CFC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग।

0: भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू

0: पहला STT-40 प्रशिक्षण विमान भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: आज हम एक साथ 3 इम्पोर्टेंट अचीवमेंट के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन एंड डेवलप्ड थ्रू अ नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजी नगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान केंद्रों की मसौदा सूची जारी कर दी है। इस सूची में 784 मतदान केंद्र हैं। मतदान केंद्रों की अंतिम सूची 25 सितंबर को प्रकाशित होगी। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया में एक ही देश की लगभग 30 कंपनियां विभिन्न पवेलियनों में भाग ले रही हैं।
2: वेरी गुड रिस्पॉन्स, काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। गोल मेज बैठकों में कई देशों ने बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ भाग लिया है। जापान और सिंगापुर के पवेलियन में 30 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देशों की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। इनमें नीदरलैंड और स्वीडन प्रमुख हैं। इससे आगे की संभावनाएं काफी अच्छी नजर आ रही हैं।
3: लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड जर्नी अहेड।
0: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों के जीवन को बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
4: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग का स्थान लिया। इसे वित्तीय आवंटन करने वाली संस्था के बजाय एक नीति निर्माण संस्था के रूप में तैयार किया गया है। नीति आयोग 3 प्रमुख माध्यमों के जरिए काम करता है। शासी परिषद प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर लाती है। स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत नीति आयोग की टीमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है। वहीं आकांक्षी जिला कार्यक्रम मापे गए परिणामों के आधार पर जिलों की रैंकिंग करता है और इन परिणामों को सार्वजनिक करता है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
5: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को, देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

0: अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद को मजबूत करता है और केंद्र राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है।
1: नीति आयोग का लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये थिंक टैंक की तरह काम करता है।
0: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच के रूप में कार्य करता है। मजबूत राज्य अब मजबूत राष्ट्र की स्पष्ट नींव बन चुके हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने आज पठानकोट जिले से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने माधोपुर से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का समापन 30 सितंबर को जलंधर में होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस नहीं निकालने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने छात्र संघ चुनाव के दौरान लिंगदो समिति की सिफारिशों के बार बार उल्लंघन को देखते हुए ये निर्देश दिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान आज संपन्न हो गया, मतगणना कल होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी एनटीए की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई। घटना में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना स्थल पर बचाव कार्य चल रहा है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि यह संशोधन पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों से सेंसेक्स में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 20 अंक की गिरावट देखी गई और ये 74,295 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 76 अंक की बढ़त के साथ 23,346 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के तुलना में 8 पैसे बढ़कर 95.88 रुपए पर बंद हुआ।
2: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में कल तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग अलग नाम और चुनावी चिन्ह आवंटित किए। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India and UAE reaffirmed their commitment to continue cooperation in promoting regional security and stability. UAE President dials Prime Minister Narendra Modi. New Delhi expresses deep concern over escalating security situation in Red Sea region, condemns attack on Saudi Arabia's sovereign territory. हिंदुस्तान

0: that the center and states are working together as a team through the platform.
1: National Institute of Transforming India, NITI, बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को, देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं.
0: टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज, फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग अमिताभ कांत सेड, द क्रिएशन ऑफ नीति आयोग हैज गिवन ए बूस्ट टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड ऑफर्स स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस to the center, state governments and union territories.
2: नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. उसका लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे. अब ये थिंक टैंक की तरह काम करता है और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करता है. सारी स्कीम्स मॉनिटरिंग करने की वजह से स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बदलाव आया है.
0: नीति आयोग सर्व्स एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंसिपल पॉलिसी थिंक टैंक एंड इट्स मेन फोरम फॉर सेंटर स्टेट डिस्कशन. स्ट्रॉन्ग स्टेट have now become the explicit foundation of a strong nation. Unpermished, Akashwani News, Delhi.
3: The Supreme Court today suggested a series of measures for all states and union territories to prevent Hooch tragedies. These include stricter monitoring of methanol procurement, storage and transportation, periodic scrutiny of licenses and permits, and specialized disaster management systems to deal with mass casualties. A two-judge bench made the observations while striking down Maharashtra's rules requiring bitterant and colorant to be added to methanol sold to non-drug manufacturers. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Andhra Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Kerala, Mahe, Andaman and Nicobar Islands and parts of Northeast India tomorrow. The weather agency said that conditions are becoming favorable for withdrawal of southwest monsoon from some parts of West Rajasthan from tomorrow. For Delhi, IMD has forecast a partly cloudy sky tomorrow. On to sports. At the Asian Games, the Indian women's cricket team entered the semi-finals after comfortably defeating hosts Japan by 8 wickets in Nissin today. In the quarter-final match, electing to field first, India bowled out Japan for a paltry 57 in 19.5 overs. In reply, India overhauled the target, posting 59 for 2 in just 5 overs. Shefali Verma led the chase with an unbeaten 40 off 15 balls. Harmanpreet Kaur-led Indian team will now face Bangladesh in the second semi-final on Sunday. The first semi-final match will be played between Pakistan and Sri Lanka on the same day. The opening ceremony of the Asian Games 2026 at Aichi, Nagoya in Japan will be held tomorrow. For India, double Olympic medalist Manu Bhakar and shot putter Tajinder Pal Singh Tur will lead the contingent. The 20th edition of the Asian Games will run from tomorrow until the 4th of next month. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and UAE reaffirm their commitment to continue cooperation in promoting regional security and stability. UAE President dials Prime Minister Narendra Modi. New Delhi expresses deep concern over escalating security situation in Red Sea region, condemns attack on Saudi Arabia's sovereign territory. Hindustan Aeronautics Limited hands over twin-seater Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force. Election Commissioner lauds separate names and electoral symbols to rival factions of Trinamool Congress. Government relaxes sugar stock holding limit for bulk consumers from 15 to 30 days. And in Asian Games, Indian women's cricket team storms into semi-finals, beating host Japan by 8 wickets in quarter-final. That is all in the news at 9. Good night.
4: आदाब, ये आकाशवाणी है. जमीर रजवी से खबरें सुनिए. सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां. भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देने में तआवुन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया है. मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की. भारत ने बहिर अहमर खित्ते में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और सऊदी अरब के खुद मुख्तार सरजमीन पर हमले की मजम्मत की है.

0: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय फिजाइया को दो सीटों वाले तेजस और HTT-40 तरबियती तैयारे सुपुर्द किए। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के हरीफ धड़ों को अलग अलग नाम और इंतखाबी निशानात अलॉट किए हैं। हुकूमत ने थोक ग्राहकों के लिए चीनी जखीरा करने की हद 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। और एशियाई खेलों में खवातीन की भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात UAE ने इलाकाई अमन और सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देने की कोशिशों में मुसलसल तआवुन और इश्तराक के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आज मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का टेलीफोन मौसूल हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया के हालात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए नए इकदाम के बारे में भी गुफ्तगू की। इसमें तवानाई, दिफा, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और सेहत जैसे शोबे शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने भारत की कामयाब ब्रिक्स सदारत पर वजीर आजम मोदी को मुबारकबाद दी। जनाब मोदी ने ब्रिक्स सरबरा मीटिंग में वलीहद शेख खालिद की शिरकत और भारत की सदारत के दौरान अहम नतायज हासिल करने में UAE के तआवुन और शराकत दारी को भी सराहा। UAE के सदर ने वजीर आजम मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद दी और इस मौके पर उनके लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले के दौरान मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में नए तकरर पाने वाले नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकररी नामे तकसीम करेंगे। ये प्रोग्राम मुल्क भर में 45 मकामात पर मुनक्किद किया जाएगा। इस मौके पर जनाब मोदी तकरीब से खिताब भी करेंगे। नई तकररी पाने वाले उम्मीदवार भारत सरकार की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में खिदमात अंजाम देंगे, जिनमें महकमे महसूलात, वजारत रेलवे, वजारत दाखिला, वजारत सेहत व खानदानी बहबूद, मालियाती खिदमात का महकमा और वजारत दिफा समेत दीगर इदारे शामिल हैं। भारत ने बुहरे अहमर में सलामती की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। आज नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब के खुद मुख्तार इलाके पर हमलों की मजम्मत की है, जिनमें शहरियों और इकतसादी असासों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि मुकद्दस शहर मक्का पर हुए हमले की कोशिश के बाद भारत ने बयान जारी किया था। पाकिस्तानी बहरी जहाज और भारतीय बहरी जहाज के दरमियान हुए तसादुम के बारे में इजहार ख्याल करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने अपने एहतजाज पर पाकिस्तान के रद्दअमल का नोटिस लिया है। जनाब जायसवाल ने पाकिस्तान की जानिब से लगाए गए इल्जाम और धमकियों को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: जनाब जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी बहरी जहाज हुनैन के जरिए खतरनाक तरीके से आगे निकलने की कोशिश फौजी मशकों, कलाबाजियों और फौजी नकलो हरकत के एडवांस्ड नोटिस से मुतालिक भारत पाकिस्तान के 1991 माहदे के आर्टिकल 10 की सरीह खिलाफ वर्जी है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी बहरी जहाज ने समंदर में टक्कर से बचने से मुतालिक बैनुल अक्वामी जाब्तों की भी खिलाफ वर्जी की है। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि योग मौजूदा दौर में बढ़ते हुए जहनी तनाव के दरमियान जिस्मानी और दिमागी सेहत, ध्यान, खुद आगाही और जहनी तवाजुन को बेहतर बनाने में मदद फराहम कर सकता है। नायब सदर ने यह बात महाराष्ट्र के लोनावला में कैवल्य धाम में गोवर्धन दास सेक्सरिया कॉलेज ऑफ योगा एंड कल्चरल सिंथेसिस की प्लेटिनम जुबली तकलीबात से खिताब करते हुए कही। जनाब राधा कृष्णन ने योग की तालीम, तहकीक और सकाफती मुतालात के दरमियान मजकूरा इदारे की 75 साल खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि कैवल्य धाम के बानी स्वामी कुवल्यनंदन ने 1924 में योग के साइंसी मुताले की बुनियाद रखी थी। उन्होंने कहा कि योग महज एक नस्ल की रिवायत नहीं है, बल्कि एक ऐसा विरसा है जिसे आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कोशिशों और अकवाम मुतहदा की जानिब से 21 जून को योग का आलमी दिन करार दिए जाने के बाद योग को आलमी सतह पर शनाख्त हासिल हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका ये सफर जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और

0: मुसलसल और अनथक अज़्म से इबारत है जो आज भी पूरी मजबूती के साथ जारी है। खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के इस नज़रिए से रहनुमाई हासिल करते हुए हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के हदफ के हुसूल के लिए मुसलसल काम कर रही है। जामे तरक्की और समाज को बाख्तियार बनाने के जरिए ये अज़्म लोगों की जिंदगियों में तब्दीली ला रहा है। आज सेवा संकल्प अभियान की खसूसी सीरीज के तहत हम नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के जरिए इस नजरिए को अमली जामा पहनाए जाने की एक मिसाल पेश कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को काबीना की एक करारदाद के जरिए प्लानिंग कमीशन की जगह ली। इसे फंड फराहम करने वाले इदारे के बजाय पॉलिसी साजी के इदारे के तौर पर तश्कील दिया गया। नीति आयोग के तीन अहम अज्जा हैं। गवर्निंग काउंसिल वजीर आजम और तमाम वज़रा आला को एक ही प्लेटफॉर्म पर यकजा करती है। रियासतों को ताउन फराहम करने से मुतालिक मिशन नीति आयोग की टीमों को रियासती हुकूमतों के अंदर काम करने के लिए तैनात करता है। उमंगों वाले अजला प्रोग्राम जिलों की कारकर्दगी को मुकर्रा पैमानों पर जांचता है और नतायज शाया करता है। 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा था कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए मरकज और रियासतें एक टीम के तौर पर मिलकर काम कर रहे हैं।
2: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
1: आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए नीति आयोग के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग के क्याम से ताउन पर मबनी वफाकियत को फरोग मिला है और ये मरकज रियासती हुकूमतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को हिकमत अमली और तकनीकी मशवरे फराहम करता है।
3: नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसका लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये थिंक टैंक की तरह काम करता है और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करता है। सारी स्कीम्स मॉनिटरिंग करने की वजह से स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बदलाव आया है।
1: नीति आयोग अब भारत सरकार के अहम पॉलिसी थिंक टैंक और मरकज और रियासतों के दरमियान पॉलिसी से मुतालिक तबादले ख्याल के एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर रहा है। मजबूत रियासतें अब एक मजबूत मुल्क की वाजह बुनियाद बन चुकी हैं। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हवाई जहाजों के सरकारी मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने अपने ट्विन सीटर हल्के जंगी तैयारे तेजस और HTT-40 तरबियती तैयारे को फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस के बाद आज बेंगलुरु में भारतीय फिदाइया को सौंपा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और शहरी आवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू ने इससे मुतालिक तकरीब में शिरकत की। HAL ने दो तेजस और तरबियती तैयारे भारतीय फिजाइया के हवाले किए। वहीं HAL ने अगली नस्ल के 4 ध्रुव हेलीकॉप्टरों को सरकारी कंपनी पवन हंस लिमिटेड को सौंपा। इसके अलावा HAL ने पहला HTT-40 बुनियादी तरबियती तैयारा भी भारतीय फिजाइया के हवाले किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तैयारे को अंकुर का नाम दिया।
4: आज हम एक साथ तीन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला इंडिजनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंड ओवर किया गया है। दूसरा LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है। और तीसरा 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है।
0: तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर खुद इन्हेंसारी पर जोर दिया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि भारत इस शोबे में आलमी कायद के तौर पर उभरेगा। जनाब सिंह ने स्वदेशी दिफाई और शहरी हवाबाजी टेक्नोलॉजियों की कोशिश के लिए हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सताइश की। जनाब सिंह ने नौजवान इंजीनियरों और डिजाइनरों को मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजियों से मुतालिक चैलेंज को कबूल करने और भारत को आलमी सतह पर मुकाम दिलाने में मदद करने की अपील की। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि निजी और अवामी शोबे को हरीफ बनने के बजाय शराकत दार के तौर पर काम करना चाहिए। जनाब सिंह ने कहा कि भारत की दिफाई पैदावार और बरामदात में खातिर खा इजाफा हुआ है।

0: इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज आईबीएम सेमीकंडक्टर के जनरल मैनेजर डॉक्टर मुकेश खरे से मुलाकात की। ये मुलाकात आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के तनाजुर में हुई। इस दौरान दोनों ने भारत की चिप डिजाइन तरजीहात, जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों के मौके और भारत में एडवांस्ड चिप साजी के से मुतालिक आईबीएम के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। जनाब वैष्णव ने एलएम रिसर्च के सीओओ सेशा वर्दराजन से भी मुलाकात की और भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को मुस्तहकम करने के कंपनी के मंसूबों पर बातचीत की। इंतखाबी कमीशन ने आज तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हरीफ दलों को नए नाम और नए इंतखाबी निशानात अता किए। इस फैसले के बाद ममता बनर्जी और अरूप राय के जेर क्यादत धड़े जिमनी इंतखाबात में नई शनाख्त के साथ हिस्सा लेंगे। अरूप राय के जेर क्यादत ग्रुप को नया नाम डेमोक्रेट तृणमूल कांग्रेस दिया गया और उनका इंतखाबी निशान लिफाफा होगा। वहीं ममता बनर्जी के जेर क्यादत दूसरे ग्रुप का नाम बदलकर ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस रखा गया है, जबकि उनका इंतखाबी निशान एक फुटबॉल खिलाड़ी होगा। हुकूमत ने थोक ग्राहकों के लिए चीनी जखीरा करने की हद 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ताहम ये रियायत इस शर्त के साथ दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की हद से ज्यादा रखा जाने वाला चीनी का जखीरा सिर्फ पेशगी मंजूरी स्कीम और टेरिफ रेट कोटा के तहत दरामद की गई चीनी से हासिल किया जाएगा। सारिफिन के उमूर, खुराक और सरकारी निजामे तकसीम की वजारत ने कहा कि खुली मार्केट से खरीदी जाने वाली चीनी के जखीरे की हद में कोई तब्दीली नहीं की गई है और ये सिर्फ 15 दिन की खपत तक महदूद रहेगा। यह फैसला हुकूमत की जानिब से चीनी के बड़े ग्राहकों के साथ तफसीली मुशावरत के बाद किया गया। एशियाई खेलों में खवातीन की भारतीय टीम मेजबान जापान को 8 विकेट से बआसानी शिकस्त देने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई है। निशिन में आज खेले गए मैच में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हरा दिया। इस क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और 19 ओवर्स और 5 गेंदों में जापान की पूरी टीम को महज 57 रन पर आउट कर दिया। इस दौरान भारतीय गेंदबाजों श्री चरनी ने 4 विकेट और शेफाली वर्मा ने 2 विकेट लेकर लगातार दबाव बनाए रखा। जवाब में भारतीय टीम ने सिर्फ 5 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पर यह निशाना हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा ने 15 गेंदों में 40 रन बनाए और वो नॉट आउट रहीं। हरमनप्रीत कौर की क्यादत वाली भारतीय टीम का मुकाबला निची नागोया एशियाई खेलों के दूसरे सेमीफाइनल में इतवार के रोज बांग्लादेश से होगा। वहीं पहला सेमीफाइनल उसी रोज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, अंडमान निकोबार जजायर और शुमाल मशरक भारत के कई हिस्सों में कल शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा कि कल से मगरबी राजस्थान के कुछ हिस्सों से जुनूब मगरबी मानसून के रुखसत होने के लिए हालात साजगार हैं। दिल्ली के लिए महकमे मौसमियात ने कल मौसम के जुजवी तौर पर अबर आलूद रहने की पेश गोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में कल ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और कम अज कम दर्जा हरारत 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देने में ताउन जारी रखने के अज़्म का इरादा किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। भारत ने बुहरे अहमर खित्ते में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और सऊदी अरब की खुद मुख्तार सरजमीन पर हमले की मजम्मत की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय फिजाइयों को 2 सीटों वाले तेजस और HTT-40 तरबियती तैयारे सुपुर्द किए हैं। और इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के हरीफ धड़ों को अलग अलग नाम और इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं विविध भारती से आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर बाद।

0: अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीन साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

काला कपड़ा पहनो नको, उजला कपड़ा पहनो नको, मेरे दम से तू सुहागन, सर से पांव तलक का सावन।

दोस्तों 1972 के आसपास FTII से शबाना आजमी ग्रेजुएट हुई और अपने वालदैन के नक्शे कदम पर चलते हुए ही एक्टिंग की दुनिया में जलवागर हुई। अब्बास साहब की एक फिल्म फासला में उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली भूमिका की, हालांकि ब्लिज फिल्म्स की पेशकश अंकुर पहले रिलीज हुई थी। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं शबाना आजमी द्वारा अभिनीत एक फिल्म अर्थ का ये बड़ा ही खूबसूरत गाना।

दोस्तों शबानाज भी उस दौर को बिलोंग करती हैं जब पैरेलल सिनेमा ने बुद्धिजीवियों के बीच पैठ बना ली थी। अगुवाई कर रहे थे द ग्रेट सत्यजीत राय, श्याम बेनेगल, महेश कौल, गिरीश कर्नाड, शंकर नाग जैसे और भी कई। इनके द्वारा बनाई गई फिल्में आर्ट फिल्में कहलाती थीं, जो क्लास के लिए बनती थीं, जो कि आधारित होती थी मास पर ही। उनके विषय मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देते थे। ऐसी ही एक फिल्म थी निशांत, इसमें भी बड़ी ही सशक्त भूमिका में थी।

दोस्तों शबाना आजमी ने कई नामचीन फिल्मकारों के साथ काम किया है, उनमें से प्रमुख हैं श्याम बेनेगल की निशांत, जुनून, मंडी, सुष्मन और अंतरनाद। इन फिल्मों में उन्होंने काम किया सत्यजीत राय के साथ शतरंज के खिलाड़ी, मृणाल सेन के साथ खंडर, जेनेसिस और एक दिन अचानक, ये फिल्में उन्होंने की। सईद मिर्जा की फिल्म उन्होंने की थी अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, गौतम घोष की पार उन्होंने की थी, सही परांजपे की स्पर्श और दिशा, अपर्णा सेन की पिकनिक और सती, महेश भट्ट की अर्थ उन्होंने की थी। आगे बढ़ते हैं उनके द्वारा अभिनीत फिल्म अवतार के इस गाने के साथ।

दोस्तों, शबाना आजमी द्वारा अभिनीत फिल्मों की एक फहरिस्त पर हम जब नजर डालते हैं तो पता चलता है कि किस किस्म की फिल्में उन्होंने की हैं। 1988 में मैडम सोजार्ट्स का, 1992 में आई थी सिटी ऑफ जॉय, 1993 में इन कस्टडी, 1993 में ही एक और फिल्म आई थी उनकी सन ऑफ द पिंक पैंथर, 1996 में फायर, 1997 में साज।

1998 में अर्थ, 1999 में गॉड मदर, 2002 में उनकी फिल्म आई थी मकड़ी, तहजीब आई थी 2003 में, 2004 में मौनी रागाज, 2005 में 15th पार्क एवेन्यू, इसी साल यानी 2005 में आई थी वाटर बॉर्न, 2006 में उमराव जान, 2007 में हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड,

इसी साल यानी 2007 में लायंस ऑफ द पंजाब प्रेजेंट्स, 2008 में उनकी फिल्म आई थी सॉरी भाई, और 2010 में इट्स वंडरफुल आफ्टर लाइफ। शबाना आजमी मटरू की बिजली का मंडोला इस फिल्म में भी नजर आई थी। दोस्तों, शबाना आजमी को 2006 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री शबाना आजमी पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए शोक को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेशे खिदमत है

आशिकी फिल्म का नगमा अभी आपने सुना, आवाज़ कुमार सानू की थी। गीत लिखा था मदन पाल ने और इसकी तर्ज बनाई थी नदीम श्रवण ने। अगला गीत आइए सुनते हैं खानदान फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर की है, नश लालपुरी के बोल हैं और खयाम का संगीत है।

आहिस्ता आहिस्ता फिल्म से भी आपने ये गीत सुना। निदा फाजली के बोल थे, आवाज़ भूपेंद्र सिंह की थी, संगीत से सवारा था खय्याम ने। अगला गीत आई सुनते हैं नसीब फिल्म से, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की, आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

अमर अकबर अंथोनी फिल्म से भी आपने ये नगमा सुना। आवाज़ें थे किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और लता मंगेशकर की। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आप लुत्फ उठा रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा का। कार्यक्रम की अगली पेशकश है चालबाज फिल्म से। आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज़ और कविता कृष्णमूर्ति की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इसकी तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत।

देवान फिल्म का गीत सुनिए। आवाजें हम राधा पाडवाल और पंकज उदास की। अजीज कैसी ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे।

लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म से भी आपने ये गीत सुना। आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़ की। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और आनंद मिलन का संगीत था।

देश परदेश फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ किशोर कुमार की थी, गीत लिखा था अमित खन्ना ने और संगीत से सवारा था राजेश रोशन ने। और ये है रजनीगंधा कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म प्रेम पुजारी से। आवाज़ किशोर कुमार की है, गीत लिखा है नीरज ने और इसकी तर्ज बनाई है एस डी बर्मन ने।

प्रेम पुजारी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज़ किशोर कुमार की थी। गीतकार थे नीरज और संगीतकार SD बर्मन। इसी नगमे के साथ ही आवाज़ का रजनीगंधा कार्यक्रम समाप्त करने की मोहम्मद फखरुल हसन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। श्री नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में यूएई के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश के 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: आज हम एक साथ 3 इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंड ओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव में अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। चुनाव के लिए कुल 1000 EVM का प्रबंध किया गया था। विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटों की गिनती कल नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जीत का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। अब भारत का सामना 20 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।